सुप्रभात। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ के साथ साथ FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की छठी तिथि, तदनुसार 26 जून सन 2026। हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:55 और 47 सेकंड हो रहे हैं। अब आरंभ होती है हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा।

0: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। 6 बजने वाले हैं, अब सुनिए दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: यूनाइटेड किंगडम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट
3: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।
2: एंड टुगेदर बिकमिंग अ फोर्स मल्टीप्लायर।
1: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रॉड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है।

0: जबकि 1,520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
2: संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
4: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
5: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
6: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
7: नए जमाने की नई तस्वीर, अब छत पर लगे टीवी एंटेना को कहो गुड बाय सदा के लिए। समय के साथ बदलें, आगे बढ़ें, ले आएं आज ही दूरदर्शन का DD फ्री डिश। इसमें हैं आपके पसंदीदा 100 से ज्यादा टीवी चैनल्स, इसके अलावा 51 एजुकेशनल यानी पढ़ाई लिखाई वाले चैनल्स और 48 रेडियो चैनल्स। और तो और, सेट टॉप बॉक्स लगवाने के बाद कोई खर्चा नहीं, बिल्कुल नहीं। डिजिटल क्रांति की ओर एक कदम और आपका DD फ्री डिश।
8: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
9: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
8: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
9: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
8: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
9: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का हमारा दैनिक कार्यक्रम वंदना।

हे देवों के देव, प्रथम पूजनीय श्री गणेश, आप करुणा करने वालों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपका स्वरूप ज्ञानमय है, आप अज्ञान को नष्ट करने वाले हैं। आप भक्तों के ऐश्वर्य प्रदान करते हैं, आपको बारंबार प्रणाम।

हे प्रभु, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही विष्णु हैं, आप ही महेश हैं, आप ही सूर्य, आप चंद्रमा और तारागण हैं, आप ही भूभुव स्व हैं, तीनों लोक आप ही हैं, विराट स्वरूप आप ही हिरण्यगर्भ, आप ही चतुर्भुज और मायातीत, शुद्ध ब्रह्म भी आप ही हैं, आप ही ने अपने अनेक रूप धारण किए हैं, इसलिए संपूर्ण संसार आप ही का स्वरूप है। दृष्टा, दृश्य, दर्शन जो कुछ भी है सब आप ही हैं। हे महादेव, आपको बारंबार प्रणाम।

कहते हैं श्री राम जी की माया कहीं धूप कहीं छाया। साधु संत भक्त विद्वान पंडित कोई भी मानस रूपी सागर की गहराई को नहीं नाप सका है, तो सामान्य मानव उसे कैसे नाप सकता है। रामचरित मानस रूपी सागर में उतरने के बाद व्यक्ति डूबता नहीं, वह भव सागर में से पार हो जाता है, अर्थात तर जाता है।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
2: और भरोसा।
3: जानो फिर मानो।
4: आप सुन रहे आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र, लीजिए सुनिए चिंतन बिंदु।
5: आगे बढ़े ले आए
6: अर्थागमो नित्यम रोगिता च, अर्थ का आगम होता रहे, नित्य अरोगी बना रहे। प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च, सुंदर पत्नी हो, प्रिय बोलने वाली हो। वत्सस्य पुत्र अर्थकरी च विद्या, आज्ञाकारी बेटा हो और अर्थकरी विद्या हो। ये 6 प्रकार के सुख हैं। अब दुख 6 नहीं है, दुख 4 ही हैं। दुख का वर्णन महाभारत में कथा आती है कि जिस समय दुर्योधन के साथ उसके सारे भाई मारे गए तो उनकी माँ गांधारी अपने बालकों के शवों को लेकर के रो रही थी। अचानक भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा कि बुआ जी क्यों रो रही हैं, आपके बालक तो स्वयं ही अपने मरने का कारण बने। तो गांधारी ने कहा कि तुम मेरे नज़रों से दूर चले जाओ, तुमने मेरे पुत्रों को मरवाया, तुम न होते तो पांडव मेरे पुत्र को नहीं मार पाते। भगवान ने बहुत समझाया, गांधारी जी को समझ में नहीं आया, वो चले गए। अचानक गांधारी जी को भूख प्यास लगने लगी, गांधारी जी व्याकुल हो गई। गांधारी जी ने विचार किया, गांधारी जी ने सोचा क्या करें। दूर उनको दिखाई एक बेर का वृक्ष दिखाई पड़ा, दौड़ती वहाँ गई और जैसे उसे उन्होंने तोड़ना चाहा तो बेर का वृक्ष ऊपर उठने लगा। तो बार बार प्रयास किया, बार बार हाथ कूद कूद करके तोड़ने का प्रयास किया, जब नहीं टूटा तो जिस बालकों के शव को पकड़ के रो रही थी उन्हीं बालक के शवों के ऊपर एक दूसरे के ऊपर रख करके और चरण रख के फल को तोड़ने लगी। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। प्रभु ने कहा अभी बुआ जी आप अपने पुत्रों के लिए रो रही थी और कह रही थी कि मेरे पुत्रों को आपके कारण मेरे पुत्र मारे गए, और उन्हीं पुत्रों के ऊपर अपना चरण रख के आप पैर रख करके और बेर का फल तोड़ रही हैं। तो गांधारी जी ने दुख का वर्णन किया है कि कृष्ण दुख क्या है, सबसे बड़ा दुख क्या है कि वासुदेव जरा कष्टम। पहला दुख वृद्धावस्था, वृद्धावस्था में इंद्रिय शिथिल हो गया, कोई सुनता नहीं, दृष्टि भी कमज़ोर हो गई और सारी इंद्रियों से उस प्रकार से क्रियाएँ नहीं हो रही हैं जैसा पहले होता था। तो उन्होंने कहा वासुदेव जरा कष्टम, पहला कष्ट है वृद्धावस्था, बुढ़ापा कष्ट का एक स्वरूप है। कष्टम निर्धन जीवनम, उससे बड़ा कष्ट निर्धन जीवन है, और निर्धन जीवन से भी बड़ा कष्ट है पुत्र शोकात महात कष्टम। किसी का जवान बेटा मर जाए तो उससे बड़ा कष्ट है पुत्र शोकात महात कष्टम। लेकिन कष्टात कष्ट तरम क्षुधा, सबसे बड़ा कष्ट क्षुधा है, पेट के लिए आदमी कुछ भी करता है, जो नहीं करना चाहिए, जो चाहता नहीं है कि नहीं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप से अपने पेट के लिए अपने परिवार के लिए उसे वह भी करना पड़ता है जो वह न चाहते हुए भी उसको करना पड़ता है। तो इन 4 प्रकार के कष्ट और 6 प्रकार के सुखों में हम जीवन जी रहे हैं, और प्रायः जो चौथा कष्ट है

0: वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धनम जीवनम पुत्र शोकात् महात् कष्टम कष्टात् कष्टतरम क्षुधा। इसीलिए हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि इन क्षुधा तात्पर्य क्षुधा में उदित जो अग्नि है, किसी को भोजन कराना भी पुण्य इसीलिए माना गया क्योंकि वह एक ऐसा कष्ट है जो प्रत्यक्ष भले ही आपको दिखाई न दे रहा हो लेकिन अप्रत्यक्ष उस कष्ट को प्राप्त करने वाला व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। तो इन दुखों में चाहे इन सुखों में हमारा जीवन रचा बसा है कि जो हम सुख चाहते वह मिलता नहीं और दुख से हमें निवृत्ति मिलने वाला नहीं क्योंकि यह दुख का आलय है। तो इन सुख और दुख में, क्योंकि सुख स्वयं की इच्छा है और दुख स्वयं अपने आप मिलने वाला है, दुख हम चाहते नहीं फिर भी हमें प्राप्त होता है और सुख हम चाहते भी हैं तो भी हमें मिलता नहीं, इसका सीधा सा अर्थ यह है सुख का स्वरूप व्यवहारिक जीवन में भौतिकवाद नहीं है, अध्यात्म है। और दुख का स्वरूप तो सबको पता ही है, दुख से सब लोग गुजर रहे हैं, यह दुख और सुख का स्वरूप।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन बिंदु। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आज की तीनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुनिए। इसी सभा में 7:30, 8:45 और 10:05 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। लोकरंग कार्यक्रम में 11:05 पर आप सुनेंगे राधेश्याम मरे त्रिपाठी के गाए लोकगीत। दिन में 11:30 और 2:30 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। दिन में 12:00 आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। सुगम संगीत में दिन में 12:55 पर आप सुनेंगे गुलाम अली की गाईचंद गजलें।

रात्रि 8 बजे हिंदी कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे त्वरित कविता के उद्घोष विषय पर भेंट वार्ता। वार्ताकार हैं नीलिमा श्रीवास्तव।

तो ये थी रूपरेखा आज प्रसारित हो रहे कार्यक्रमों की। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। मानस गान।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकेयी की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाएं। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थीं। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायुवेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगी।

0: अभी आप सुन रहे थे मानस खान।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
3: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
4: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
3: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
4: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
3: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
4: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
2: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
5: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
6: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
6: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
5: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
6: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
5: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर।

0: अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। 6:55 होने को हैं। अब सुनिए दिल्ली केंद्र से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में क्रमशः समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्राकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: द लेजेंड ऑफ भगत सिंह फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप। आवाज़ें थी AR रहमान और सुखविंदर सिंह की, बोल थे समीर के, जिसे संगीत से सजाया था AR रहमान ने। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
2: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
3: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
2: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
3: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
2: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 6016 और STD कोड 022।
3: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल ID है csumumbai@gmail.com।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
4: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
5: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
4: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:20 होने वाले हैं। एक छोटे से अंतराल के बाद आप सुनेंगे हमारे केंद्र से प्रादेशिक समाचार।
6: चलिए सुबह का पहला संकल्प ये लें कि मैं दुनिया में किसी से नहीं डरूंगा, केवल भगवान से डरूं। मैं किसी के प्रति बुरा भाव न रखूं, मैं किसी के अन्याय के समक्ष झुकूं नहीं, मैं असत्य को सत्य से जीतूं और असत्य का विरोध करते हुए मैं सभी कष्टों को सह सकूं। महात्मा गांधी।
7: मन का धर्म है मनन करना, मनन में ही उसे आनंद है, मनन में बाधा प्राप्त होने से उसे पीड़ा होती है। रविन्द्रनाथ ठाकुर।
6: अपने ज्ञान पर जरूरत से ज्यादा यकीन करना मूर्खता है। सबसे मजबूत कमजोर हो सकता है और सबसे बुद्धिमान गलती कर सकता है। APJ अब्दुल कलाम।
7: जैसे सूर्य सबको एक सा प्रकाश देता है, बरसात सबके लिए बरसती है, उसी तरह विद्या वृष्टि सब पर बरकरार होनी चाहिए। महात्मा गांधी।
6: आकाश की तरफ देखिए, हम अकेले नहीं हैं, सारा ब्रह्मांड हमारे लिए अनुकूल है और जो सपने देखते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें प्रतिफल देने की साजिश करता है। APJ अब्दुल कलाम। निरंतर विकास जीवन का नियम है और जो व्यक्ति खुद को सही दिखाने के लिए हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वे खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
7: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है और मनुष्य का।
8: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति असाना। पहले मुख्य समाचार। राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीरनगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा आज। ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। और अब समाचार विस्तार से। अयोध्या में राम मंदिर दान राशि के कथित गबन के मामले में विशेष जांच दल एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। ये कार्यवाही श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। आरोपितों के खिलाफ गबन, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है। दान राशि के कथित दुरुपयोग के आरोप सामने आने के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अनुरोध पर प्रदेश सरकार ने 13 जून को एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी मामले की विस्तृत जांच कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के कृषि रोडमैप, कृषि क्षेत्र की विभिन्न केंद्रीय और राज्य की योजनाओं तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की संयुक्त समीक्षा की। बैठक में श्री चौहान ने इंटीग्रेटेड फार्मिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि लखनऊ में एक क्लीन प्लांट सेंटर स्थापित किया जाएगा जिससे किसानों को बेहतर पौधे मिल सकें।
9: क्लीन प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनको अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला तो 2 साल 3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो वैसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज और अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
8: केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि के लिए समृद्ध उत्तर प्रदेश एक बड़ी भूमिका निभाएगा। इस अवसर पर उन्होंने चना, मसूर और सरसों की सरकारी खरीद की अवधि बढ़ाए जाने की मंजूरी भी प्रदान की। उन्होंने इस संबंध में स्वीकृति का आशय पत्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा। मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्रीय मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इससे प्रदेश के अधिक से अधिक किसानों को अपनी उपज न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने का अवसर मिलेगा और उनके हितों का बेहतर संरक्षण सुनिश्चित होगा। बैठक के दौरान अलनीनो के प्रभाव से निपटने के लिए रणनीति पर भी चर्चा की गई। बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय कृषि मंत्री कल अयोध्या भी पहुंचे और आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय में मखाने की खेती का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने किसानों से संवाद भी किया। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। अब 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 2026 पहली जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी

0: आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 139 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश के हर जनपद का विकास किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने पूर्वजों की विरासत को संरक्षित किया है। आज सुशासन और सुरक्षा के माहौल के साथ प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभरा है।
1: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं, बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल गोरखपुर में अक्षय पात्र फाउंडेशन के केंद्रीकृत रसोई घर का उद्घाटन किया। इस रसोई घर का निर्माण राज्य सरकार के सहयोग से किया गया है। यहां प्रतिदिन 1,00,000 स्कूली बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार कराकर विद्यालयों में वितरित किया जाएगा। इस अवसर पर उन्होंने पीएम पोषण योजना के अंतर्गत स्वच्छ और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन की सराहना की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिक्षा को सशक्त समाज की पहचान बताते हुए कहा,
1: शिक्षा समाज की आधारशिला होती है। किसी भी स्वस्थ और समृद्ध समाज की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है शिक्षा। शिक्षा जैसे होगी, समाज का वर्तमान और उसका भविष्य वैसे ही होगा। मैं आह्वान करूंगा बेसिक शिक्षा परिषद के सभी शिक्षकों से, प्रधानाध्यापकों से, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से, वे इस बात को ध्यान में रखें कि कोई बच्चा छूटने न पाए, हर बच्चे को स्कूल पहुंचाना है।
0: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कल प्रदेश के नवनियुक्त पदाधिकारियों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में 8 महामंत्री, 19 उपाध्यक्ष और 19 मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा पश्चिम, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के क्षेत्रीय अध्यक्ष और विभिन्न मोर्चों के अध्यक्षों के नाम भी घोषित किए गए हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने सभी वर्गों और क्षेत्रों को ध्यान में रखकर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है।
2: भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है, सबको लेकर के चलती है, युवाओं को भी लेकर, महिलाओं को भी लेकर के, और हम लोग ख्याल रखे हैं कि सभी का समायोजन उसमें हो जाए और सभी क्षेत्र का जो हमारे कार्यकर्ता है उनका सबका हर क्षेत्र से करीब करीब बराबर बराबर सबका समायोजन हो जाए, ऐसा प्रयास किया गया।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी नए पदाधिकारी संगठन को और अधिक सुदृढ़ बनाने, राष्ट्र प्रथम की भावना को जन जन तक पहुंचाने और जनसेवा के संकल्प को नई ऊर्जा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने पीसीएस परीक्षा 2026 का विस्तृत आवेदन कल जारी कर दिया। इसी के साथ करीब 500 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई। 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आज मुहर्रम की 10वीं तारीख यानी यौमे आशूरा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जुलूसों के संपन्न होने के बाद ताजियों को कर्बला में दफन कर दिया जाएगा। गोरखपुर में इमामबाड़ा स्टेट से 10वीं मुहर्रम पर निकलने वाले शाही जुलूस को देखने के लिए आसपास के जिलों से भी लोग पहुंचे हैं। इससे पहले कल मुहर्रम की 9वीं तारीख पर भी प्रदेश भर में जुलूस निकाले गए। गोरखपुर सहित राज्य के कुछ पूर्वी जनपदों में आज तड़के हुई बारिश से सुबह का मौसम सुहावना हो गया है। पूर्वी हिस्से के कुछ जिलों में कल भी हल्की बारिश हुई थी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राम मंदिर की दान राशि के कथित गबन मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट के बाद 8 नामजद और अन्य अज्ञात आरोपितों पर प्राथमिकी दर्ज। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लखनऊ में की उत्तर प्रदेश के कृषि रोड मैप की समीक्षा। कहा, किसानों को बेहतर पौध उपलब्ध कराने के लिए राजधानी में होगी क्लीन प्लांट सेंटर की स्थापना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। कहा, सुशासन और सुरक्षा के माहौल के कारण देश के ग्रोथ इंजन के रूप में उभर रहा है उत्तर प्रदेश।

और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौम आशुरा आज। ताजिया जुलूसों को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम पुरवा सुहानी।

पूरब और पश्चिम फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप महेंद्र कपूर, लता मंगेशकर और मनहर उदास की आवाज़ में। बोल थे इंदिवर के और जिसे संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने।

0: आँखियों के झरोखे फिल्म से ये गीत लिया था हमने हेमलता की आवाज़ में, संगीत और बोल थे रविंद्र जैन के।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। पूर्वा सुहानी कार्यक्रम में अगला गीत लिया है हमने फिल्म चित्तौड़ से, संगीत दिया है रविंद्र जैन ने, बोल है रविंद्र जैन के और आवाज है येसुदास की।

पूर्वा सुहानी कार्यक्रम का आखिरी गीत लिया है हमने फिल्म गीत गाता चल से। आवाज़ है जसवीर पाल सिंह की, संगीत दिया है रविंद्र जैन ने और बोल हैं रविंद्र जैन के।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 8 बजने वाले हैं। अब सुनिए दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात का आज का अंक।

केदार में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम

0: एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि आईएमएफ पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
3: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
4: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
1: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान

0: आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
1: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
2: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना 1,000 रुपये महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत, लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several

0: किया था। मस्कूरा एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, कृणीश पांडे, रामशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टीनू का नाम मुलजिम के तौर पर शामिल किया गया है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की मुख्तलिफ दफात के तहत मुलजिमों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। लखनऊ के डिविजनल कमिश्नर विजय विश्वास पंत की सरबराही वाली एसआईटी ने मंगल के रोज सरकार को अपनी इब्तदाई रिपोर्ट पेश की है। ये केस उस वक्त रोशनी में आया जब श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को मौसूल होने वाले चढ़ावे और चंदे की चोरी के इल्जाम सामने आए। ट्रस्ट ने खसूसी तहकीकात की दरख्वास्त की थी, जिसके बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी की तश्कील का हुक्म दिया। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। सकाफत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने एमरजेंसी के 50 साल पूरे होने की याद में साल भर चलने वाले प्रोग्रामों की इख्तितामी तकरीब में शिरकत की। ये तकरीब कल नई दिल्ली में हुई। इस मौके पर लोगों से खिताब करते हुए जनाब शेखावत ने कहा कि ये दिन हमें इस बात की याद दिलाता है कि जाबिराना और मुतलकुल अनान निजाम हुकूमत ज्यादा दिन नहीं रहता और आखिरकार इसका खात्मा हो जाता है।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काल रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: 1975 की इमरजेंसी को 50 साल पूरे होने के सिलसिले में इस प्रोग्राम का अहतमाम किया गया था ताकि अवाम में जमहूरियत, आईनी अकदार और शहरियों के हकूक के ताल्लुक से बेदारी को तकवीत मिल सके। बैन अलाक्वामी माली फंड IMF ने कहा है कि मगरबी एशिया में हाजराई और तेल की कीमतों में इजाफे के इक्तसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। IMF की प्रेस ब्रीफिंग से खिताब करते हुए IMF के मुआसलात महकमे की डायरेक्टर जूली कोजेक ने कहा कि गैर मुल्की उथल पुथल के बावजूद भारत की मईशत मुस्तहकम रही है और मजबूत अंदरूनी मुल्क मांग से इसको तकवीत मिली है। IMF ने कहा कि माली साल 2026-27 में भारतीय मईशत की शरह तरक्की 6.5% रहने का अंदाजा लगाया गया है। इस तरह अप्रैल में नजर सानी के बाद शरह तरक्की में इजाफे का जो सिलसिला शुरू हुआ था वो बरकरार रहेगा। मोहतरमा कोजेक ने यह भी कहा कि साल की पहली सहमाही के दौरान भारतीय मईशत की कारकर्दगी तवक्कुआत से भी ज्यादा अच्छी रही है। वेनेजुएला में दो शदीद जलजले आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 235 हो गई है। 1,500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वाले लोगों को मलबे में तलाश कर रहे हैं। वेनेजुएला की उबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। वहां कल 7.2 शिद्दत का जलजला आया था। इसके चंद सेकेंड बाद इससे भी ज्यादा ताकतवर 7.5 शिद्दत का जलजला आया। ये दोनों ही जलजले जमीन की सतह के बहुत करीब थे, इसलिए तबाही भी ज्यादा हुई है। कई मुल्कों ने इमदादी कोशिशों में मदद का वादा किया है। वेनेजुएला की सदर ने जलजले के तनाजुर में भारत की यगानगत को तस्लीम करते हुए कहा है कि वो मुश्किल की घड़ी में इश्तराक के जज्बे के साथ खड़ा है। आज आशूरा मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पैगम्बर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने हक़ सदाकत और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए मैदान करबला में अपनी जान का जो नजराना पेश किया था उसकी याद में यह दिन मनाया जाता है। इस मौके पर ताजियों के जुलूस निकाले जा रहे हैं। मजालिस का भी एहतमाम किया गया है जिसमें शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। खवातीन के ICC T20 आलमी कप में कल रात इंग्लैंड के मैनचेस्टर में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए बांग्लादेश ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 136 रन बनाए। भारत के लिए राधा यादव ने 3 जबकि श्री चन्नी ने 2 विकेट हासिल किए। इसके जवाब में भारत ने जीत का निशाना 16 ओवर्स और 5 गेंदों में हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में शानदार 53 रन बनाए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अब हरमनप्रीत कौर की क्यादत वाली खवातीन की भारतीय क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए इतवार के रोज ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। फीफा आलमी कप में आज सुबह सवेरे

0: न्यू जर्सी स्टेडियम में ग्रुप ई के एक मुकाबले में इक्वाडोर जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया। इससे कबल फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के एक मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने क्यूरासाओ को 2-0 से हराया। वो पहली मरतबा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया। टीम के लिए निकोलस पेपे ने 2 गोल किए। निशानेबाजी में जर्मनी के सुहल में ISSF जूनियर आलमी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कल 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में मजीद 4 तमगे जीते और उसके कुल तमगों की तादाद 25 हो गई। मर्दों के 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में राजचंद्रा ने कांसे का तमगा जीता जबकि कुमार योगेश चौथी पोजीशन पर रहे। योगेश, प्रतीक और अभिनव चौधरी पर मुश्तमिल भारतीय टीम ने टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। आखिरी रोज भारत ने 4 तमगे जीते और तमगों की तादाद 25 हो गई, जिनमें सोने के 7, चांदी के 8 और कांसे के 10 तमगे शामिल हैं, जिसके बाद भारत लगातार दूसरी मरतबा तमगों के मामलों में सरफहरिस्त रहा। क्रिकेट में आज बेलफास्ट में पहले T20 बैन अलावामी मुकाबले में भारत मेजबान आयरलैंड का सामना करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से खेला जाएगा। इतवार के रोज भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ अपना दूसरा और आखिरी T20 मैच खेलेगी। इसके बाद सुरेश अय्यर की कप्तानी में मर्दों की भारतीय टीम 5 T20 मैचों की सीरीज के लिए इंग्लैंड जाएगी। इसका आगाज आइंदा माह की 1 तारीख से होगा। इसके बाद 3 एक रोज़ा बैन अलावामी क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, वेनेजुएला में तबाहकुन जलजले से सैकड़ों अफराद हलाक, 1,000 से ज्यादा जख्मी, 10,000 से 1,00,000 के दरमियान अमवात का खदशा, दुनिया के कई मुल्कों ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ। इसी खबर से मुतालिक रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वेनेजुएला में जलजले से भारी तबाही पर दुख, वजीर आजम ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, LPG की सप्लाई पर से तमाम पाबंदियां हुकूमत ने उठाई, अब लोगों को मामूल के मुताबिक गैस सिलेंडर दस्तियाब होगा। भारत अमरीका मेगा डील जल्द, दुनिया की नज़रें 24 जुलाई पर टिकी हुई हैं। ये खबर रोजनामा प्रताप के सफ़े अव्वल पर नुमाया अहमियत के साथ मौजूद है। इसी सफ़े की एक और खबर है, दिल्ली की 270 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को नए सिरे से बनाया जाएगा, रेखा गुप्ता का बयान। रोजनामा प्रताप ने रेखा गुप्ता के इस बयान को भी नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है कि दिल्ली के 75 CM श्री स्कूलों में नई सहूलियात तैयार की जाएंगी। कुछ दीगर अहम खबरें इस तरह से हैं, हज 2027 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज 20 जुलाई 2026 से कर दिया गया है, आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 है। 1,000 उमरा जायरीन शाह सलमान के शाही मेहमान बनेंगे, मगरबी यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में नए रिकॉर्ड कायम।
0: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा ने भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के कायदाना रोल वाले इनकलाब पर तबादला ख्याल किया। सरकार ने कमर्शियल LPG की सप्लाई बहरान से पहले की सतह पर बहाल कर दी है, मुख्तलिफ तरह की बंदिशें हटा ली गई हैं। अयोध्या राम मंदिर अतिया केस के सिलसिले में 8 नामजद मुलजिमों और कई नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बैन अलावामी माली फंड ने कहा है कि मगरबी एशिया महाजराई और तेल की कीमतों में इजाफे के इक्तसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया, जिसमें शिफाली वर्मा की उमदा कारकर्दगी का अहम रोल रहा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम हिट्स सुपर हिट्स।

बरसात की एक रात फिल्म से अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और किशोर कुमार को। बोल थे आनंद बख्शी के, जिसे संगीत से सजाया था राहुल देव बर्मन ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म मेरे महबूब से। संगीत दिया था नौशाद ने और बोल थे शकील बदायूं के।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र। हिट्स सुपर हिट्स प्रोग्राम में अगला गीत लिया है हमने फिल्म काजल से आशा भोसले की आवाज में। संगीत दिया है रवि ने।

सुजाता फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप, तलत महमूद की आवाज़ में। संगीत दिया था SD बर्मन ने और बोल थे मजरूह सुल्तानपुरी के। हिट सुपर हिट्स प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत लिया है हमने फिल्म मधुमति से। संगीत दिया है सलिल चौधरी ने और बोल हैं शैलेंद्र के।

कार्यक्रम का आखिरी गीत लिया है हमने फिल्म मुगले आजम से। आवाज़ है लता मंगेशकर की, संगीत दिया है नौशाद ने और बोल हैं शकील बदायूनी के।

ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। 9:15 होने वाले हैं। अब सुनिए लखनऊ केंद्र से जिले की हलचल।

0: आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए आगरा और बिजनौर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं आगरा जिले की हलचल। आलेख और स्वर है सज्जन सागर का।
2: 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आगरा में जगह जगह योग शिविर लगाए गए। विश्व प्रख्यात ताजमहल के पार्श्व में योगा कर निरोग रहने का दुनिया को संदेश दिया गया। वहीं आयुष विभाग और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित एकलव्य स्पोर्ट स्टेडियम में योगा फॉर हेल्दी एजिंग थीम पर योग शिविर का आयोजन किया गया। योग शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एस पी सिंह बघेल, कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य और उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेकर योगा अभ्यास करते हुए सभी को

0: रहो योग रहो निरोग का देश और दुनिया को संदेश दिया। इस दौरान पश्चिम बंगाल के कोलकाता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योग दिवस पर दिए गए संबोधन का सजीव प्रसारण देखा और सुना गया। योग शिविर में स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राएं, सरकारी अर्ध सरकारी आयुष विभाग के अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में मौजूद शहरवासियों को योगाचार द्वारा योग के विभिन्न आसन कराए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री SP सिंह बघेल ने कहा कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है और पूरी दुनिया हमारी विद्या और विद्या का अनुगमन कर रही है जो व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक रूप से विकसित करती है।
1: करें योग, रहें निरोग, और इस बार की थीम है योगा फॉर हेल्दी एजिंग। और मेंटल हेल्थ इस समय विश्व की बहुत बड़ी समस्या है, तो ये शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य में योग का बहुत बड़ा योगदान है।
0: उन्होंने कहा कि योग तनाव को दूर करता है और एकाग्रता पैदा करने के साथ साथ अनेक बीमारियों से भी बचाता है। बीते दिनों आगरा में सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के तत्वावधान में ब्रिक्स इंडिया 2026 के तहत पहले ब्रिक्स MSME फोरम और तीसरे ब्रिक्स MSME वर्किंग ग्रुप की बैठक सम्पन्न हुई। पहले ब्रिक्स MSME फोरम की बैठक में केंद्रीय लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, प्रदेश सरकार के MSME मंत्री भूपेन्द्र चौधरी सहित ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, UAE, बेलारूस, बोलिविया, क्यूबिया, कजाकिस्तान, मलेशिया सहित 21 देशों के ब्रिक्स सदस्य और ब्रिक्स सहयोगी देशों की नीति निर्माता, उद्योगपति, उद्यमी और अन्य प्रमुख हितधारकों ने भाग लेकर वैश्विक MSME इकोसिस्टम को मजबूत करने, स्थिरता को बढ़ावा देने और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने संबोधित करते हुए वैश्विक अर्थव्यवस्था और कमजोर वर्गों के उत्थान में MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत में लगभग 8.6 करोड़ MSME इकाइयां हैं जो 38 से 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्रदान करती हैं। वहीं प्रदेश के सूक्ष्म लघु एवं उद्यम मंत्री भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि ब्रिक्स सम्मेलन केवल संवाद का अवसर नहीं है बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच परस्पर सहयोग, तकनीकी आदि।
2: स्वच्छता अभियान को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि सभी विभिन्न स्थानों पर जाकर के इस अभियान के माध्यम से एक संदेश समाज में देने का कि पूरा समाज जब किसी अभियान का हिस्सा बन जाता है तो वो अभियान एक आंदोलन बन जाता है।
0: आगरा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के प्रवेश द्वार पर महाराणा प्रताप की 15 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण किया। प्रतिमा के अनावरण के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शमशाबाद के पी इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित किसान, जवान, महिला स्वाभिमान रैली में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने कभी घुटने नहीं टेके और अपने मातृभूमि की रक्षा के लिए हल्दीघाटी को दुश्मनों के खून से लाल कर दिया था। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप की वीरता और उनका शौर्य किसी दरकार और इतिहासकार का मोहताज नहीं है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है।
3: हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ भारत बोलता था, भारत की बातों को जितनी गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था, लेकिन आज हमारा भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है तो सारी दुनिया कान खोल कर सुनती है भारत बोल क्या रहा है। यह भारत की हैसियत नहीं है।
4: आगरा जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं बिजनौर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अतुल गर्ग का।
5: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिजनौर के विकासखंड अफजलगढ़ स्थित ग्राम आलमपुर गावड़ी में आयोजित भव्य कार्यक्रम में विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को लाभान्वित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के वंचित, शोषित एवं जरूरतमंद वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री द्वारा पाकिस्तान से विस्थापित 1645 परिवारों तथा 50 पूर्व सैनिकों एवं लीज धारकों को भूमि अधिकार पत्र प्रदान किए। उन्होंने कहा कि भूमिधरी अधिकार मिलने पर लाभार्थियों को न केवल भूमि पर वैधानिक स्वामित्व प्राप्त होगा बल्कि उन्हें सम्मान, सुरक्षा और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ भी सुगमता से मिल सकेगा। कार्यक्रम के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्वयं सहायता समूहों तथा अन्य योजनाओं के लाभ लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, डेमो चेक एवं प्रमाण पत्र वितरित किए। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा चयनित 11 प्रेरणादायी लाभार्थियों को मंच पर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर लाभान्वित होने वाले लाभार्थियों ने बताया,
6: जो हमारी जमीन में ट्रेनिंग 2 में थी, अब 1 में हो गई है, हमें पूर्ण भूमिधारी का अधिकार मिल गया है, इसमें हम लोन ले सकते हैं, दे सकते हैं, हमारा स्वामित्व पूरा हो गया। सरकार ने हमें वो प्रमाण पत्र दिए और हमें

0: खतौनी दी है, हम उसका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।
1: मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा संचालित विदुर प्रेरणा कैफे तथा अन्य विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा एवं कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने लाभार्थियों से संवाद करते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनने तथा सरकारी योजनाओं का सदुपयोग कर अपने जीवन स्तर को बेहतर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर कार्य करते हुए अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए संकल्पित है। विभाजन विभीषिका के शिकार विस्थापितों को भूमि आवंटन के मालिकाना अधिकार के अभिलेख पत्र प्रदान करने से पूर्व उन्होंने विभिन्न विभागों के तत्वाधान में लगाई गई विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष में लगाई गई बिजनौर में 3 दिवसीय विकास प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि राज्यसभा सांसद एवं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तारिक मसूद, जिला अध्यक्ष भाजपा भूपेंद्र चौहान तथा जिलाधिकारी जसजीत कौर की उपस्थिति में सुशासन को समर्पित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सेवा के 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष में इंदिरा बाल भवन में आयोजित विकास प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। मुख्य अतिथि तारिक मसूद ने अपने संबोधन में कहा कि सरकार गरीब, किसान, महिला, युवा और कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है और प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुँचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि द्वारा जनपद की विकास परक योजनाओं पर आधारित विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र एवं स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के जरिए अब बिजनौर जिले के पारंपरिक स्वादों को न केवल नई पहचान मिलने जा रही है बल्कि इससे जुड़े छोटे और मझोले कारोबारियों के दिन भी बहुरने वाले हैं। एक जिला एक उत्पाद की तर्ज पर अब एक जिला एक व्यंजन योजना के अंतर्गत बिजनौर के 4 प्रमुख स्थानीय उत्पादों को शामिल किया गया है। इस योजना के तहत अब इन व्यंजनों को तैयार करने वाले स्थानीय निर्माताओं को सरकार की तरफ से भारी अनुदान और आसान किस्तों पर ऋण की सुविधा मिलेगी। जिले में प्रमुख व्यंजनों को राष्ट्रीय स्तर पर चमकाने के लिए प्रशासन ने 4 खाद्य पदार्थों का चयन किया है। धामपुर की सिंगाड़े की कचरी, नजीबाबाद की गजक, सोन पापड़ी और बतीसा पारंपरिक रूप से तैयार होने वाला एक मीठा व्यंजन है जो इस सूची का मुख्य हिस्सा है। अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग ने बताया, एक जिला एक उत्पाद योजना के अंतर्गत आवेदकों को ऋण सुविधा के साथ भारी अनुदान दिया जा रहा है। अमित कुमार, उपायुक्त उद्योग ने बताया,
2: परंपरागत मिष्ठान है या कुछ ऐसे व्यंजन है जो अभी तक लोकल लेवल तक ही सीमित थे, उसी जनपद तक सीमित, अब इस स्कीम से उनकी पहचान प्रदेश भर में और देश भर में या इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने का सरकार का मुहिम है।
3: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
4: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।
5: उससे तो सस्ता ही है।
6: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना,
5: नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम,
6: RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
4: देश गीत।

0: भी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, नींव से लेकर छत तक भरोसे का सिर्फ एक ही नाम, RHL गोल्ड टीम टीसरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 9:30 होने को है। अब सुनिए उर्दू प्रोग्राम हमारे लखनऊ केंद्र से।

आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम।

आज यौम आशूरा है, क्या कहना हुसैन के सब्र और इंसानियत का। जो उन्होंने पैगाम दिया उसका कोई आज तक मिसाल नहीं मिली। वाकया करबला सिर्फ एक तारीखी वाकया नहीं, बल्कि ये सब्र, इंसानियत और हक़ परस्ती का एक जीता जागता शाहकार है। करबला सब्र की तलकीन करता है, यहाँ हर मुकाम पर सब्र ही सब्र है। करबला के पैगाम को समझने के लिए तारीखी पस मंज़र में जाना ज़रूरी है और उन मौाक़ों को नज़रसानी करना पड़ेगा जहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का बचपन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम पेशिनगोई कर रहे हैं कि मेरा यह नवासा करबला में शहीद होगा, और आप ये कहकर गमगीन हो जाते हैं। 1400 साल कबल करबला में दो ताकतें आमने सामने थीं, एक जो हक़ इलाही की नुमाइंदगी कर रही थी और दूसरी ताकत जो बनाम इस्लाम हुकूमत हासिल कर बज़ाहिर इस्लाम का परचम लहराना चाहती थी। ऐलान रिसालत के बाद जैसे ही हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर वहदत का पैगाम दिया, तो वो अरब के बद्दू जो अपने बनाए हुए बुतों की परस्तिश खुद करते थे, उनके लिए अचानक एक खुदा का मानना और कबूल करना आसान न था। रसूल को तरह तरह की तकलीफ़ों और परेशानियों का सामना करना पड़ा, मगर इस्लाम के बढ़ते हुए असर को देखकर बहुत से बद्दू अरबियों ने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया, लेकिन बाद रसूल अचानक जो कल तक इस्लाम के हामी थे, पैरोकार थे, वो इस्लाम के कट्टर दुश्मन बन गए और आले रसूल यानी अहले बैत के ख़िलाफ़ हर तरह की साजिशें रचने लगे। माविया लानतुल्लाह अलैह, जिसको खलीफा दोयम ने शाम का गवर्नर बनाया था, उसका बेटा यजीद, माविया की माँ हिंदा, माविया ने अपने दौर हुकूमत में हज़रत अली अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ साजिशें करवाना शुरू की, यहाँ तक कि मेंबरों से हज़रत अली अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखियाँ एक आम बात हो गई थी, और उसके बदले में माविया की हुकूमत इनामात तकसीम करती थी। यहाँ तक कि हज़रत अली और उनके वालिद हज़रत अबू तालिब को काफिर तक कहा गया। यह प्रोपगंडा कराया गया कि हज़रत अली तो नमाज तक नहीं पढ़ते हैं, जो भी रास्ते में मिलता वो हज़रत अली अलैहिस्सलाम को सलाम करने से भी गुरेज करता। ये ऐसा वक्त था। एक वक्त आया कि 21 रमज़ान को हज़रत अली अलैहिस्सलाम को मस्जिद कूफा में हालत सजदा में शहीद कर दिया गया, मगर इस पर हसनैन ने सब्र किया। दूसरे इमाम इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर देकर शहीद कर दिया गया। फिर उनके जनाजे पे तीर बरसाए गए, मगर यहाँ पर भी इमाम हुसैन ने अपने सब्र का मुजाहरा किया। शायर ने सच ही कहा है कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है, एक ज़र्ब यदुल्लाही एक सजद शब्बीरी। माविया ने अपनी ज़िंदगी में अपने बेटे यजीद को खलीफा बनाया और बैत तलब की। सब ने बैत कबूल की। उसने चाहा कि नवासे रसूल से भी बैत ली जाए, क्योंकि बग़ैर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बैत लिए यजीद की बैत अधूरी रहेगी। जब यह पैगाम आली मुकाम तक पहुँचा तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुझ जैसा यजीद जैसे फाजिर फासिक की बयात कैसे कर सकता है? मेरे बाबा अली मुर्तज़ा, मेरी माँ खातून जन्नत, मेरे नाना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब यजीद को यकीन हो गया कि नवासे रसूल हमारी बयात नहीं कबूल करेंगे, तो उसने मदीना छोड़ने पर आपको मजबूर किया। इमाम कब्र रसूल से जुदा हुए आपने उस वक्त भी सब्र किया, मक्के का सफ़र अख्तियार किया, यहाँ भी हाजियों के भेस में दुश्मन मौजूद थे, आपने हज को उम्रे में तब्दील किया और इराक का रुख किया। दुश्मन कहीं बैतुल्लाह में खून न बहा

बैतुल्लाह के तकद्दस को बचाकर वहाँ से कूच किया और सब्र किया। सवाल यह उठता है कि यजीद आखिर इतनी कोशिशें क्यों कर रहा था कि इमाम हुसैन की बैत हासिल हो जाए, क्योंकि यजीद को जो हुकूमत अपने बाप माविया से मिली थी उसमें इस्लाम की हकीकी सूरत को बदल दिया गया था। जुमे की नमाज बुध को पढ़ाई गई, फज्र की नमाज में कहा गया कम हो तो और पढ़ा दूँ, ये सब बनामे इस्लाम जारी व सारी था और आलम इस्लाम खामोश था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बैत से इनकार, यजीद को अपनी हुकूमत के लिए ख़तरा लगने लगी। यजीद ने अपने ख़जाने का मुंह खोला कि किसी भी सूरत में आले नबी को ख़त्म कर दिया जाए, मगर यहाँ पर भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत की बका के लिए सब्र किया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपनी आल औलाद अंसार और सहावियों की जान की कुर्बानी देना कबूल की ताकि उम्मत मोहम्मदी की बख्शिश हो सके। यजीद की जानिब नमाजी, हाफिज कुरान, असहाबे रसूल सब थे, मगर रूह नमाज, तकद्दुस कुरान और सच्ची सहाबियत न थी। यजीद ने बाप की तारीख को दोहराते हुए इमाम हुसैन के छोटे छोटे बच्चों पर 7 मुहर्रम से पानी बंद कर दिया ताकि एक बूंद पानी भी खैया में हुसैनी में न पहुँच सके।

आगाज जंग हो गया। एक एक करके तमाम अंसार दोस्त भाई भतीजे भांजे बेटे शहादत जाम पीते रहे। वो वक्त भी आ गया कि जब मर्दों में फकत आबिद बीमार बचे जो गश में थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आखिरी रुख्सत के लिए खैमे में आए। सैयद सज्जाद ने गश से आंखें खोली, पूछा बाबा क्या हुआ? इमाम ने फरमाया सज्जाद मर्दों में सब के सब शहीद हुए, सब ने शहादत का जाम नोश फरमाया, अब मर्दों में फकत तुम बचे हो। सैयद सज्जाद ने पूछा क्या आशकिया खैमों में आ गए? इमाम सैयद सज्जाद को गैज आ गया और आपने मैदान जाने का इरादा किया। इमाम हुसैन ने फरमाया कि सज्जाद तुम ही इमाम वक्त हो, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है, इस इस्लाम को बचाना है, सब्र करो, तुमको माँ बहनों खूबियों को सरे दरबार साथ में जाना है, इस पर भी तुमको सब्र करना है और सजदे शुक्र अदा करना है।

इनके बाजू कवी रहे, तैगे खिंची लिए हुए भागे जो अहले शर, कटकर किसी का हाथ गिरा और किसी का सर, तलवार यहां पड़ी थी किसी की तो वहां पसर, बरछी थी इस शकी की तो उस नहस का जिगर, ये जंग थी कि हश्र कोई जानता न था, बेटे को बाप खौफ से पहचानता न था, पढ़कर रजज अली ये वली का पेसर बढ़ा, गोया शिकार खेलने को शेरे नर बढ़ा, दरियाए कहरे खालिक जिन्नो बशर बढ़ा, बहरे नबर्द मालिके फतहो जफर बढ़ा, और तड़पा जो रख्श बर्क निगाहों से गिर गई, आमद खुदा के शेर की आंखों में फिर गई, जब करबला में दाखलाए शाहिदी हुआ, अल्लाह के जलजला की लरसते थे दश्तो दर, जंगल में छुपते फिरते थे डर डर के जानवर, जिन्नात कांप कांप के कहते थे अल हजर, दुनिया में खाक उड़ती है अब जाएं हम किधर, अंधेर है उठी बरकत अब जहान से, लो मिल गया जमी का तबक आसमान से, खाते थे तन पे जख्म कुछ अपना न था अलम, बहता था खून रकाब में थमते न थे कदम, मुजतर था मश्क के लिए वो साहिबे करम, आधा हदफ बनाए थे कीने से मश्क को, पर ये जुदा न करते थे सीने से मश्क को, गुर्जे सितम से शक हुआ नागा सरे जनाब, थर्राए होठ छुट गई दांतों से मश्क आब, फरमाया हाय देंगे सकीना को क्या जवाब, घोड़े से थर थर आके गिरे मिसले आफताब, तड़पे उठे कराह के खामोश हो गए, अरे मुंह रख के खाली

0: नब बरहना सर चिल्लाए तब ये रोके शहंशाहे बहरो भर अम्मा कमर तो टूट गई जाए अब किधर हम मर गए कि खल्क से भाई गुजर गया बाजू हमारा थामने वाला तो मर गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला ज़रीहे पाक पे बुलवा ये शिताब अब हिजर की अनीस के दिल को नहीं है ताब।
1: सामाइन, आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर इख्तिताम पज़ीर होता है। फिर मिलेंगे किसी और दिन, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद सईद अख्तर को दीजिए इजाज़त, आदाब।
2: अभी आप सुन रहे थे, हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के प्रोग्राम में आज के फनकार हैं गुलाम अली।

पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: सुगम संगीत के प्रोग्राम में आज आप सुन रहे हैं गुलाम अली को।

0: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा, गोरखपुर।

0: आप सुन रहे थे सुगम संगीत का प्रोग्राम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। 10 बजने वाले हैं, दिल्ली केंद्र से समाचार सुनिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे

0: 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
2: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्णमोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिए निकाले जा रहे हैं। कर्बला के शहीदों के सर्वोच्च बलिदान को याद करते हुए मजलिसें और धार्मिक सभाएं भी आयोजित की जा रही हैं। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उनका त्याग, साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। आज भारत का अगला मुकाबला रविवार को ऑस्ट्रेलिया से होगा। वहीं टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों पर आधारित कार्यक्रम गाते गुनगुनाते।

दिल्ली सिक्स फिल्म से ये गीत सुन रहे थे आप जावेद अली और कैलाश खेर की आवाज़ में। बोल थे प्रसून जोशी के, जिसे संगीत दिया था AR रहमान ने।

ये गीत सुन रहे हैं आप बशना ए हसीनो फिल्म से। संगीत दिया है विशाल और शेखर ने, बोल हैं अन्विता दत्त गुप्तन के। और आवाज़ें हैं लकी अली और श्रेया घोषाल के।

0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
3: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
2: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
3: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
2: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

गाते गुनगुनाते कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से। कार्यक्रम में अगला गीत लिया है हमने फिल्म ताल से, अलका याग्निक सुखविंदर सिंह की आवाज में। संगीत दिया है AR रहमान ने और बोल हैं आनंद बख्शी के।

अर्ज है, कुछ मजनू बने, कुछ रांझा बने, कुछ रोमियो कुछ फरहाद हुए, इस रंग रूप की चाहत में जाने कितने बर्बाद हुए। वो देखो,

से देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं। मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

0: खिलते हैं, बहारों का समा होता है। ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।
1: आमिर खान और अलका याग्निक को अभी आप सुन रहे थे फिल्म सरफरोश से। संगीत दिया था जतिन ललित ने और बोल थे समीर के।

युवा फिल्म में अभी आप सुन रहे थे एआर रहमान, सुनीता और तन्वी की आवाज़ में। ये गीत बोल थे महबूब के, जिसे संगीत दिया था एआर रहमान ने। गाते गुनगुनाते प्रोग्राम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

फिज़ा फिल्म से ये गीत लिया है हमने कदर गुलाम, मुर्तजा गुलाम, एआर रहमान और श्रीनिवास की आवाज़ में। संगीत दिया है एआर रहमान ने और बोल हैं मियां शौकत अली के।

0: खो गया इंतजाम।
1: किसका?
0: गुड्डी की फीस का।
1: दिखा। 20,000 का लोन तुरंत? पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही ले और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम, पगार एडवांस में भेजिए।
2: RBI कहता है,
3: सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव।
4: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। BTech पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA B Pharma M Pharma और D Pharma में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details log on to www.ddindia.com।

लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ में ये गीत सुन रहे थे आप फिल्म दिल तो पागल है। संगीत दिया था उत्तम सिंह ने और बोल थे आनंद बख्शी के।

गाते गुनगुनाते कार्यक्रम का आखिरी गीत लिया है हमने फिल्म जब प्यार किसी से होता है। आवाज़ें हैं कुमार सानू और लता मंगेशकर की, संगीत दिया है जतिन ललित ने और बोल हैं आनंद बख्शी के।

0: इस गीत के साथ ही गाते गुनगुनाते कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र, 11 बजने वाले हैं। अब सुनिए दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों के एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हार्मिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर कायल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। गृह मंत्रालय ने बताया कि मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी द्वारा आयोजित बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़े कानून

0: गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं।
1: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
2: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज जल डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: आज मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। शहीदों की याद में आज ताजिया निकाले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत की पुरुष टीम आज बेलफास्ट में मेजबान आयरलैंड के साथ पहला मैच खेलेगी। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6 बजे से शुरू होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मीडिया वेव 323.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का यह गोरखपुर केंद्र है। लोकगीतों का कार्यक्रम लोक रंग अब से कुछ पलों में।
4: पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
5: लीजर रिजॉर्ट बहराइच,
4: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
5: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
4: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
5: UPSRTC देवरिया,
4: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा,
5: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
4: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
5: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
4: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
5: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
4: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।
6: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
7: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
8: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 10% ज्यादा भूकंप रोधक।
9: RHL गोल्ड DMT सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: लोकगीतों के कार्यक्रम लोक रंग में आज के कलाकार हैं राधे श्याम मणि त्रिपाठी। आइए सुनते हैं उनसे उनके गाए लोकगीत।
10: के राधा

अमीर मोहिया जब से तू गईला श्याम भैला नीर मोहिया बन पवन ढूढ़ली सुजनाड गरिया।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details, log on to www.ddindia.com।
3: लोकगीतों के कार्यक्रम में इस समय आप सुन रहे हैं राधे श्याम मणि त्रिपाठी के गाए लोकगीत।

सरकारे एक रोज लाओ के लेके सिया जी सरकारे पानी लेवे बाजे गईली गंगा के किनारे पानी लेवे बाजे गईली गंगा के किनारे।

इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से राधे श्याम मणि त्रिपाठी के गाए लोकगीत। ये अगला लोकगीत दादरा। गई।

विद्या ले गई मझरिया। विद्या ले गई

जाई कहो अपने प्यारे देवारी से, प्यारे देवारी।

जाई अरजी करे अपने साधु से, अपने साधु से, अपने साधु।

0: कार्यक्रम में राधे श्याम भरत त्रिपाठी से आगे सुनिए एक देवी गीत।
1: माई के जगावे मालिन फूटली किरिनिया, हे मैया जागो मलिया कर

याहू लिसानी करली स्नान मैया याहू लिसानी राज राज कर माई सोर हो सिंगारी।

0: मलिया करेला जय जय का।
1: इस समय आप सुन रहे हैं राधे श्याम बड़े त्रिपाठी के गाए लोकगीत।

0: पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
0: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करे अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: नशे का

लोकगीतों के कार्यक्रम लोकरंग में आज के कलाकार थे राधे श्याम मणि त्रिपाठी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब से कुछ पलों में। श्रोताओं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि का आरंभ हम कर रहे हैं बचना ए हसीनो मूवी के इस गीत से, जिसे के विशाल शेखर और शिल्पा राव ने आवाज़ दिया है।

0: का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
1: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
0: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
1: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
0: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
1: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनल।

इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: शास्त्री, इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं राज रिबूट मूवी से।

0: अंचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक, पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, बी फार्मा, एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in। देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: श्रोतो, फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीतांजलि में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं हमारी अधूरी कहानी का ये गीत।

श्रोताओ, ये गीत हमने लिया है निर्जा मूवी से, कविता सेठ की आवाज में। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि, आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से।

0: निर्जा मूवी के गीत के बाद श्रोताओं हम आपको सुनवा रहे हैं उंगली मूवी का ये गीत।
1: Rica, ooh, stara, rica, stara, rira, cucaru, rica, ooh.

श्रोतो, उंगली मूवी के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि हम यहीं संपन्न करते हैं। आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है, मीडियम एफ 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं नई दिल्ली द्वारा, NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
0: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं आपका मित्र अजीत। आइए हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत विचार से, जिस विचार को हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं, हम हर आने वाले दिन को आज के दिन से बेहतर बना सकते हैं, बस सकारात्मक रवैया चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है नगर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। गांव फरांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल। ग्राम पुतकी कला कवर्धा छत्तीसगढ़ से राधेश्याम पांडे, वीणा पांडे, विनय शंकर पांडे, नयन पांडे और सोमांशु पांडे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इन संदेशों के लिए। अब एक बार फिर से आप सबका स्वागत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम बात कर रहे हैं भारत की अनेक उन गुफाओं के बारे में जो अपने आप में अनूठी हैं, प्रकृति का चमत्कार हैं। ये भारत की सबसे पुरानी लंबी गुफाओं में से एक मानी जाती है। जी हाँ श्रोताओं, इन गुफाओं को प्रकृति ने बनाया है। आज हम चलेंगे भारत के मेघालय में गारो हिल्स के रमणीय वातावरण में स्थित सिजू गुफाओं की ओर, जो प्रकृति की कलात्मकता और भूवैज्ञानिक चमत्कारों का अद्भुत उदाहरण है। तो श्रोताओं, आपको बता दें कि मेघालय राज्य में स्थित ये गुफाएं अपनी रोचक बनावट और विशाल चट्टानी कक्षों के लिए प्रसिद्ध हैं। इन कक्षों को एयरक्राफ्ट

0: कि यहाँ घोर अंधकार रहता है और इसके कारण हजारों की संख्या में यहाँ पर चमगादड़ मिलते हैं। श्रोताओं, ये गुफाएं अंधेरे नम वातावरण के अनुकूल ढल चुकी अनूठी प्रजातियों के लिए आवास प्रदान करती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के चमगादड़ और गुफाओं में रहने वाले कीड़े भी शामिल हैं। लाखों वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी घोर अंधकार में रहने के कारण यहाँ के बहुत से जीवों की आँखें अभी तक अविकसित हैं। सिजू गांव के पास स्थित होने के कारण ये गुफाएं सिजू गुफाएं कहलाती हैं, जो एक विशाल गुफा प्रणाली का हिस्सा हैं। ये गारो पहाड़ियों में गहराई तक फैली हुई हैं। श्रोताओं, सिजू गुफाओं के मुख्य आकर्षणों में टूथ पैसेज विशेष रूप से जाना जाता है। आइए अब जानते हैं इसका नाम टूथ पैसेज क्यों पड़ा। इसका नाम टूथ पैसेज इसलिए पड़ा कि यहाँ चट्टानों की बनावट ऐसी है कि वे मनुष्य के दांतों की श्रृंखला जैसी दिखाई पड़ती हैं। एक और अनूठी बात आपसे साझा करना चाहते हैं और वो ये है कि यहाँ का स्थानीय गारो जनजातीय समुदाय इन गुफाओं को अलौकिक शक्तियों का निवास स्थान मानता है और समय समय पर इन गुफाओं में आकर अपने पूर्वजों के प्रति अनुष्ठान भी करता है। समृद्ध जैव विविधता के कारण ये स्थान पक्षी और जीव विज्ञानियों के लिए एक आदर्श स्थान है, क्योंकि यहाँ उन्हें गुफा में रहने वाले दुर्लभ जीवों का अध्ययन करने का अवसर मिलता है। गुफा के अंदर टपकते पानी की गूंज और कभी कभार चमगादड़ों के पंखों की फड़फड़ाहट एक अलौकिक वातावरण का निर्माण करती है। यही कारण है कि सिजू गुफाओं को स्थानीय गारो भाषा में डोवाकोल भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है चमगादड़ों का घर। इन गुफाओं की एक विशेषता है और वो ये है कि अन्य कुछ गुफाओं की तरह इसकी खोज किसी एक व्यक्ति ने नहीं की। स्थानीय जनजाति के लोग इसे हजारों वर्षों से जानते आए हैं। वैज्ञानिक अन्वेषण बाद में हुए, तब कहीं जाकर इसकी विचित्रता का पता दुनिया को चला। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब सुनिए आज का प्रश्न। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। सिजू की गुफा में एक पैसेज है जिसे टूथ पैसेज कहते हैं, क्यों? 8800440559 है हमारा IVRS नंबर और audio@ciet.nic.in है हमारे ईमेल का पता। आप इन पतों पर प्रश्नों के उत्तर और अपने संदेश भेज सकते हैं। जी हाँ, एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है स्टीफन हॉकिंग। इस कार्यक्रम में प्रख्यात भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग के जीवन और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में उनकी महत्वपूर्ण खोजों के बारे में जानकारी दी गई है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरिपाइये मन ही की प्रतीत।
2: आपने संत कबीर की इन पंक्तियों को अवश्य सुना होगा। इन पंक्तियों का आशय है, जीवन में जय और पराजय केवल मन के भाव हैं।
1: आज हम एक ऐसी महान विभूति की बात करेंगे जिन्होंने इन पंक्तियों को शत प्रतिशत अपने जीवन में चरितार्थ किया।
2: उस महान शख्सियत का नाम है स्टीफन विलियम हॉकिंग। उनका नाम 20वीं सदी के महानतम भौतिक विज्ञानी अल्बर्ट आइंस्टाइन के साथ बड़े आदर से लिया जाता है। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्डशायर ब्रिटेन में हुआ था। उनके पिता का नाम फ्रैंक और माता का नाम इजाबेल हॉकिंग था।
1: ये भी एक विचित्र संयोग ही था कि इस महान खगोल वैज्ञानिक का जन्म महान खगोल वैज्ञानिक गैलीलियो की मृत्यु के ठीक 300 वर्षों बाद हुआ था। स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 को हुआ था और गैलीलियो की मृत्यु 8 जनवरी 1642 को हुई थी।
2: 1942 ऑक्सफोर्ड के निकट सेंट एल्बान में ही पूरी की। स्कूली शिक्षा समाप्त करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में दाखिला लिया।
1: ऑक्सफोर्ड से भौतिकी में वो प्रथम श्रेणी में प्रतिष्ठा यानी ऑनर्स के साथ उत्तीर्ण हुए। अध्ययन पूरा करने के बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से उन्होंने अनुप्रयुक्त गणित और सैद्धांतिक भौतिकी यानी अप्लाइड मैथमेटिक्स एंड थियोरिटिकल फिजिक्स विषय लेकर ब्रह्मांड विज्ञान यानी कॉस्मोलॉजी पर गहन अध्ययन और शोध किया।

0: प्रोफेसर और छात्र उन्हें प्यार से जूनियर आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे।
1: फिर आया 1963 का साल। दिन था 8 जनवरी यानी उनका 21वां जन्मदिन। वे छुट्टियों में अपने घर आए।
2: Stephen, happy birthday to you!
3: Happy birthday to you, Stephen!
4: Thank you. How are you? Happy birthday, Stephen!
5: Thank you,
4: congratulations!
5: Thank you, John. Thank you so very much. Hi, Martin. How are you?
2: Oh, fine.
5: Thanks for coming in. Please come in. Please.
3: Oh, sure. Yes. Why not?
2: Come. Hey.
3: Come.
2: John, please come here.
3: Oh, sure. Hey.
5: Join us for a drink.
0: जन्मदिन की पार्टी बहुत अच्छी रही, लेकिन दूसरे ही दिन जो हुआ उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। हुआ यूं कि वे अपने घर की सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे कि तभी
6: हाँ

0: अचानक उनके शरीर की सारी मांसपेशियां बुरी तरह से अकड़ गईं और वे अचेत होकर गिर पड़े। उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने कुछ दवाएं देकर और इसे सामान्य कमजोरी बताकर उन्हें घर भेज दिया।
1: लेकिन ये क्या?
0: जब स्टीफन को ऐसे दौरे बार बार पड़ने लगे तो उन्हें लंदन के एक नामी अस्पताल में ले जाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने स्टीफन के माता पिता को बुलाया।
2: मिस्टर फ्रैंक, मैंने आपके बेटे के बारे में एक खास जानकारी देने के लिए आपको यहाँ बुलाया है।
3: सब कुछ ठीक तो है ना?
2: देखिए, मैं आपको अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ। आपके बेटे को मोटर न्यूरॉन डिजीज है।
3: मोटर न्यूरॉन डिजीज?
2: जी हाँ, और इसका अभी तक कोई इलाज संभव नहीं है।
3: डॉक्टर साहब, इस बीमारी में क्या होता है?
2: इस बीमारी में मस्तिष्क का सिग्नल मांसपेशियों को नहीं मिल पाता है, इसलिए शरीर के सारे अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बोलने और चलने फिरने में परेशानी होती है।
3: नहीं, नहीं।
2: देखिए, आप धीरज रखें, मैं ताकत की कुछ दवाइयां लिख देता हूँ, क्या पता कोई चमत्कार हो जाए।
3: ओह गॉड।

0: लेकिन कोई चमत्कार नहीं हुआ। स्टीफन की बीमारी बढ़ती ही चली गई। उन्हें बोलने में बहुत परेशानी होने लगी थी। एक बार जब तबीयत बहुत खराब हुई तो उनके मित्र उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कह दिया कि वे अब अधिक से अधिक 2 वर्ष ही जी पाएंगे।
1: डॉक्टर के क्लिनिक से जब वे बाहर आए तो आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर था एक असाधारण संकल्प का भाव। उन्होंने कहा,
2: मैं जीना चाहता हूं, तो 2 साल नहीं, 20 साल भी नहीं, पूरे

0: az szal harcsiunk.
1: उस समय सबने उनका मन रखने के लिए, दिलासा देने के लिए हाँ में हाँ मिला दी थी, पर आज पूरा विश्व जानता है कि जो कुछ उन्होंने कहा था वो अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति से उन्होंने कर दिखाया।
2: उनकी बीमारी बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन इस हालत में भी सन 1965 में उन्होंने सर्वाधिक अंक लेकर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से अपनी पीएचडी की डिग्री प्राप्त की।
3: साथियों, हम बड़े हर्ष के साथ घोषणा करते हैं कि स्टीफन हॉकिंग ने बेहद अच्छे अंकों से अपना शोध पूरा कर लिया है। उनके शोध का विषय था प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सपेंडिंग यूनिवर्स, यानी विस्तारित ब्रह्मांड की विशेषता। मेरा अनुरोध है कि वो सामने आकर सम्मान ग्रहण करें।

0: विश्वविद्यालय में वे एक चलता फिरता आश्चर्य माने जाते थे। जब उनसे ये पूछा गया कि वे इतनी कठिनाइयों के बीच अपना शोध और अध्ययन का काम कैसे कर लेते हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया,
1: मेरी क्षमता, मेरी दिव्यांगता से अधिक मजबूत है। दिव्यांगता शरीर से अधिक मन में होती है।
2: जनवरी 1965 में ही नए साल के जश्न में स्टीफन हॉकिंग की मुलाकात मिस जेन वाइल्ड से हुई। वे अंग्रेजी साहित्य की प्रख्यात लेखिका और शिक्षिका थीं। मिस जेन वाइल्ड स्टीफन के खुशदिल स्वभाव, बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प शक्ति से बहुत प्रभावित हुईं।
0: वे जानती थीं कि भविष्य में स्टीफन का स्वास्थ्य बिगड़ता चला जाएगा, लेकिन उन्होंने स्टीफन का साथ नहीं छोड़ा और वे विवाह बंधन में बंध गए। उनकी 3 संतानें हुईं। ५८ में उनकी आवाज खो गई। अब बोलना उनके लिए असंभव हो चुका था। उनके सभी अंग धीरे धीरे स्थिर होने लगे थे, इसलिए स्वीडन में उनके लिए एक स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई गई जिसमें कई प्रकार के उपकरण लगे हुए थे।
2: इस चेयर में एक विशेष उपकरण था जिसे स्पीच सिंथेसाइजर कहा जाता था। कीबोर्ड की सहायता से वे जो जो टाइप करते थे, स्पीच सिंथेसाइजर उन्हें शब्दों में बदल देता था।
0: इसी के जरिए वे पूरी दुनिया से बात करते थे और भौतिकी पर दुनिया भर के विश्वविद्यालयों में व्याख्यान देते थे। लेकिन वे बोलते कैसे थे, ये जानना दिलचस्प होगा।
2: दरअसल उन्हें आवाज दी थी प्रोफेसर डेनिस एच क्लैट ने, जो संभाषण और श्रवण विज्ञान में एक अमरीकी शोधकर्ता थे। आइए प्रोफेसर डेनिस क्लैट से बात करके जानते हैं कि प्रोफेसर हॉकिंग का ये स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता था।
3: प्रोफेसर डेनिस
4: जी,
3: स्पीच सिंथेसाइजर काम कैसे करता है, आपने इसका विकास कैसे किया?
4: देखिए, प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यानों को भाषा में बदलने के लिए हमने सबसे पहले स्पीच सिंथेसाइजर के कंप्यूटर को कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा उनकी सारी भाषा सिखाई।
3: ओह।
4: और फिर विज्ञान से संबंधित सारे तकनीकी शब्द भी कंप्यूटर की स्मृति में डाल दिए।
3: ग्रेट, धन्यवाद सर,

0: ये तो सचमुच बहुत रोचक है। यानी प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग के व्याख्यान हमने आपकी आवाज में सुने?
1: जी।
0: अद्भुत, इट्स रियली वंडरफुल। तो सुनाइए ना प्रोफेसर हॉकिंग को आपकी आवाज में।
1: तो लीजिए सुनिए।
2: Technology has transformed the outlook for the disabled. People like me can now move around independently, and they can communicate.
3: उन्होंने कुल 29 रचनाएं की, जिनमें पुस्तकें, शोध प्रबंध और विज्ञान लेख शामिल हैं। उनसे अंतरिक्ष समय, भारहीनता, शून्य गुरुत्वाकर्षण जैसे अंतरिक्ष के अनेक रहस्यों से पर्दा उठ गया और अनेक शोधों को गति मिली।
4: सापेक्षता का सिद्धांत, क्वांटम यांत्रिकी और अंतरिक्ष समय यानी स्पेस टाइम पर उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा।
3: उनके सभी शोधों की ये विशेषता है कि ब्रह्मांड की व्याख्या के साथ साथ उन्होंने इसे विश्व पारिस्थितिकी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से भी जोड़ा है।
4: उन्होंने न्यूयॉर्क पोस्ट पत्रिका में अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा था,
5: यदि पर्यावरण का ध्यान नहीं रखा गया तो 600 वर्षों के अंदर ये पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। जनसंख्या बढ़ने के कारण धरती पर ऊर्जा की खपत बहुत ज्यादा हो जाने की वजह से धरती का तापमान असीमित रूप से बढ़ेगा और धरती गर्म होकर लाल हो जाएगी।
3: उनके द्वारा लिखित किताब अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम उस समय की सबसे ज्यादा समय तक बिकने वाली किताब बनी। तब इस किताब की बिक्री लगभग रिकॉर्ड 237 हफ्तों तक चली। एक और पुस्तक थ्योरी ऑफ एवरीथिंग भी बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्हें राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम सम्मान भी दिया गया था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
4: विद्यार्थियों और शोध करने वालों को वे अक्सर कहते थे,
6: ऊपर सितारों की तरफ देखो, अपने पैरों के नीचे नहीं। जो भी देखते हो उसका अर्थ जानने की कोशिश करो, आश्चर्य करो, उत्सुक रहो और प्रश्न करो।
3: जनवरी 2001 में अग्रणी ब्रिटिश भौतिक विज्ञानी स्टीफन हॉकिंग जब भारत आए थे, उन्होंने कहा था,
5: इंडियंस आर सो गुड इन मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स।
4: विश्व के दिव्यांग समुदाय के लिए प्रोफेसर हॉकिंग का अंतिम संदेश था,
7: यदि आप शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं तो मन को दिव्यांग न होने दें।
3: चौदह मार्च 2018 को 76 वर्ष की आयु में ब्रिटेन के कैम्ब्रिज में उनका देहांत हो गया। अपनी मृत्यु के समय वे सैद्धांतिक ब्रह्मांड विज्ञान केंद्र में अनुसंधान के निदेशक थे। दाह संस्कार के बाद लंदन के वेस्टमिंस्टर एबी चर्च में उनकी राख को चर्च के साइंटिस्ट कॉर्नर में सर आइजैक न्यूटन और चार्ल्स डार्विन की कब्रों के बीच दफनाया गया।
4: उनके स्मारक पत्थर पर ये शब्द अंकित हैं, यहां स्टीफन हॉकिंग के पार्थिव अवशेष दफन हैं। उस पत्थर पर उनका एक प्रिय समीकरण भी अंकित है, जिसका उपयोग उन्होंने

0: दुनिया को ब्लैक होल के बारे में सिखाने के लिए किया था।
1: दिव्यांगता के खिलाफ अदम्य इच्छा शक्ति की ऐसी जंग छेड़कर अंतरिक्ष विज्ञान में सितारों की बुलंदियों को छूने वाले प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, आपको हमारा नमन।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्टीफन हॉकिंग, और आइए इस कार्यक्रम के बाद अब सुनते हैं कार्यक्रम आग का गोला। इस पहली नुमा कार्यक्रम में सूर्य और सौर मंडल के बारे में मनोरंजक जानकारी दी गई है।
3: चलो बच्चों आ जाओ, पहली टाइम, आ जाओ सब लोग आ जाओ। तो अब बिना देर करे शुरू करें पहली। गुड़िया, गौरव, सब तैयार? वेरी गुड। तो ठीक है, ध्यान से सुनो आज की पहेली। मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ।
4: आग का गोला?
3: हाँ, मैं आग का गोला लेकिन फिर भी जीवन दाता हूँ। दूजे काटे चक्कर मेरे लगे, मैं चलता जाता हूँ। सर्दी गर्मी बनती मुझसे, मैं दिन रात बनाता हूँ। दू प्रकाश पर नहीं हूँ दीपक, बोलो क्या कहलाता हूँ?
5: सूरज।
3: ओ सूरज, वाह एकदम ठीक भाई, तुम सब लोग तो बहुत होशियार हो।
6: बहुत आसान पूछते हो।
3: ओफो क्या करूँ, मुझे मुश्किल वाली आती ही नहीं
6: है। अगली बार में बहुत मुश्किल।
3: हाँ मैंने सोचा तो था, लेकिन क्या करूं, मैंने अपना पिटारा खोला पहेलियों का, उसमें से एक पहेली देखी फिर दूसरी देखी, कोई मुश्किल वाली मिली नहीं मुझे। मुश्किल वाली पहेलियां तुम्हारे पास होती है ना?
5: हाँ।
3: कितनी भी मुश्किल पहेली ले आऊंगी, तुम सब तो जल्दी से जवाब बता ही दोगे मुझे, है ना?
6: मुझे पता है, सूरज आग का गोला होता है।
3: बिल्कुल ठीक, सूरज आग का गोला होता है।
7: वो तारा होता है।
3: हाँ ये भी बिल्कुल ठीक।
8: वो रात और दिन भी बनाता है।
3: एकदम सही, एकदम
7: सही। वो हमें धूप भी देता है।
3: बिल्कुल धूप भी देता है, सर्दियों में तो धूप अच्छी लगती है।
6: धूप से इतना अच्छी बात भी होती है।
3: हाँ हमें क्या मिलता है पता है उससे?
6: विटामिन डी।
3: वेरी गुड, बहुत समझदार हो तुम तो, विटामिन डी मिलता है। अरे तुम्हें पता है, तुम बहुत अच्छे, शाबाश, बहुत
7: और
3: अच्छे।
7: अगर सूरज की रोशनी नहीं होती तो हमारा बिल नहीं बचता।
3: हाँ बिल्कुल,
6: पेड़ों को खाना भी देता है।
3: बिल्कुल एकदम ठीक कहा, एकदम ठीक कहा। इतने होशियार बच्चे मैंने कहीं नहीं देखे।
6: धीरे धीरे रात घूमते जब भी सुबह रात होती जाती है।
3: हाँ बिल्कुल, ये जो हमारा सौर मंडल है ना, इसके ग्रह सूरज के चक्कर काटते हैं, और लगता क्या है, जैसे सूरज चलता है पूर्व से पश्चिम की ओर, है ना?
6: हाँ।
8: जब ही तो सूरज सुबह पूर्व में आता है।
3: हाँ हमें ऐसा लगता है ना कि सूरज चल रहा है धरती के चारों ओर। हाँ। इसलिए दिन और रात हो रहे, लेकिन असल बात क्या है, धरती सूरज के चक्कर काट रही है।
6: मौसी जब मैं मम्मी के साथ घूमने जाती हूँ, जब मुझे लगता है चंदा मेरे साथ चल रहा है।
3: हाय हाय क्या बात है, चंदा मामा तुम्हारे साथ चल रहा है। और कभी कभी जब हम ट्रेन से बाहर देखते हैं चलती हुई ट्रेन से, तो लगता है ना पेड़ भी हमारे साथ साथ चल रहे हैं। लगता है ना
6: वो तेज चलती है, ऐसा लगता है वो भी तेज चल रही है।
7: और जब हम लोग चलते हैं तो हमें लगता है कि हमारा सूरज भी हमारे साथ साथ चल रहा है
3: ना।
7: गर्मी में तो मुझे सूरज बहुत गंदा लगता है।
3: हाँ और सर्दियों में अच्छा लगता है। तो बच्चो सूरज नहीं चलता है ना, वो पृथ्वी के घूमने के कारण हमें चलता दिखाई देता है। जैसे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम ट्रेन में से देखते हैं तो हमें पेड़ चलते हुए नजर आते हैं, है ना?
6: वो बहुत बड़ा भी होता है।
3: बहुत बड़ा होता है
7: पर हमें छोटा लगता है आसमान।
3: हम क्योंकि कहीं
6: दूर होता है, इसलिए
3: हम बहुत दूर है ना सूरज से, इसलिए हमें लगता है ऊपर है। और कभी कभी मन करता है कि शायद इसको छू के देखें।
6: हमें सबसे छोटे इसलिए लगता है क्योंकि वो बहुत दूर है।
3: हाँ
7: वो चांद से भी ऊपर होते हैं।
3: अरे वाह भाई, ये तो मुझे भी नहीं पता था। अच्छा एक बात और, धरती का जो भाग सूरज के पास होता है वहाँ गर्मी होती है, और जो दूर वहाँ
5: सर्दी।
3: ओ, ऐसी वाली सर्दी ना। अच्छी लगती है सर्दी?

0: पर सर्दी में ठंड बहुत लगती है।
1: हाँ शुक्र है गर्मी में नहीं लगती है। सूरज आग का गोला लेकिन,
2: सूरज आग का गोला लेकिन
1: फिर भी जीवन दाता है,
2: फिर भी जीवन दाता है।
1: धरती काटे चक्कर इसके,
2: धरती काटे चक्कर इसके
1: लगे ये चलता जाता है,
2: लगे ये चलता जाता है।
1: सर्दी गर्मी बनते इससे,
2: सर्दी गर्मी बनते इससे
1: ये दिन रात बनाता है,
2: ये दिन रात बनाता है।
1: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक,
2: दे प्रकाश पर नहीं है दीपक
1: सूरज ये
2: कहलाता है।
1: शाबाश सूरज ये कहलाता है, सूरज ये कहलाता है। चलो अब अगली बार के लिए अगली पहेली लेकर मैं फिर आऊंगी।
0: मुझे एक और पहेली आज ही बता दो।
1: आज नहीं, अब मुझे देर हो रही है। ठीक है
3: जल्दी आना, जल्दी आना।
1: बिल्कुल जल्दी आऊंगी बेटा।
0: कल हमने देर की तो फिर हम मुश्किल पहेली पूछ लेंगे आपसे।
1: मैं तो डर रही हूँ भाई। मैं कल आऊँ कि नहीं आऊँ?
0: वो भी दस पूछेंगे।
1: दस पहेलियाँ? अच्छा चलो मैं भी फिर तैयारी करके आऊंगी ना। डर जाती
0: और आपके कोई मिला के 70 हो जाएंगे।
1: 70 हो जाएंगे? वो 10 से एकदम 70
3: नहीं, 80 हो जाएंगे।
1: फिर 100 हो जाएंगे, फिर 200। ओके इससे पहले कि ये 500 तक पहुँचे मैं जा रही हूँ। टाटा बाय बाय।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग का गोला, और अब इसी कार्यक्रम के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
5: उमंग उमंग उमंग उमंग, उमंग।
6: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। ये कार्यक्रम NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित था। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने अब से कुछ पलों में।
7: शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
8: याद रखिए, शौक सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
7: पार्टियों में नशा नहीं खुशियां बांटिए।
8: नशा नहीं जिंदगी अपनाइए।
7: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
8: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओं, फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम गाने सुहाने का आरंभ हम कर रहे हैं। उमराव जान फिल्म के इस गीत से, दिल चीज क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार मेरा कहा मान लीजिए। आइए सुनते हैं गीत।

0: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
1: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
2: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
2: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
1: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
2: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
1: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: कार्यक्रम में आगे हम आपको सुनवा रहे हैं इजाजत फिल्म का ये गीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
1: कार्यक्रम के आखिर में सुनिए

0: श्रोताओं, आधी फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का कार्यक्रम गाने सुहाने अब संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, सुगम संगीत अब से कुछ पलों में।
1: शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: जिंदगी बहुत कीमती है, उससे तो सस्ता ही है।
4: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये माना, सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़।
5: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
6: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 27 मई 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
7: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बहराइच,
6: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन बलिया,
7: बलरामपुर चीनी मिल बलरामपुर,
6: BSA ऑफिस बस्ती,
7: नगर निगम परिषद देवरिया,
6: बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड कुंडर की गोंडा,
7: वरुण बेवरेजेस गीडा गोरखपुर,
6: नगर पालिका परिषद पडरौना कुशीनगर,
7: नवजीवन मिशन स्कूल आनंद नगर महाराजगंज,
6: रैना पेपर मिल खलीलाबाद संत कबीर नगर,
7: ग्राम्य विकास विभाग, विकास भवन श्रावस्ती,
6: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन सिद्धार्थ नगर।
0: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार हैं गुलाम अली।

0: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
1: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
0: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान। केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
1: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
0: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
1: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज आप सुन रहे हैं गुलाम अली को।

0: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया के बरहज और रुद्रपुर असेंबली हलकों में 456 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 106 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा और मुख्तलिफ अवामी फलाही स्कीमों के इस्तेफादा कुनिंदगान में सर्टिफिकेट तकसीम किए। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आला ने कहा कि तरक्की और अवामी बहबूद की यह मुहिम हर ख़ानदान की ज़िंदगी में नई उम्मीदों, नए मौके और नई खुशहाली की बुनियाद बनेगी। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ और मरकजी वज़ीर ज़राअत, किसानों की बहबूद और देही तरक्की के वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश के ज़रई रोड मैप, ज़राअत के शुबे में मरकजी और रियासती मुख्तलिफ स्कीमों के नफाज और देही तरक्की के प्रोग्रामों का मुश्तरक जायज़ा लिया। मीटिंग के दौरान जनाब चौहान ने मरबूत काश्तकारी को फ़रोग देने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। उन्होंने ऐलान किया कि किसानों को मेयारी पौधे फराहम करने के लिए लखनऊ में क्लीन प्लांट सेंटर कायम किया जाएगा।
1: प्लांट सेंटर यहाँ लगाएंगे जिसमें बागवानी के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनको अच्छे पौधे मिल जाए। अगर पौधा खराब मिला, उनको प्लांट खराब मिला, तो 2 साल 3 साल या 4 साल बाद पता चलता है कि ये तो वैसा उत्पादन ही नहीं दे रहा। तो वो क्लीन प्लांट सेंटर भी हम खोलेंगे, लेकिन अच्छे बीज और अच्छी रोपण सामग्री उसका इंतजाम करना हम लोग भारत सरकार की तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।
0: मरकजी वजीर ने कहा कि एक खुशहाल उत्तर प्रदेश तरक्की याफ्ता भारत के हदफ को हासिल करने में अहम किरदार अदा करेगा। इस मौके पर उन्होंने चने, दाल और सरसों की सरकारी खरीदारी की मुद्दत में तौसी की भी मंजूरी दी। वज़ीर-ए-आला ने इसके लिए मरकजी वजीर का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि इससे रियासत के ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को अपनी पैदावार कम अज़ कम इमदादी कीमत पर फरोख्त करने का मौका मिलेगा और उनके मफादात के बेहतर तहफ़ को यकीनी बनाया जा सकेगा। मीटिंग के दौरान अलनीनो के असरात से निमटने के हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरकजी और रियासती हुकूमत के सीनियर अफसरान ने मीटिंग में शिरकत की। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल संत कबीर नगर में 475 करोड़ रुपए से ज़्यादा के 149 तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संग बुनियाद रखा। तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 9 सालों में रियासत के हर ज़िले की तरक्की हुई है। वज़ीर-ए-आला ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत ने अपने असलाफ की विरासत को महफूज रखा है।
2: ये डबल इंजन की सरकार है, प्रधानमंत्री मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व है। जो उत्तर प्रदेश कभी पहचान के लिए मोहताज था, आज उत्तर प्रदेश पहचान के लिए मोहताज नहीं, बल्कि वह भारत की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए तैयार खड़ा हुआ है।
0: स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम SIT की इब्तदाई रिपोर्ट की बुनियाद पर अयोध्या में राम मंदिर के चंदा फंड में मुबैना गबन के मामले में 18 नामजद और दीगर नामालूम मुलजमीन के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। ये कार्रवाई श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के रुकन कृष्ण मोहन की शिकायत पर की गई है। मुलजमीन के खिलाफ गबन, धोखा दही और मुजरमाना साजिश की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। चंदा

0: फंड के मुबैना गलत इस्तेमाल के इल्ज़ाम सामने आने के बाद रियासती हुकूमत ने श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट की दरख्वास्त पर 13 जून को SIT तश्कील दी थी। SIT मामले की तफसीली जाँच कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के रियासती सदर पंकज चौधरी ने कल नए मुकर्रर करदा रियासती ओहदेदारों की फहरिस्त जारी की। इस फहरिस्त में 8 जनरल सेक्रेटरीज, 19 नायब सदूर और 19 वज़रा शामिल हैं। मजीद बरां मगरबी, ब्रज, कानपुर, अवध, काशी और गोरखपुर के इलाकाई सदूर के साथ साथ मुख्तलिफ महाजों के सदूर का भी ऐलान किया गया है। BJP के रियासती सदर पंकज चौधरी ने कहा कि पार्टी ने तमाम तबकात और इलाकों को जहन में रखते हुए ओहदेदारों का तकर्रुर किया है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने तमाम 9 तैनात ओहदेदारों को मुबारकबाद दी। आज 10 मुहर्रमुल हराम है। इस दिन को आशूरा भी कहा जाता है। इसी दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन को अपने साथियों समेत मैदान करबला में शहीद किया गया था। आज रियासत भर में लोग मुख्तलिफ करबला में ताज़िये लेकर उनकी तदफीन कर रहे हैं। लखनऊ में मुस्लिम कम्युनिटी के अलावा दीगर मजाहब के लोग भी ताज़ियेदारी करते हैं। ताज़ियों को आज लखनऊ के मुख्तलिफ करबला में सुपुर्द खाक किया जाएगा। लखनऊ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तालकटोरा करबला, महानगर करबला, ऐशबाग, तेलीबाग और आलमबाग के मुख्तलिफ रास्तों पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया गया है। ट्रैफिक की ये पाबंदी ताज़िये के जुलूस के अख्तिताम तक नाफिज रहेगी। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। महिलाओं का कार्यक्रम प्रस्तुत है नारी जगत।
2: नारी जगत की सभी श्रोता बहनों को अनीता का नमस्कार। जी बिल्कुल बहनों, आज हम आपसे ढेर सारी बातें करेंगे, प्यारे प्यारे गीत भी सुनवाएंगे और ढेर सारी जानकारियां भी लेंगे। और आज बहनों 26 जून है और आज 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध दिवस मनाया जाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 दिसंबर 1987 को एक प्रस्ताव पारित करके हर साल 26 जून को इस दिवस को मनाने का निर्णय लिया। और बहनों, इस दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों को नशीली दवाओं का दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खतरनाक प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक करना था और एक नशा मुक्त समाज का निर्माण भी करना था। तो बहनों, भारत सरकार और सामाजिक संगठन इस दिन रैलियां, पोस्टर, प्रतियोगिताएं और सेमिनार का आयोजन करके नशा मुक्त होने का संदेश भी देते हैं। बहनों, नशा व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से अवनति की ओर ले जाता है। तो आइए बहनों, नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर नशा मुक्ति अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें और एक नशा मुक्त, स्वच्छ, सुरक्षित व समृद्ध समाज बनाने का संकल्प लें। जन जन का है एक ही नारा, नशा मुक्त हो प्रदेश हमारा। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

जी बहनों, जानकारी के साथ आइए बात करते हैं कि परिवार वह एक संयुक्त घर होता है जहां सभी सदस्य एक साथ मिलजुल कर रहते हैं, अपनी दिनचर्या, अपनी खुशियां, अपनापन सब मिलकर साझा करते हैं। जी बिल्कुल बहनों, कोई भी समस्या परिवार में बांटते ही समाधान मिल जाते हैं, तो परिवार की ज़रूरत क्यों होती है? तो बहनों, परिवार की ज़रूरत तो होती ही है, और हर सदस्य को यह जानकारी होनी चाहिए कि जो नशीली दवाएं हैं, और अगर परिवार का कोई एक सदस्य नशीली दवा का सेवन कर रहा है, तो उसे कैसे इस आदत से दूर करें, उसे बचाएं, और परिवार की ही जिम्मेदारी बनती है। जी बिल्कुल बहनों, नशीली दवाओं के विरुद्ध परिवार के लिए जागरूकता अभियान का मुख्य उद्देश्य है कि पीड़ित सदस्य को खतरों से परिचित कराना, उनके शुरुआती लक्षणों को पहचानना और पीड़ित सदस्यों का समय से पुनर्वास सुनिश्चित करना, जैसे कि उनको एक किस तरह से उनकी नशा मुक्त हो और नशा मुक्ति से उनको छुटकारा मिले, और ये परिवार की ही जिम्मेदारी बनती है। और ज़रूरी तो होता ही है बहनों कि परिवार एक मुख्य की भूमिका होती है, मुख्य भूमिका होती है। तो बहनों, आइए पहले एक खूबसूरत परिवार की लड़ियों से पिरोया प्यारा सा गीत सुनते हैं हम साथ साथ फिल्म से।

जी बिल्कुल बहनों, अगर कोई व्यक्ति या बच्चा नशा करता है तो परिवार क्या करे? उसकी जिम्मेदारी इस ऐसे में बनती है कि बच्चे को इस परेशानी से निकाले, उसका उपचार करवाए, और इसमें परिवार की भी बहुत बड़ी भूमिका होती है बहनों। तो परिवार के लिए नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूक तो होना ही चाहिए, और अगर किस कोई बच्चे को ऐसी परेशानी होती है तो उनके लक्षणों को पहचाने और चेतावनी, ऐसे बहुत सारे लक्षण होते हैं बच्चे में, चेतावनी संकेत को पहचाने, जैसे कि परिवार को नशीली दवाओं के सेवन के शुरुआती लक्षण के बारे में जागरूक होना चाहिए, उनके व्यवहार में बदलाव, बच्चे में अचानक चिड़चिड़ापन, परिवार से वो दूरी बनाता है और बहुत सारी चीज़ें गुप्त रखता है, शारीरिक बदलाव जैसे बच्चे में नींद के पैटर्न चेंज हो जाते हैं, आंखें लाल होती हैं और अचानक वजन कम होने लगता है, ऊर्जा में कमी होती है, और आदतों में भी बदलाव बच्चे के होता है कि जैसे दोस्तों को अचानक बदलना, स्कूल कॉलेज में खराब प्रदर्शन करना, या पैसों की असामान्य मांग करना, या परिवार के सदस्यों के सामने जब ऐसी स्थिति आए तो बहनों बच्चों से खुलकर बात करें, भय का माहौल न बनाएं, बच्चों को अपनी परेशानियां साझा करने के लिए एक सुरक्षित माहौल दें, और बहनों बच्चों के कारण को भी समझें, बच्चे कई सहपाठियों के दबाव या तनाव में आकर ड्रग्स की तरफ आकर्षित होते हैं तो क्यों होते हैं, और बच्चों के इस दबाव से बाहर निकालने में आप या परिवार की ही जरूरत पड़ती है, तो बच्चों के साथ सहानुभूति रखें, बच्चों पर चिल्लाने या उन्हें दोषी ठहराने की बजाय उनकी समस्या को सुने और सही रास्ता दिखाएं बहनों। तो बहनों ऐसे में व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में संयुक्त परिवार की बहुत ही बड़ी भूमिका होती है, और बच्चों को एक खूबसूरत माहौल दें, उन्हें अगर वो कोई बच्चा जो है इस लत में पड़ जाता है तो उसके साथ खूबसूरत माहौल दें, खूबसूरती के अच्छे से एक दोस्ती भरा साथ अपनाएं और उन्हें अच्छे तरह से अपना साथ दें, परिवार की भूमिका में उनको प्यार दें और परिवार में ही रखें। तो आइए इसी के साथ सुनते हैं प्यारा सा गीत।

बहनों, परिवार में बच्चा अगर नशे का आदी हो जाता है तो ये परिवार माता पिता के सामने बहुत बड़ी गंभीर समस्या बन जाती है और उनको इसका समाधान भी खोजना चाहिए। माता पिता के सामने बच्चों की नशे की आदत को छुड़ाने के लिए धैर्य के साथ समाधान खोजना चाहिए। बिल्कुल नशे की लत को बीमारी माने और पीड़ित व्यक्ति को अपराधी की नज़र से नहीं देखें। बहनों, बच्चे पर हर समय नज़र रखें, उसे समझाएं कि यह नशे की आदत बहुत गलत है। नशा छुड़ाने वाले केंद्रों और मनोवैज्ञानिकों की मदद लें। पूरे परिवार के सहयोग से ही पीड़ित को नशा छोड़ने में काफ़ी हद तक सहायता मिल सकती है, जब परिवार का भरपूर सहयोग मिलेगा। इसके लिए सरकारी योजनाएं भी और हेल्पलाइन भी सहयोग करती हैं। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा नशा मुक्त भारत अभियान अभियान चलाया जाता है और इसका मुख्य उद्देश्य व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाना है। बहनों, मदद या परामर्श के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन 1456 का उपयोग करके आप सहायता भी ले सकती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे को आप भरपूर सहयोग दें परिवार का, तभी बच्चा इस नशे की आदत से छुटकारा मिल सकती है। और बहनों देखिए, गर्मी तो काफ़ी समय से ही पड़ ही रही है, लेकिन कभी कभी बहुत तेज़ गर्मी, आज ही मैं जब आ रही थी तो बहुत तेज़ गर्मी, धूप की स्थिति थी। और ऐसे में हम देखिए, इस धूप में अपने और अपने परिवार की देखभाल और बचाव कैसे करें, और इस मौसम में टाइट या फिट कपड़े पहनने से बचें। इसके बजाय वेंटिलेशन या वाले कपड़े जैसे सूती ढीले कपड़े चुनें। बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए पूरे दिन पंखे कूलर का प्रयोग करना चाहिए। त्वचा को भी हाइड्रेट रखने के लिए गीला कपड़ा से कुछ देर पर आप पोंछना चाहिए, गर्मियों से बचें। और सबसे ज़्यादा तो आप हाइड्रेटेड रहें। पूरे दिन हम सभी को पानी पीते रहना चाहिए। जूस, आम पना, सिकंजी, बेल का शरबत, नारियल पानी पीते रहना चाहिए और परिवार के सभी सदस्यों को भी देना चाहिए। दिन भर में कम से कम 10 से 15 गिलास पानी अवश्य पिएं। पानी पीने से

तनिक भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि इस मौसम में हमारे शरीर का पानी पसीने के रूप में बह जाता है, तो पानी की कमी हो जाती है शरीर में। और तेज़ धूप से बचाव करके ही घर से निकलें, विशेषकर सिर व त्वचा को किसी भी तरह से सनस्क्रीन, लोशन या दुपट्टे से ढक कर निकलें। टोपी, स्कार्फ, ग्लव्स भी, सनग्लासेस या छाता लेकर निकलें घर से। गर्मी के मौसम में सूती कपड़े ही पहने, क्योंकि ये पसीना सूखने में कारगर होते हैं और ठंड का भी एहसास दिलाते हैं। सुबह जल्दी उठकर ताज़ी हवा में ज़रूर जाएं। सौंफ का शरबत, सिकंजी, खीरा, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी इत्यादि का सेवन बराबर करते रहें। और घर से बाहर जाते समय प्याज लेकर जा सकते हैं, जिसे कहते हैं ना कि एक कहावत है कि अगर पास में प्याज रहेगी तो लू नहीं लगेगी। तो अब भाई ये तो हमने अपनाया नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये आपको भी फ़ायदा करें। और कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही जीवन है, तो स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है बहनों। अपने खान पान में और रहन सहन में बदल कर इस मौसम को हम दूर कर सकते, परास्त कर सकते हैं और इस मौसम को अच्छा बना सकते हैं। तो बहनों आइए हम सब सुनते हैं प्यारा सा गीत।

जी बिल्कुल बहनों, प्यारे गीत के साथ। बहनों देखिए, अपने स्वास्थ्य के प्रति तो हमें सतर्क रहना ही चाहिए, और गर्मियों में अपने पोषण का भी विशेष ध्यान देना चाहिए। तो सेहत के लिहाज से खीरा, जो हम प्रतिदिन हमको इस सलाद के रूप में लेना ही लेते ही रहते हैं, तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। इसमें भरपूर मात्रा में पानी मिल

0: और खीरा गर्मियों में और इसका सेवन जरूर ही करना चाहिए। इससे ऊर्जा और पानी भरपूर मात्रा में मिलती है। खीरा में सिलिकॉन, मैग्नीशियम या पोटेशियम पर प्रचुर मात्रा में मिलता है, जो त्वचा को भी स्वस्थ चमकीला बनाता है और फाइबर होने के कारण पेट संबंधी विकारों से राहत मिलती है। बहनों, जिनको जिनके पेट में कब्ज, गैस या अपच की परेशानी हो, तो उन्हें नियमित रूप से खीरा को कई रूपों में आप सलाद के रूप में भी खा सकते हैं। इसका आप जो है रायता भी बना के खा सकते हैं, तो उसमें दही भी मिलेगा, दही से भी काफ़ी आपको पोषण मिलेगा और खीरा भी आप खा लेंगे। सलाद के साथ ही साथ कई तरह से प्रयोग कर सकते हैं। इसे कैलोरी भी बहुत अच्छी मिलती है, तो शरीर में ऊर्जा काफ़ी अच्छी मिलती है और विटामिन से भरपूर खीरा ब्लड प्रेशर व शुगर नियंत्रित करने में ये काफ़ी फायदेमंद होता है। तो बहनों, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का समय समाप्त होता है। अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।
1: अभी महिलाओं के लिए प्रसारित किया जा रहा था कार्यक्रम नारी जगत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम में 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज पर।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।
4: कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक, आकाशवाणी से विज्ञापन के अंदाज अनेक।
5: अपनी बात को आसाम से गुजरात तक पहुंचाने की हो बात, आकाशवाणी से बेहतर भला कौन देगा आपका साथ।
4: देश के कोने कोने में विज्ञापन बजा, अपनी बनाओ पहचान, केंद्रीय विक्रय एकांश मुंबई ने यह राह बनाई आसान।
5: देश के सबसे बड़े नेटवर्क आकाशवाणी पर विज्ञापन प्रसारित करने के लिए ऑल इंडिया रेडियो की सिंगल विंडो बुकिंग CSU मुंबई से संपर्क करें।
4: हमारा फोन नंबर है 2202407 या 2288 और STD कोड 022।
5: आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारा मेल आईडी है csumumbai@gmail.com।
3: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो, तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details log on to www.ddindia.com।

0: स्वच्छ भारत, सुंदर भारत, स्वच्छता शब्द भर नहीं, सक्रिय सचेत कर्म है।
1: गंदगी को दूर भगाएं, साफ सफाई को अपनाएं।
2: अखबार, प्लास्टिक, कागज सबका सही ढंग से निपटान, स्वच्छता का संदेश फैलाएं, यही है हमारी पहचान।
1: स्वच्छता है जीवन की धारा, साफ सफाई संकल्प हमारा।
2: स्वच्छता अभियान सबकी जिम्मेदारी, स्वस्थ जीवन की है ये तैयारी।
3: मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। श्रोताओ, खेती किसानी कार्यक्रम में आज हम आपको जानकारी दिलवा रहे हैं डॉक्टर सतीश कुमार सिंह से। जानकारी का विषय है पशुओं का खुरपका मुंहपका रोग। तो लीजिए सुनिए ये जानकारी।
4: आप पशुपालक भाई सभी लोग जानते हैं कि ये बारिश के मौसम आते ही बहुत सारे रोग बीमारियां आपके पशुओं को अपने कुचक्र में घेर लेती हैं। इसका मुख्य कारण होता है बरसात में बहुत नमी हो जाती है और आसपास नमी की मात्रा इस हद तक होती है, साथ ही तापक्रम इतना अधिक होता है जिसकी वजह से जितने रोगकारक जीवाणु हैं, विषाणु हैं, प्रोटोजोआ है, चाहे रोग के अन्य कारण हैं, ये सारे जीवाणुओं को अनुकूल माहौल मिल जाता है अपने रोग को पैदा करने के लिए। और दूसरी दिक्कत की बात ये रहती है कि आप देखते होंगे कि जब हमारे पशु गर्मी में भयंकर गर्मी का जूझते हुए आते हैं और आने के बाद आप देखते हैं उनका शरीर थोड़ा कमज़ोर भी हो जाता है, जिससे उनकी रोग से जो प्रतिरोधक क्षमता होती है उसे लड़ने की वो पशुओं में काफ़ी कम हो जाती है और इधर रोगकारक जीवाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारे संक्रामक रोग लगने की डर हो जाते हैं। खास तौर से बरसात में जो बीमारियां फैलती हैं उसमें आप देखते होंगे उसमें गलाघोटू, लंगड़ी और सबसे ज़्यादा तो खुरपका मुंहपका रोग है। इसका प्रकोप तो अक्सर बरसात में भी देखा जाता है और आप देखते होंगे जब हमारे शरद ऋतु आती है तो शरद ऋतु में भी इस बीमारी का प्रकोप देखा जाता है। और चूंकि यह संक्रामक है, ये एक दूसरे से फैलने वाली बीमारी है और ये बड़ी संख्या में एक ही बार में पूरे गांव को भी अपने चपेट में ले लेता है। तो सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहेंगे कि खुरपका मुंहपका बीमारी होती कैसे है। तो इसका जो मुख्य कारण है एक विषाणु है, इन विषाणु के द्वारा से ये खुरपका मुंहपका बीमारी आपके पशुओं को होती है। अगर इसका हम सर सफाई और अच्छे तरीके से रखते हैं, नमी नहीं रहने देते हैं, तो जब बीमारी फैलती है और थोड़ा सा सावधानी हम बरतते रहते हैं तो आपके पशुओं को ये प्रभावित नहीं करती। लेकिन चूंकि वायरल होने के नाते, विषाणु इसका कारण होने के नाते, थोड़ी भी लापरवाही के वजह से ये आपके पूरे पशुओं को या पशु के झुंड को ही चपेट में ले लेती है। अब इसके लक्षणों पे हम आपको बताएं कि इनके लक्षण क्या हैं, जिससे आप जान सकें कि आपके पशु को खुरपका मुंहपका बीमारी है। तो इसके जो मुख्य लक्षण हैं, सबसे पहले तो पशु आपको असामान्य दिखाई देगा, खाना नहीं खाएगा, मुंह से थोड़ा आपको लार दिखाई दे कि उसके मुंह से लार निकल रहा है, तो इतने में संदेह हो जाना चाहिए कि आपका पशु

स्वस्थ है कि नहीं, किसी न किसी बीमारी से वो ग्रसित हो सकता है। तो ऐसी दशा में जब आप उसकी खुर का निरीक्षण करेंगे और मुंह का निरीक्षण करेंगे तो खुर पे भी आपको छोटे छोटे छाले दिखाई देंगे, या उसमें आप देखेंगे कि हल्का हल्का कभी कभी छालों से रक्त बहता हुआ भी दिखाई देता है। अब कभी मुंह खोल के अगर आप देखें तो मुंह में उसके काफ़ी छाले आपको दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि अगर थोड़ा सा प्रकोप अधिक होता है तो ये छाले बाहर तक जबड़ों पे भी आपको दिखाई देने लगते हैं। तो इस तरह से मुंह और खुर पे छाले पड़ना इसका मुख्य लक्षण होता है। साथ ही जब ये बीमारी होती है तो उस समय पशु को बुखार भी होता है। पशु चारा दाना एकदम छोड़ देता है, वो चारा दाना खाने में अपने को असमर्थ पाता है, क्योंकि चूंकि मुंह में छाले होते हैं जिसके वजह से वो नहीं खा पाता है। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि ये छाले फोड़ा का रूप ले लेते हैं, घाव का रूप ले लेते हैं। खुर के भी छाले जो होते हैं वो घाव का रूप ले लेते हैं। तो ऐसी दशा में आपको निरंतर उसकी निगरानी करती रहनी है, और साथ ही साथ ये आपको देखना है कि उसको ऐसे बचाएं कि कोई दूसरा बीमारी जो है पशु को न लगने पाए, क्योंकि खुरपका मुंहपका ऐसी बीमारी इसका कोई इलाज नहीं है। अगर आप इसको सावधानी से पशु को रखे रहते हैं तो 6 से 7 दिन 8 दिन बाद अपने आप पशु ठीक हो जाता है। लेकिन यदि किसी दूसरी बीमारी का इसमें संक्रमण, खास तौर से निमोनिया का या अन्य बीमारियों का, जैसे गलाघोटू का अगर प्रकोप हो रहा है आपके गांव में, तो ऐसी बीमारियों का अगर उसके साथ जुड़ाव हो जाता है, लंगड़ी का जुड़ाव हो जाता है, तो ऐसी दशा में यह बीमारी काफ़ी आपके पशु के लिए घातक हो जाती है। तो अब इसके लिए बचाव की जब हम बात करते हैं या चिकित्सा की बात करते हैं, तो हमने बताया कि इसका कोई इलाज नहीं, इसका बस सावधानी। तो सावधानी में हमको क्या करना है ये आप समझ लें। सबसे पहले तो आप अपने निकटवर्ती पशु चिकित्सालय से पशु चिकित्सक को बुला करके आप पशु को एक बार दिखला दें, और उनके आवश्यक निर्देशन में जो भी सलाह दिया जाता है उस हिसाब से आप पशुओं का उपचार करें। और अपने स्तर से कुछ चीज़ें आप कर सकते हैं, जैसे आप नीम की पत्ती 1/2 kg ले लीजिए, 1 लीटर पानी लीजिए, इसको खूब खौलाइए। जब पानी 300 से 400 ml बचे तो इस पानी को ठंडा होने दीजिए। इसमें 1 चम्मच सरसों का तेल, 1 चम्मच पीसी हल्दी मिला करके इससे आप मुंह के छालों की धुलाई कर सकते हैं, और जो खुर पे छाल हैं इनकी भी धुलाई आप इससे कर सकते हैं। हालांकि इसके अलावा आप फिटकरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब 1 लीटर पानी में 10 ग्राम फिटकरी डाल के उसका एक घोल बना लीजिए, उससे मुंह के छालों की धुलाई कर सकते हैं। और फिनाइल आप ले सकते हैं, फिनाइल सॉल्यूशन उसका आप लगभग 5% का बना लीजिए, और उस घोल से पूरे फर्श की सफाई करते हुए खुर को भी आप धुल सकते हैं। साथ ही बहुत सारी औषधियाँ इस तरह की स्प्रे के रूप में आई हैं, जहाँ पे छालों पे अगर आपकी दवाएं वैसे नहीं पहुँच पाती हैं तो उनका स्प्रे को प्रयोग करते हुए आप उस छालों तक आप उसका दवा का असर पहुँचा सकते हैं, जिससे कि वो छाले जल्दी से जल्दी सूख जाएं, फोड़ा का रूप न लें जिससे कि उसमें मवाद बनने लगता है, कीड़े पड़ने लगते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती है। दूसरा, एक आप पेंट बना सकते हैं, जैसे उसमें आप लगभग 10 ग्राम बोरी की सीड ले लीजिए और लगभग उसका 7 से 8 गुना आप ग्लिसरीन ले लीजिए। ग्लिसरीन आपको जो भी दवा के विक्रेता हैं उनके यहाँ से आप चाहे तो प्राप्त कर सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन की दुकानों पे भी ये ग्लिसरीन मिल जाता है शुद्ध। तो इसमें आप 10 ग्राम बोरिक एसिड डाल करके और एक पेस्ट बना करके मुंह के छालों में, अगर आपको ये पशु इसको अनलाइक करता है तो इसमें थोड़ा सा गुड़ का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसको अगर आप मुंह में लगाते हैं तो ये छाले जल्दी से जल्दी सूख जाते हैं। तो इस तरह से इन उपचारों के द्वारा आप आराम पशुओं को पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ नियंत्रण के लिए टीकाकरण

0: अनिवार्य। आप पशु को गर्मी में अप्रैल मई तक टीका जरूर खुरपका मुंहपका का लगा दें, और ये वर्ष में 2 बार टीके लगते हैं, एक नवंबर में आपको फिर टीका लगाना पड़ता है, क्योंकि 6 माह के लिए प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। इस तरह से इन बताए हुए उपायों से यदि आप अपने पशुओं का रख रखाव करते हैं तो इस बीमारी से आप पशुओं को काफ़ी अच्छे तरीके से, बीमारी का फैलाव होते हुए भी अपने पशुओं को अच्छे तरीके से रख सकते हैं।
1: खेती किसानी कार्यक्रम में अभी आपको डॉक्टर सतीश कुमार सिंह से जानकारी दिलवा रहे थे हम। विषय था पशुओं का खुरपका मुंहपका रोग। ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। मीडियम में 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्स तथा FM 100.1 MHz पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में अपराह्न के 2 बजने को हैं। समाचार क्रमशः अंग्रेजी तथा हिंदी में दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे।

0: drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussain on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
1: गृहमंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
2: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती है, इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमने करनी पड़ेगी।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली FIR के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये FIR मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी SIT की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। SIT ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय

0: लिए दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
1: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
2: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
3: For our business, FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
3: 60,000 students. जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने

0: है कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 एमसीसी C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें 2 भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर

प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोता, अब अघिल्लो प्रस्तुति राखिरहेछौँ नरेन्द्र गुरुङ अनि अञ्जली प्रधानको युगल स्वरमा, संगीतकार शान्ति ठटाल अनि गीतकार रुद्र पौड्याल।

मीडियम वेव 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्स तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी का ये गोरखपुर केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:10 हुए हैं।

0: 330.03 मीटर अर्थात 909 किलोहर्ट्ज पर हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा यहीं संपन्न होती है। FM 100.1 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती के कार्यक्रम जारी रहेंगे।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
2: आइए सुने गीतों भरी कहानी। आइए आज सुनते हैं अरुण शेखर की लिखी गीतों भरी कहानी, उन दिनों की बात है। वाचन स्वर अरुण शेखर का।
3: ये उन दिनों की बात है जब मोबाइल से इमोजी भेजकर इश्क जाहिर करने का जमाना नहीं आया था। मोबाइल जैसी चिड़िया का उद्भव भी नहीं हुआ था। गूगल नाम का जिन्न भी तब तक अस्तित्व में नहीं आया था। जो भी खोजना हो किताबों से ही खोजना होता था। किताबें लाइब्रेरी में होती थी, साथ ही एक दूसरे को पढ़ती हुई निगाहें भी। रास्ता लोगों से ही पूछना होता था, रास्ते पूछने में कई बार रिश्ता बन जाता था। ये उन दिनों की बात है जब रिश्तों में अलाव थे, जब रिश्तों में ताव थे, जब रिश्तों में हाव भाव थे, जब रिश्तों में जान थी जिसे लोग हथेली पर लेकर घूमते थे, जब शहरों में रिक्शे पर जा रही लड़कियों के पीछे पीछे आशिक उन्हें उनके घर के पास तक छोड़कर आते थे, जब विश्वविद्यालय के नवनियुक्त अध्यापक साइकिल से भी नौकरी पर आते थे, जब लड़के दूर बैठे बैठे मजाक मजाक में लाल वाली, हरी वाली, लंबी वाली, सांवली वाली, गोरी वाली आपस में बांट लिया करते थे, जब अनजाने में ही किसी को अपना बना लेने का चलन था।

मैंने प्यार किया फिल्म की धूम थी, उसका एक संवाद बहुत प्रसिद्ध था। दोस्ती का एक उसूल होता है मैडम, दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। मैंने प्यार किया की कैप जिस पर लिखा होता था फ्रेंड फैशन में थी, तो टोपियां तो थी पर कबूतर नहीं थे जो प्रेम पत्र ले जाते, तो ऐसी मंडली में कोई न कोई कबूतर बना लिया जाता था जो बिना शरारत के जस का तस प्रेम पत्र पहुंचा देता था। यह उस समय की बात है जब कई लड़के शहर में रहने के ठिकाने के चक्कर में वकील बन जाते थे, मतलब विश्वविद्यालय से कोई न कोई कोर्स करते ही रहते थे, कहीं न कहीं एडमिशन लिए ही रहते थे, जिसमें लॉ सबसे सही रहता था क्योंकि 5 साल की छुट्टी, और अगर एक दो बार फेल भी हो गए तो सुने पर सुहागा, जिससे हॉस्टल में रहने की परमानेंट व्यवस्था बनी रहे। जब लाइब्रेरी में जोड़े प्रेम की पींगे बढ़ाते थे, किताबों की अदला बदली होती थी और ये किताबें लिफाफे का काम करती थी। ये बात चल रही है नवाबों के शहर कहे जाने वाले लखनऊ की, हालांकि यहां लक्ष्मण पार्क भी है, जब तब लखनपुरी का जिक्र होता रहता है।

जब सिनेमा हॉल के आसपास से गुजरने पर भी घर में डांट पड़ती थी, जब जय भारत सिनेमा हॉल में पुरानी फिल्मों के टिकट 3 रुपए और साइकिल पार्किंग के 25 पैसे होते थे, जब इश्क करना बड़ी हिम्मत का काम हुआ करता था, उस समय मवाली, कसम पैदा करने वाली जैसी फिल्मों के साथ सरस्वती चंद्र, मेरा नाम जोकर जैसी फिल्में भी हॉल में लगती थी। तो ये कहानी है श्रीमान एक्स की, जो बहुत संघर्षशील कलाकार हुआ करते थे, परंतु प्रेम के मामले में बिल्कुल फिसड्डी थे। वैसे देखा जाए तो कला का मूल प्रेम ही है। अब किशन भगवान को ही ले लो, सबसे बड़े कलाकार और सबसे बड़े प्रेमी।

0: श्रीमान एक्स की 12वीं तक की पढ़ाई लड़कों वाले स्कूल में ही हुई। समझिए, यहां तक का जीवन पूरी तरह सूखे में गुजर गया। जब विश्वविद्यालय में एडमिशन हुआ तो वहां कन्याएं भी थी और हिंदी की क्लास में तो बहुतायत से, यानी हरियाली ही हरियाली। पहली बार कोएड, यानी कि जहां लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, इस बात का अनुभव हो रहा था। अब समझिए कि श्रीमान एक्स की प्रेम कहानी शुरू होने का मौसम बन चुका था। उनके जीवन में अब तक प्रेम की फुहार तक न पड़ी थी, इसलिए बहुत ही खड़ूस टाइप के व्यक्ति बन गए थे श्रीमान एक्स। एक बार एक नाटक में प्रेम का अभिनय करना था, उसमें अपनी प्रेमिका से प्रेम का निवेदन करने वाले दृश्य का रिहर्सल करना था। श्रीमान जी के हाथ पैर सब कांपने लगे अपनी प्रेमिका का दुपट्टा छूने में। इतने में ही श्रीमान एक्स के पसीने छूट गए तो प्रेमिका का अभिनय कर रही मोहतरमा ने समझाया कि आप आराम से अभिनय कीजिए, इतना घबराने की बात नहीं है। तो श्रीमान जी थोड़ा सहज हुए।
1: बाजू

ये उन दिनों की बात है जब जाड़े का मौसम था, रंग बिरंगे लिबासों से सजे धजे लोग आते थे। हालांकि गरीबों के लिए मौसम बहुत दुखदाई भी होता है। जैसे तैसे रातें कटती हैं, नए साल की शुरुआत होने वाली थी। इस बीच एक कन्या श्रीमान एक्स को अच्छी लगने लगी। जी हाँ, अच्छी लगने लगी। सुंदर सांवली सलूनी, लहराते गेसू, मोरनी सी चाल, सुराहीदार गर्दन, कुल मिलाकर रीतिकालीन कवियों की नायिका सी लगती थी। क्लास में नायिका भेद के वर्णन के

दौरान वो सुश्री वाई के सपनों में खो जाते थे। हेलो हाय का कोई अवसर नहीं मिल पाता, कारण कि वो हमेशा अपनी एक सहेली के साथ रहती थी। खैर, मौसम मंगड़ाइयां ले रहा था, हवाओं में ठंड थी पर भावनाओं में पर्याप्त गर्मी थी, जिसका एहसास श्रीमान एक्स को बखूबी हो रहा था।

तो नए साल की आहट से श्रीमान एक्स के दिल में मुशायरे होने लगे, कवि सम्मेलनों की झड़ी लग गई, इश्क मोहब्बत का गाना जो भी सुनते उन्हें लगता उन्हीं के दिल की आवाज है। हालांकि कड़े संघर्ष के दिन थे, घर त्याग चुके थे, इसलिए अपनी पढ़ाई, रहने खाने के खर्च सबकी व्यवस्था करना आसान नहीं था। खाना पकाने के लिए मिट्टी का तेल मुश्किल से मिलता था, राशन कार्ड था नहीं, इसलिए विश्वविद्यालय में जाते समय भी साइकिल में 5 लीटर वाली प्लास्टिक की पिपिया यानी कि डिब्बा बंधा रहता था, जो उनकी अमीरी का ढोल पीटता रहता, उनके संघर्ष की महागाथा का ऐलान कर रहा होता। इसी में से प्रेम के लिए भी कुछ वक्त चुराना था। देखा जाए तो यही एक एहसास था जो ठंडी में भी गर्मी का एहसास बनाए रखता था। इसी के सहारे दिन गुजर रहे थे।

तब नए साल और त्योहारों में ग्रीटिंग कार्ड भेजने का चलन था। उसमें फूल पत्ती बनाने, शेरो शायरी लिखने का फैशन था। कार्ड की तरह तरह की दुकानें रंग बिरंगे कार्डों से सज उठती थी। एक महीने पहले से ही लोग कार्ड खरीदने भेजने में जुट जाते थे। सारे रिश्तेदारों दोस्तों को कार्ड भेजे जाते थे। रिश्ते के अनुसार उसमें हिंदी अंग्रेजी भाषा में शुभकामनाओं का गुलदस्ता भेजा जाता था। 2 रुपए से लेकर 100-200 तक के कार्ड होते थे, एक से एक डिजाइन के कार्ड। किसी में घर बना होता, किसी में क्रिसमस ट्री, तो किसी में दिल को चीरता हुआ तीर भी होता। यानी विभिन्न प्रकार के कार्डों की धूम रहती। श्रीमान एक्स के मन में विचार आया कि यही सुनहरा मौका है सुश्री वाई को हलो बोलने का। अब कैसा कार्ड खरीदा जाए, कुछ सूझ नहीं रहा था। ऐसा कोई पूर्व अनुभव भी नहीं था, और दूसरी बात, सुश्री वाई की पसंद नापसंद की कोई जानकारी नहीं थी। हां, कविता लिखने की समझ जरूर आ गई थी, पर दिलफेक शायरी उनके पास नहीं थी जो सीधे सीधे असर कर दे। वो तो अज्ञे, धूमिल, मुक्तिबोध, दुष्यंत कुमार और धर्मवीर भारती के दीवाने थे। इसमें कनुप्रिया काम आ सकती थी। आप गलत समझ रहे हैं, कनुप्रिया उनकी कोई दोस्त नहीं थी, बल्कि धर्मवीर भारती की अद्भुत रचना। इस उधेड़ बुन में, इस असमंजस में

मुक्तिबोध की ये कविता बचपन में पढ़ी थी जो अभी तक जस की तस बैठी थी। मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, मुझे ये कदम कदम पर चौराहे मिलते हैं बाहें फैलाए, एक पैर रखता हूँ कि सौ राहें फूटती हैं। मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ, मैं उन सब पर से गुजरना चाहता हूँ। बहुत अच्छे लगते हैं उनके तजुर्बे और अपने सपने, सब सच्चे लगते हैं। अजीब सी अकुलाहट दिल में उभरती है, मैं कुछ गहरे में उतरना चाहता हूँ, जाने क्या मिल जाए। इस कविता के भाव जैसा ही था श्रीमान एक्स का भाव, तो सबसे मजबूत हथियार कविता ही थी। कार्ड कैसा भी खरीदा जाए पर कविता शानदार लिखी जाएगी। समस्या ये थी कि कोई ऐसा मित्र भी नहीं था जिसके साथ अपनी भावनाएं साझा की जाएं, तो जैसे तैसे कार्ड खरीदा गया।

कुछ ही दिन बाकी रह गए थे नववर्ष के आगमन में। मौसम भी अपनी रंगत बदल चुका था। छात्र संघ के चुनाव भी कुछ ही दिनों में होने वाले थे, इसलिए नुक्कड़ सभाएं चल रही थी। बाहरी नेताओं का आना जाना भी शुरू हो चुका था, जो अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन जुटा रहे थे। इस मौके पर कई प्रतिनिधि पर्चे और गुलाब के फूल बांट रहे थे। श्रीमान एक्स को लगा ये अवसर भी हो सकता है सुश्री वाई को फूल देने का, लेकिन अपने ही विचार को उन्होंने खंडित कर दिया, ये सोचकर कि ये तरीका सही नहीं है। हालांकि प्यार और वार में सब जायज है कि कहावत सुनी थी, लेकिन उस पर अमल नहीं करना चाहते थे। श्रीमान एक्स का मानना था कि हर कहावत तर्कसंगत हो ऐसा भी नहीं है। कई कहावतें तो परिस्थितियों वश बना ली गई थी, पर हर परिस्थिति में उन्हें लागू करना ठीक नहीं। साथ ही उन्हें किसी नेता के पीछे घूमना पसंद नहीं था। कलाकार मन बहुत विद्रोही और भावुक होता है। उन दिनों बहुत सारे नेता विश्वविद्यालय में इसलिए एडमिशन लिए रहते थे कि उनको चुनाव लड़ना है। पिताजी की उम्र को होने को आए थे, पर प्रण था कि बिना चुनाव जीते विश्वविद्यालय नहीं छोड़ना है, सो अभी तक लगे पड़े थे। इसमें लड़कियां भी पीछे नहीं थी कि चुनाव जीतने के जितने भी हथकंडे हो सकते थे सब आजमाए, और वो काम भी आए। खैर, ये तो हुई माहौल की। इसी माहौल में बहुत सारे प्रेम प्रसंग हिलोरे ले रहे थे, लेकिन जो खुद भंवर में हो उसे दूसरे का डूबना कहां दिखाई देता है, इसलिए इस मामले में कोई किसी और से कुछ सीखना नहीं चाहता।

तू में हाथ डाल ऐ गुल चेहरा परी जमान मुद्दत से दिल उदास दादा दास है तेरे होठों की प्यास है ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा

आखिर वो दिन आ ही गया जब श्रीमान एक्स को सुश्री वाई से हैप्पी न्यू ईयर बोलना था। कार्ड खरीद लिया गया था पर उस पर दिल के जज्बात उतारना बाकी था। सोचा चलो विश्वविद्यालय में ही लिख देंगे। बड़े उत्साह, घबराहट और न जाने कितनी भावनाओं की खिचड़ी के साथ पहुंचे। अब खिचड़ी क्या, तहरी कहना ज्यादा सही रहेगा। कौन सी भावना का प्राधान्य है समझ में नहीं आ रहा था। साइकिल स्टैंड में साइकिल खड़ी की, हिंदी विभाग की तरफ पहुंचे कि कोई दिखाई नहीं दिया। सोचा चलो बरामदे में बैठकर कुछ न्यू ईयर की कविता बनाई जाए। अचानक सुश्री वाई की झलक दिख गई। अब श्रीमान एक्स के हाथ कांपने लगे। कुछ ठीक से लिखा नहीं गया। उन्हें बुलेट मोटरसाइकिल की धक धक सुनाई पड़ने लगी, लेकिन वो उन्हीं के दिल की धड़कन थी जो बेतहाशा धड़क रही थी। जैसे

ऐसे कुछ सामान्य सा लिखा, आपको नववर्ष की शुभकामनाएं, आप सदा प्रसन्न रहें। मतलब जैसे आशीर्वाद दे रहे हूं। ये लिखने में विरोधाभासी भावनाओं का ज्वार था। हाथ ऐसे कांप रहे थे जैसे बर्फ पड़ रही हो, 4 डिग्री तापमान हो। पसीना ऐसे छूट रहा था जैसे मई जून की दोपहरी हो। इन्हीं भावनाओं को समेटे हिमालय पर जाने जैसा साहस जुटाकर सुश्री वाई को खोजते खोजते श्रीमान एक्स मनोविज्ञान विभाग में पहुंचे। दूसरे तल पर सुश्री वाई अपनी सहेली के साथ खड़ी अपनी ही धुन में बतिया रही थी। पहले तो श्रीमान एक्स को लगा कि बस इनको ऐसे ही खड़े देखते रहे, उसकी मुस्कुराहट को जीते रहे।

लेकिन फिर ख्याल आया और सोचा कि बड़ी हिम्मत जुटाकर यहां तक आया हूं, बात आगे बढ़ा ही दी जाए, फिर कब मौका मिले पता नहीं, फिर दोबारा इतनी हिम्मत जुटे न जुटे। आगे बढ़ गए, कांपते गले से कहा, हेलो। वो बोली, जी कहिए। जी जी जी कुछ नहीं है, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी में इतनी मुर्की थी कि कोई संगीत का उस्ताद सुन लेता तो पूछ बैठता, भैया कितने दिनों का रियाज है। बस इतना ही कह पाए थे श्रीमान एक्स, और बदले में थैंक यू मिल गया था। उस कंपन को शब्दों में नहीं लिखा जा सकता, उसका दोबारा अभिनय भी नहीं किया जा सकता। वो दिन है और आज का दिन, लोग पल भर के साथ में परिवार बन

0: लेते हैं, लेकिन श्रीमान एक्स उन लम्हों को अभी तक किताबों में रखे गुलाब की तरह संजोए हैं।
1: आप यूं ही अगर हमसे मिलते रहे, देखिए एक दिन प्यार

उन दिनों की बात है। अभी आप सुन रहे थे अरुण शेखर की लिखी ये गीतों भरी कहानी। वाचन स्वर अरुण शेखर का था, संपादन और प्रस्तुति रमेश गोखले की।

0: नमस्कार। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स तथा FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में शाम के 4:59 हो रहे हैं। आरंभ होती है आज की सायंकालीन प्रसारण सभा। अब से कुछ ही पलों में होंगे समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक में उन्होंने कहा

0: कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। गृहमंत्री ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की।
1: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह है कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने शिकायत दर्ज कराई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: स्वास्थ्य मंत्रालय ने जांच, परीक्षण या विश्लेषण के लिए दवाइयों के आयात की अनुमति प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए औषधि नियम 1945 में संशोधन का प्रस्ताव भी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि विश्लेषण और गैर क्लिनिकल परीक्षण प्रक्रिया के लिए कम मात्रा में सभी औषधियों के आयात की अनुमति प्रक्रिया में संशोधन प्रस्तावित किया गया है। ये सरल प्रक्रिया यौन हार्मोन, साइटोटॉक्सिक और बीटा लैक्टेम संबंधी औषधियों पर प्रभावी नहीं होगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यी जांग दे थापा से मुलाकात की। शिक्षा मंत्री ने बताया कि इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने बताया कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। कोलकाता के तारातला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस घटना में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने कल घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच समिति एसआईटी का गठन किया। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। भारत आयरलैंड के बीच 2 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच बेलफास्ट में आज शाम 6 बजे से खेला जाएगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें होंगी। आयरलैंड के कप्तान लोरकान टकर होंगे। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

0: टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: नमस्कार आदाब, स्वागत है आप सभी का युवाओं के कार्यक्रम युववाणी में और आज हैं आप शिवलता के साथ। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस सुविचार के साथ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। दोस्तों, हमें अपने मन को मजबूत बनाना आना चाहिए ताकि मुश्किल के समय में हम खुद को संभाल सकें और मुश्किलों का सामना आसानी से कर सकें। दोस्तों, आज का दौर सिर्फ दूसरों के वीडियोस देखने और रील्स स्क्रॉल करने का नहीं है, बल्कि खुद कुछ नया रचने का है। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे पैशन और करियर की जिसने आज के युवाओं को एक नई पहचान दी है, जो है कॉन्टेंट क्रिएशन। आज का युवा सिर्फ इंजीनियर या डॉक्टर नहीं बनना चाहता, बल्कि कंटेंट क्रिएटर भी बनना चाहता है। ऐसा क्या जादू है इस फील्ड में? सबसे बड़ा जादू है आज़ादी और अपनी आवाज़। पहले के ज़माने में अगर आपको अपनी बात लाखों लोगों तक पहुंचानी होती थी तो आपको टीवी या अखबार का सहारा चाहिए होता था। पर आज अगर आपके हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट है और अपनी क्रिएटिविटी से आप पूरी दुनिया को जोड़ सकते हैं। चाहे आप खाना अच्छा बनाते हों, कोडिंग जानते हों या बस मिमिक्री करते हों, हर हुनर की कद्र है यहाँ। दोस्तों, लेकिन अक्सर माता पिता स्वाभाविक रूप से चिंतित रहते हैं और इसे स्थिर करियर के रूप में नहीं देखते हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि कंटेंट क्रिएशन सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, ये डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है। इसमें युवा स्क्रिप्ट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, डेटा एनालिसिस और मार्केटिंग जैसी कई स्किल्स एक साथ सीखते हैं। अगर युवा इसे एक पार्ट टाइम हॉबी से शुरू करके धीरे धीरे प्रोफेशन बनाएं तो ये बहुत शानदार करियर विकल्प है। यानी ये सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि स्किल डेवलपमेंट भी है। इसके लिए बस शुरुआत करना ज़रूरी है। डिजिटल दुनिया में जितनी तारीफ मिलती है उतनी ही आलोचना भी मिलती है। युवाओं को कुछ बातें याद रखनी चाहिए। रचनात्मक आलोचना यानी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म और ट्रोलिंग में फ़र्क समझें, ट्रोलर्स को इग्नोर करें। स्क्रीन टाइम और रियल लाइफ में बैलेंस बनाएं, क्योंकि आपकी मेंटल हेल्थ आपके व्यूज़ और लाइक से कहीं ज़्यादा कीमती है। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में हम बातें करेंगे और भी, उसके पहले हम सुनेंगे ये गीत।

दोस्तों, वोकेशनल ट्रेनिंग यानी व्यावसायिक शिक्षा और कौशल विकास सिर्फ एक ज़रूरत नहीं बल्कि कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी बन चुकी है। अक्सर हमारे समाज में एक सोच रही है कि सिर्फ बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करके या दिन रात किताबें रटकर ही एक अच्छा करियर बनाया जा सकता है। लेकिन ज़रा सोचिए, आज कंपनीज सिर्फ ये नहीं पूछती हैं कि आपको क्या करना आता है, पर ये भी पूछती हैं कि आप क्या कर सकते हैं, यानी आपकी स्किल्स क्या हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। ये आपको सिर्फ थ्योरी नहीं सिखाती बल्कि आपको सीधे फील्ड में काम करने के लिए तैयार करती है, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग हो, ग्राफिक डिज़ाइनिंग हो, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो, कोडिंग हो, या फिर फैशन डिज़ाइनिंग, प्लम्बिंग और इलेक्ट्रिकल वर्क्स। हर वो काम जो आपको आत्मनिर्भर बनाए, वो एक बेहतरीन हुनर है। दोस्तों, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा स्किल्ड इंडिया यानी कुशल भारत की बात करते हैं। आज सरकार की तरफ से भी कई ऐसे कोर्सेज चलाए जा रहे हैं जहां बहुत ही कम फीस में या बिल्कुल मुफ्त में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जा रही है। दोस्तों, इसके कई फायदे हैं। पहला फ़ायदा ये कि आपको नौकरी के लिए सालों साल इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और आप सिर्फ नौकरी ढूंढने वाले नहीं बल्कि जॉब क्रिएटर यानी दूसरों को नौकरी देने वाले भी बन सकते हैं, अपना खुद का स्टार्टअप या बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो मेरे युवा दोस्तों, अगर आप भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ या पढ़ाई के बाद अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, तो आज ही अपनी पसंद का कोई हुनर चुनिए, अपनी हॉबी को अपनी स्किल बनाइए और वोकेशनल ट्रेनिंग के ज़रिए अपने सपनों को एक नई उड़ान दीजिए।

0: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
1: लीजर रिसोर्ट बहराइच,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
1: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
0: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
1: UPSRTC देवरिया,
0: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा,
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
0: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
1: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
0: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर,
2: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा,
3: बीटेक पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, D-Pharma, B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन शुरू हो गए हैं।
4: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
3: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।
5: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं,

0: धारावाहिक, वृत्तचित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: दोस्तों, शिक्षा का अर्थ केवल डिग्रियां हासिल करना या किताबी ज्ञान प्राप्त करना नहीं है। वास्तविक शिक्षा वो है जो हमें जीवन की वास्तविकताओं का सामना करना सिखाती है। जीवन कौशल यानी लाइफ स्किल्स उन्हीं योग्यताओं का समूह होता है जो व्यक्ति को रोजमर्रा की चुनौतियों, दबावों और अवसरों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में सक्षम बनाती हैं। ये वो क्षमताएं हैं जो हमें किताबी दुनिया से बाहर निकलकर व्यावहारिक दुनिया में एक बेहतर इंसान के रूप में स्थापित करती हैं। दोस्तों, WHO के अनुसार जीवन कौशल वो मनोवैज्ञानिक और सामाजिक क्षमताएं होती हैं जो किसी व्यक्ति को अपने वातावरण के साथ सकारात्मक रूप से जुड़ने और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करती हैं। ये केवल काम करने का तरीका नहीं बल्कि सोचने, महसूस करने और दूसरों के साथ व्यवहार करने का एक संतुलित दृष्टिकोण है। दोस्तों, हमारे जीवन में कुछ प्रमुख जीवन कौशल होते हैं जिन्हें हमें समझना और जिन्हें सीखना बहुत ज़रूरी होता है, जैसे आत्म जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, अपनी शक्तियों, कमजोरियों, मूल्यों और भावनाओं को समझिए, निर्णय लेने की क्षमता यानी डिसीजन मेकिंग, सही समय पर सही विकल्प चुनने की योग्यता हमें होनी चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग, किसी भी संकट को चुनौती के रूप में लेकर उसका रचनात्मक समाधान खोजना, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी अपनी बात को स्पष्ट और विनम्र तरीके से दूसरों तक पहुंचाना और सक्रिय रूप से दूसरों को सुनना। इसके साथ ही सहानुभूति यानी एम्पैथी बहुत ज़रूरी है, दूसरों के नज़रिए से चीज़ों को देखना और उनके प्रति संवेदनशील होना। इसके साथ साथ आज के ज़माने में सबसे बड़ा चीज़ है जो हमें सीखने की ज़रूरत है, वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट यानी तनाव का प्रबंधन। कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक संतुलन और शांति को बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जीवन कौशल का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो बचपन से शुरू होकर जीवन के अंतिम पड़ाव तक चलती है। ये हमें सिखाती है कि असफलता अंत नहीं है बल्कि सीखने का एक अवसर है। अगर हम अपने अंदर इन कौशलों को विकसित करें तो हम न केवल स्वयं एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं बल्कि एक स्वस्थ, जागरूक और जिम्मेदार समाज के निर्माण में भी अपना योगदान दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कार्यक्रम में हम आगे बढ़ते हैं इस गीत की ओर।

दोस्तों, इसी के साथ ही वक्त हो चला है हमारी प्रश्नोत्तरी का। तो हमारा आज का सवाल है, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, वर्ल्ड वेटलैंड्स डे यानी विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही मैं लेती हूँ आपसे विदा, इस वादे के साथ कि हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहें, स्वस्थ रहें।

युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: देखिए एनआर के साथ अपन बैठकी लगल, पंच भाई लोग भी अपन घर के काम धाम छोड़ के या कर काम निपटा के कार्यक्रम सुने के बैठ जानी कि देखिए आज कार्यक्रम के माध्यम से क्या जानकारी मिलेगा। लेकिन पंच भाई लोगन के भी कार्यक्रम के माध्यम से तमाम जानकारी भी दियावल जाला और जानकारी लेके लाभ भी उठा ली।
1: भैया आज अंतर्राष्ट्रीय नशा निरोधक दिवस है
0: हाँ
1: भैया।
0: भैया बहुत बढ़िया बात बतौली।
1: भैया आजकल जौन बा नशा जौन बा समाज के एक तरह से जौन युवा पीढ़ी बा ओके एकदम ओका भविष्य खराब कराता।
0: बिल्कुल बिल्कुल, या नशा के बात करनी तो नशा एक अभिशाप के रूप में समाज में जो एक कूड़ के रूप में बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और मुख्य रूप से देखा जाए देश के जो युवा पीढ़ी बा अपन लड़के बच्चे बने जो विद्यार्थी जीवन के बच्चे बने मुख्य रूप से नशा से काफ़ी जुड़ के अपने आप के बर्बाद करता है।
1: भैया हर साल जौन बा 26 जून के अंतर्राष्ट्रीय नशा दिवस मनाओल जाला। संयुक्त राष्ट्र जौन बा 1997 में यह दिन घोषित कैले रहल
0: हाँ
1: और ओकर ही मकसद रहल कि जौन बा कि सबके जौन बा नशा से जौन बा दूर रखल जा,
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ओकर उपाय कैसे होके ये बारे में सबके जागरूक कैल जा।
0: ये कहने का मतलब है कि जौन भी समाज में नशीली पदार्थ बा ओकर उपयोग जौन बा दुरुपयोग पंच भाई करता ना चाहे उपयोग कहल जा तो ओकर उपयोग कैसे रोकल जा, यानी ये समाज के लिए बहुत बड़ा एक कोड़ के रूप में आगे बढ़ाता थे कि कैसे रोकल जा। मुख्य रूप से देखल जा कि जौन भी नशा नशीली चीज़ बा ओके अवैध तस्करी के कैसे रोकल जा, साथ ही साथ नशा के का दुष्प्रभाव बा आज के दिवस के माध्यम से लोगों की जागरूक कर जाता कि हमारे समाज में तमाम ऐसा बीमारी बनी जो नशा की वजह से होता है। जिसे देखल जाए मुख्य रूप से मुख का कैंसर भी आ बहुत तेज़ी से युवा पीढ़ी के प्रभावित करता और एक सबसे बड़ा कारण बा नशा, यानी जौन भी चीज़ अपने समाज के प्रभावित करता ओके रोकले खातिर दिवस मनाया जाता कि लोगों की जागरूक कर जा और नशा से दूर रखल जा।
1: भैया देखा आज जौन बा अंतर्राष्ट्रीय यातना पीड़ित समर्थन दिवस भी है भैया।
0: बिल्कुल भैया,
1: जौन लोग पीड़ित बाड़ा यातना से ओकर समर्थन में उनके जौन बा हौसला देवे खातिर ये दिवस मनावल जाला भैया। भैया कई जगह सरकारी जौन ऑफिस बाड़ा ओमन भी जानबूझ के कई बार अपने कर्मचारियन के चाहे अधिकारी कई तरह से पीड़ित होना उनके यातना दिहल जाला। तो ये लोगों के कैसे उससे बचावल जाए एकरे बारे में भैया सबके सतर्क और जागरूक रहे पड़ी।
0: ये अंतर्राष्ट्रीय यातना पीड़ित दिवस के बात अब कैली हैं तो कहने का मतलब आज 26 जून बा आज भी ई दिवस भी मनावल जाता दुनिया भर में यातना के शिकार लोगों के एकजुटता प्रदान करे खातिर उनके न्याय दिलाए खातिर उनके साथ जो अमानवीय व्यवहार होता ओकर निंदा करे खातिर ई दिवस के घोषणा जौन बा 26 जून 1987 के लागू कैल गेल रहल और एक पुनर्वास एक समर्थन में ई दिवस मनावल जाता। कहले के मतलब ये बा कि यातना के पूरी तरह से समाप्त करे खातिर समाज में एकजुटता लाए खातिर ये देश या देश ही नहीं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिवस मनाया जाता और लोगों के जागरूक किया जाता।
1: यातना भी भैया कई तरह का होला। इसलिए जैसे मारपीट करंट लगाना चाहे नाखून उखाड़े भैया ओका चाहे उल्टा लटका दिल जाए चाहे पानी में डुबो दिल जाए चाहे मरलिक धमकी दिल जाए चाहे परिवार के नुकसान का धमकी दिल जाए चाहे और जौन बात कई और ऐसा चीज जैसे खाना और पानी ना दिया चाहे काली कोठरी में अंधेरी कोठरी में रख दिया भैया।
0: बिल्कुल
1: ये सब भी भैया यातना के श्रेणी में आवला।
0: बिल्कुल,
1: तो भैया ये सबसे कैसे बचल जाए एकर भी जानकारी आप लोगों के जरूरी है भैया। खाली देखिए जौन बा एक डेटा बा जौन में 2022 में 175 मौत जौन बा पुलिस हिरासत में भैल भैया। ये भारत का में
0: आंकड़ा बा।
1: के आंकड़ा ही है भैया। वैसे भैया 4484 मामला जौन बा मानवाधिकार में भी पुलिस के जाति के गई रहल। तो ए तरीके से लोगों के यातना के जौन बा आंकड़ा जौन बा ये बढ़त जाता।
0: कहले के मतलब बा भैया कि जौन भी समाज में अमानवीय व्यवहार बा ओके रोके खातिर ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय यातना पीड़ित दिवस मनावल जाता कि कौने तरह से जाए जौने स्तर से आदमी के पीड़ित कर जाता यातना दिया जाता उनके जागरूक कर जाए उनके रोकल जाए ताकि विश्व स्तर पर एक शांति स्थापित हो सके।
1: भैया एकरे खातिर सबके जागरूक कई जरूरी बा। खास कोई स्कूल चाहे थाना चाहे कोर्ट भाग भैया जैसे पोस्टर लगा के चाहे जगह जगह जौन बा एकरे खातिर जागरूकता कार्यक्रम कई के वर्कशॉप कई के भैया सबके जागरूक कई जा सकला। तब वह जौन बा यह यातना से जौन आम आदमी बा जौन पीड़ित बा ओके राहत मिल पाई भैया।
0: भैया यातना में स्कूल के बात करनी है तो देखे कि पहले मिला तो हल कि स्कूलन में भी सीनियर छात्रन के साथ जौन बा जूनियर छात्रन के द्वारा जो है या रैंगिंग के भी व्यवस्था चलत रहल, यानी सीनियर लोग जो है जूनियर के रैंगिंग के माध्यम से टॉर्चर करते हैं, उनके प्रताड़ित करते हैं, यातना देते हैं। सरकार भी तमाम नियम अधिनियम भी बनौले बा।

0: ताकि ये यातना पीड़ित लोगों के कैसे बचावल जा सके। यह बातचीत चल रही है लेकिन लगल सुनल जाए कविता पाठ बनवारी सिंह जी से, फिर आगे बातचीत कर ली।
1: देखल जाए एक मौसम के गीत है। जाड़ा महीना हवे ठंडी बैरिया, कांपन लोग सब ठिठुरल शरीरिया, कांपन लोग सब ठिठुरल शरीरिया। आ गीता पे बुढ़ऊ

मिलाऊ खेलें, जाकिट मिलाऊ खेलें, साजन सवारिया कापेल लोग सब ठिठुर शरीरिया, कापेल लोग सब ठिठुर शरीरिया। जाड़ा महीना हवे ठंडी बयरिया, कापेल लोग सब ठिठुर शरीरिया। दमहा।

बुढ़ाऊ से गुजारिया, कांपे लोग सब ठिठुरे शरीरिया, कांपे लोग सब ठिठुरे शरीरिया। आइल गइल भइल हवे केतना कठिनाई, रही रही कब्बो कब्बो बदरिल छाई, ओढ़ले शिवानिया ओ सवन चदरिया, काँपल लोग सब ठिठुरल शरीरिया, काँपल लोग सब ठिठुरल शरीरिया। जाड़ा महीना हवे ठंडी बैरिया, काँपल लोग सब ठिठुरल शरीरिया, काँपल लोग सब ठिठुरल शरीरिया। दूसरका गीत यह। घर आंगन आंगन चहकेले, घर आंगन आंगन चहकेले, चहके शिवानिया, मुबारक हो नौ के बरिस के किरीनिया, मुबारक हो नौ के बरिस के किरीनिया। घर आंगन

पर जवानवा, धनी है जवान धनी उनकर जवानिया, मुबारक हो नव के बरिस के किरिनिया, मुबारक हो नव के बरिस के किरिनिया, घर आंगन आंगन चहकेल चहक सिमानिया, मुबारक हो नव के बरिस के किरिनिया, बड़का पहरुआ हिमालय लसानी, कलरव कर गंगा जमुना के पानी, लोगवा पढ़ेला बुद्ध नानक के बचानिया, मुबारक हो नव के बरिस के किरिनिया, मुबारक हो नव के बरिस के किरिनिया, काम काज आपन आपन सब लोग समान।

च विकास चिरई पखिया पसारे। बादर मनौता लखी नाच मन वामिया, मुबारक हो नव के बरिस के किरणिया, मुबारक हो नव के बरिस के किरणिया। बादर मनौता लखी नाच मन मोरनिया, मुबारक हो नव के बरिस के किरणिया। प्रदूषण होवे न होवे सफाई, नए बरिस पर कुछ पेड़ वो लगाई। प्रदूषण होवे न

0: के बरिश किरणिया मुबारक हो नव के बरिश किरणिया करी कामना जन मन गण सहयोग शांति सुख बरसावे नए बरिश के चटक रोशनी सुहर किरणिया पसरावे नए बरिश के चटक रोशनी सुहर किरणिया पसरावे सगरो समय तैके होला जैसे सूरज चान हमें धरती के घूमले से मौसम रात दिन पहचान हमें नौका पुरान साल के अंतर मनई के गणना बतलावे नए बरिस के चटक रोशनी सुघर किरणिया पसरावे नए बरिस के चटक रोशनी सुघर किरणिया पसरावे 2017 के कांटा मिलजुली होय सफाई फूलन से बगिया सज जावे पेनहुहार बनाई 2018 के स्वागत प्रेम भाव जन मन लामे नए बरिस के चटक रोशनी सुघर किरणिया पसरावे हैप्पी न्यू ईयर कहले से खुशियाँ नहीं आई हैप्पी न्यू ईयर कहले से खुशियाँ नहीं आई मानवता पुष्पित पल्वित कर प्यार करी तीन भाई आसमानी सब बात छोड़ी धरती के गीत सुनावे नए बरिस के चटक रोशनी सुघर किरणिया पसरावे नए बरिस के चटक रोशनी सुघर किरणिया पसरावे बैर भाव पन के न पावे प्रेम भाव उपजावल जाऊं बैर भाव पन के न पावे प्रेम भाव उपजावल जाऊं विज्ञान के धारा विकास दौरे तकनीकी अपनावल जाऊं विकास के धारा विज्ञान के दौरे तकनीकी अपनावल जाऊं देश के जिंदगी सुख कर होवे ज्ञान के दिया जरा में नए बरिस के चटक रोशनी सुघर किरणिया पसरावे नए बरिस के चटक रोशनी सुघर किरणिया पसरावे नया बरिस है नए उमंग से ऐसन कर्म दिखावे नया बरिस है नए उमंग से ऐसन कर्म दिखावे युवा शक्ति पौरुष के बल धरती के सड़क बनावे आजाद देश अपन सोने के फिर चिरई हो जावे नए बरिस के चटक रोशनी सुघर किरणिया पसरावे नए बरिस के चटक रोशनी सुघर किरणिया पसरावे
1: जिंदगी बहुत कीमती है उससे तो सस्ता ही है
2: मैं आशुतोष राणा मैंने जाना फिर ये माना सीमेंट से 9.5% तक आम सरिये के मुकाबले बेहतरीन पकड़
3: आरएचएल गोल्ड टीएमटी सरिया 70 सालों का विश्वास और भरोसा जानो फिर मानो
4: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों नियोक्ताओं पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त

0: में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
1: लीजर रिजॉर्ट बहराइच,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
1: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
0: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
1: UPSRTC देवरिया,
0: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा,
1: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
0: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
1: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
0: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
1: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
0: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।
2: हाँ भैया, देखिए आज पूरा देश जनबा मुहर्रम का त्यौहार भी मनाया जाता, इस्लामी धर्म का ही पवित्र त्यौहार मनाया जा रहा और पवित्र महीना भी मनाया जाता। तो आज देखल जाए ऐतिहासिक शांति के संदेश देव खाती सिया संप्रदाय द्वारा धार्मिक सभा के माध्यम से ये त्यौहार मनावल है और मुख्य रूप से अधर्म पर धर्म के जीत खातिर ये त्यौहार है, जौने में अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाए खातिर इंसानियत के कुर्बानी खातिर त्यौहार मनाया जा रहा।
3: हाँ भैया, मुहर्रम जौन बा इस्लामी कैलेंडर का जौन बा पहला महीना है और ये बहुत ही पवित्र महीना माना जाला और एक अल्लाह का महीना भी कहा जाला। भैया और भैया देखिए, एक मुहर्रम हिजरी सन शुरू होला जौन पैगम्बर मोहम्मद साहब का मक्का से मदीना हिजरत 622 ईस्वी से गिनती शुरू हो रहा और 10 मुहर्रम 61 हिजरी यानी कि 10 अक्टूबर 680 ईस्वी में इमाम हुसैन और 72 साथी करबला इराक में शहीद हो रहा भैया।
2: बिल्कुल बिल्कुल,
3: यही गम में मुहर्रम मनावल जा रहा।
2: बिल्कुल, कहने का मतलब भैया कि इस्लामी हिजरी कैलेंडर के अनुसार ये पहला महीना है और एक के मुख्य रूप से सत्य न्याय त्याग अन्याय के खिलाफ बलिदान के प्रतीक रूप में करबला के शहादत की याद करे खातिर त्यौहार मनावल जाला, ताजिया जुलूस के माध्यम से हुसैन के याद कर जाला।
3: भैया एक संदेश यो है कि जिल्लत के जिंदगी से अच्छा बाकी इज्जत के मौत बेहतर बढ़िया।
2: बिल्कुल,
3: यही के हिसाब से जौन बा मुहर्रम मनावल जाला, कहे कि जुर्म के खिलाफ डटल रहने का ये प्रतीक है। भैया
2: बिल्कुल भैया, हजरत मोहम्मद हुसैन के बाद भइल है तो उनके जन आज ही के दिन शहादत भइल है, उनके मानवता के संदेश खातिर, उनके ऐतिहासिक योगदान खातिर, करबला के ऐतिहासिक महत्व खातिर ये त्यौहार पूरे देश में मुस्लिम समुदाय के मुख्य रूप से सिया संप्रदाय द्वारा ये त्यौहार मनावल जाला और पूरे देश में ताजिया के माध्यम से एक उत्सव के रूप में ताजिया निकाल के मुस्लिम समुदाय के लोग त्यौहार मनावल।
3: हाँ भैया, अरेबन भैया देखिए, हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग शामिल होले ताजिया का जौन जब निकलला तो वो दिन कई जगह देखल जाला भैया, गांव में जगह जगह जहाँ तक ताजिया दफनावल जाला वहाँ पर मेला भी लगा ला, जौने में हर धर्म के लोग जाला और मेला में अपन ओकर लाभ उठावल। भैया
2: कहने का मतलब भैया कि एक सामाजिक एकता के भी प्रतीक है, सभी धर्म मिल के जौन भाई त्यौहार मुख्य रूप से खुशी के रूप में भी मनावल जाला लेकिन एक शहादत दिवस के रूप में भी त्यौहार मनावल जाला।
3: भैया लखनऊ में छोटा इमामबाड़ा और बड़ा इमामबाड़ा में भैया शाही जरी निकले ले ना मरहम सिया सुन्नी हिंदू सब साथे साथे भैया रहल हैं। ऐसे भैया हैदराबाद में बीबी का आलम हाथी पर आलम रखल जाला भैया और हिंदू भाई लोग जगह जगह शामिल होले, कई जगह हिंदू ताजिया भी बनावल भैया और हुसैनी ब्राह्मण कलबला में हुसैन के तरफ से लड़ल रहना, राजस्थान में इमाम चौक और हिंदू मोहल्ला भी बा भैया।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो काले का मतलब भाई कि स्थानीय त्यौहार ना है, मुस्लिम समुदाय के पूरे देश स्तर पर त्यौहार मनावल जाला, देश स्तर के बात है छोड़ी दुनिया के कई देशों में भी मुहर्रम के त्यौहार धूमधाम से मनावल जाला और लोगन के एक संदेश के माध्यम से सत्य और न्याय त्याग के अन्याय के खिलाफ बलिदान देवे खातिर त्यौहार मुख्य रूप से पूरे देश में मनावल जाला।
3: भैया गांधी जी भी कहले रहन कि जौन बा हम हुसैन से बहुत कुछ सीखले हैं, मुट्ठी भर लोग भी अपने हक के अगर लड़ाई लड़े के तैयार हो जाए तो बड़े बड़े फौज के भी हरा सकें।
2: बिल्कुल
3: भैया देखिए, आज जौन बा 26 जून है और आज छत्रपति साहू जी महाराज का जयंती है।
2: बिल्कुल
3: भैया, 26 जून 1874 के कोल्हापुर रियासत में छत्रपति साहू जी के महाराज का जन्म भइल रहा और तब से हर साल आज के तिथि पर भैया साहू जी का जयंती मनावल जाला और महाराष्ट्र सरकार 26 जून के सामाजिक न्याय दिवस भी घोषित कैले बा। साहू जी महाराज के गरीबन के राजा भी कहल जाला और वो आरक्षण के जनक रहना भैया।
2: भैया छत्रपति साहू जी के महाराज के नाम लियाली तो कोल्हापुर में सामाजिक योगदान, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में सामाजिक लोकतंत्र के स्तंभ

0: स्तंभ के रूप में 26 साहू जी के महाराज के जानल जाला। काहे से समाज में तमाम ऐसा सामाजिक समस्या रहा, मुख्य रूप से छुआछूत, असमानता, इन सब दूर करे खातिर छत्रपति साहू जी बहुत बड़ा योगदान दिए। मुख्य रूप से संविधान निर्माता बाबा साहब के जीवन के आगे बढ़ावे खातिर उनके जीवन में तमाम ऐसा सहयोग के माध्यम से उन्हें बाहर भेजने के प्रयास के रूप में छत्रपति साहू जी महाराज के बड़ा योगदान रहा। और शिक्षा के क्षेत्र में भी, आर्थिक सहायता के क्षेत्र में देखल जाए तो उनके समाचार पत्र जो रहा मूल नायक में भी काफ़ी सहयोग कैलन। तो कहले के मतलब बा कि देश के विकास में अगर इनका योगदान के जानल जा, तमाम लोगन के उत्थान के रूप में जानल जा, तो छत्रपति साहू जी महाराज के काफ़ी योगदान मानल जाला।
1: भैया जब वो 10 साल के रहना तब जौन बा कोल्हापुर के रानी आनंदी बाई उनके गोद ले ले रही, तब से उनके नाम के आगे साहू जुड़ गए। भैया 1894 से 1922 तक करीब 28 साल तक वो कोल्हापुर के राजा रहें। आई दौरान वो बहुत कई सामाजिक कार्य भी कैलें।
0: कहले का मतलब भैया छत्रपति साहू जी के हर क्षेत्र में योगदान देखे के मिलेला। महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी काफ़ी योगदान उनके देखे के मिलेला। समाज में तमाम ऐसा प्रथा रहने जैसे विधवा पुनर्विवाह पर भी रोक लगल रहा, तो उनके द्वारा जौन बा विधवा पुनर्विवाह के बढ़ावा दिया गया। साथ ही साथ महिला उनके योगदान खातिर छोटी छोटी जौन प्रथा समाज में चलत रहा उनके भी आगे बढ़ावे खातिर छत्रपति साहू जी सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता में बढ़ावा देवे खातिर काफ़ी योगदान दिया।
1: भैया वो राजा हो के भी जौन बा राजर्षि कहलैलें, काहे कि वो अपने राजपाट में गरीबन के, दलितन के, महिला किसान खातिर कई तरह के योजना चलौले रहलें जौने से आज भी उनके याद कैल जाला।
0: 1920 में दलित सभा के नेता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के नेता चुनला। और डॉक्टर अंबेडकर उस समय दलितन के एक महान नेता के आगे बढ़ौले में डॉक्टर अंबेडकर के साथ साथ छत्रपति साहू जी महाराज के भी काफ़ी योगदान रहा। तो कहले के मतलब यह कि आज जो उनके दिवस मनावल थे, हम जन्मदिन मनावल थे छत्रपति साहू जी महाराज के, तो कोल्हापुर रियासत के एक राजा होने के बावजूद भी समाज के विकास में सामाजिक समानता, सामाजिक न्याय, शिक्षा में समानता दिलाए खातिर छत्रपति साहू जी महाराज काफ़ी भूमिका निभावली और समाज के आगे बढ़ावली।
1: भैया देखो जौन बा अपन चर्चा तो चलत रहत, बाकी जौन बा समय का जौन बा बाध्यता बा और अपने बैठकी के समय पूरा होता तो चल जा।
0: पंचो
1: पंचो जय
0: जय
1: हिंद।
0: हिंद।

0: अभी आप सुन रहे थे ग्रामीण भाइयों का कार्यक्रम ग्राम जगत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। अब होंगे भोजपुरी में समाचार, तत्पश्चात हिंदी में क्षेत्रीय समाचार।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट।
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details, log on to www.ddindia.com।
4: आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार, समाचारन के साथ हम सुकेत अस्थाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज देवरिया में 456 करोड़ रुपया से बेसी लागत वाला कई गो विकास परियोजना का लोकार्पण कैले नई धैले। ये मौका पर श्री योगी कहले कि डबल इंजन के सरकार जवन सुरक्षा आ विश्वास का वातावरण बनौले हवे, वही का नतीजा हो कि देवरिया, गोरखपुर आ कुशीनगर के सतह ही पूरा प्रदेश में निवेश आ रहा हो, उद्यम लाग रहा बा और हमरे प्रतिभावान नौजवानन के रोजगार मिल रहा हो।
5: देश ही नहीं दुनिया के अंदर सबसे युवा ताकत किसी के पास है तो हम गौरव के साथ कहते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के पास है। हमारी ये युवा शक्ति प्रतिभावान है, ऊर्जावान है। आज उस युवा की स्किलिंग के लिए हम कार्य कर रहे हैं, उस युवा को रोजगार देने

0: तक कार्य कर रहे हैं, 9 लाख नौजवानों को हमने नौकरी दी है, परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करते हुए 3 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार की सुविधा वहां उपलब्ध करवाई है।
1: कार्यक्रम के दौरान अयोध्या प्रकरण पर मुख्यमंत्री कहले कि अयोध्या भारत के सनातन आस्था का प्रतीक हो, हमरी आस्था से खेलवाड़ कैले का छूट केहू के नहीं दिया जाए।
0: ने कहा था SIT की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी, और आपने देखा होगा SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा।
1: यूपी पुलिस श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दान मामला में दर्ज पहला FIR में नामजद 8 लोगों के गिरफ्तार कई के उनसे पूछताछ कई रहल हवे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल SIT के सिफारिशन के बाद FIR दर्ज कैल गई रहे। ट्रस्ट का सदस्य कृष्ण मोहन के लिखित शिकायत पर श्री राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कैल गई रहे। FIR में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्र, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टीनू के सतही अवरियो अज्ञात आरोपित लोगिन का नाम शामिल हवे। लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत के अध्यक्षता वाला SIT मंगर के सरकार के आपन प्रारंभिक रिपोर्ट सौंप दियालस। एमे मामला में कड़ेर सिफारिश कैल गई रहे। एक बाद काली FIR दर्ज कैल गई और आज उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश कैल गई। स्वास्थ्य मंत्रालय दवाई के नियम में संशोधन का मसौदा जारी कर लिया है। एमे आयात कैल जाए वाला दवाई का बचल वैधता अवधि यानी सेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीना होखल जरूरी बाटे।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतवार के आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोग इनसे अपन विचार साझा करी हैं। ई मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां कड़ी हुई। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन का सज्जो चैनल, AIR न्यूज का वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर कैल जाए। सतही AIR न्यूज, DT न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर एक सोझे प्रसारण हुई। हिंदी प्रसारण के जुड़ते बाद क्षेत्रीय भाषाओं में कार्यक्रम का प्रसारण कैल जाए। आज आशुराए मुहर्रम हो। ई दिन पैगंबर मोहम्मद का नवासा हजरत इमाम हुसैन का शहादत का प्रतीक हो। हजरत इमाम हुसैन और उनकर साथी लोग कर्बला में सत्य अन्याय के रक्षा बदे अपन प्राण का आहुति दिया ले रहा लें। आज के दिन ने प्रदेश का राजधानी लखनऊ के सतही कई गो शहरन में शहीद लोगिन के याद में ताजिया निकाल जा रहा हो। एक लेके प्रदेश भर में यातायात के बारे में चेतावनी जारी कल गई हो और सुरक्षा के पुरहर इंतजाम कल गई हो। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के मौका पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नशा मुक्ति समाज के दिशा में हर मन के जागरूक कई के एगो बेहतर कल की ओर बढ़ने का आह्वान कर लिया हमें। एगो सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी कहलें कि नशा मनई समाज आदेश के विकास में बाधा हो। ई मनई का सोच स्वास्थ्य और भविष्य तीनों के कमजोर करेला। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।

आकाशवाणी गोरखपुर से क्षेत्रीय समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में 456 करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने जो सुरक्षा और विश्वास का वातावरण बनाया है, उसी का परिणाम है कि देवरिया, गोरखपुर और कुशीनगर सहित पूरे प्रदेश में निवेश आ रहा है, उद्यम लग रहे हैं और हमारे प्रतिभावान युवाओं

0: कार्यक्रम के दौरान अयोध्या प्रकरण पर मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है। हमारी आस्था से खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं दी जाएगी। यूपी पुलिस श्री राम जन्मभूमि,
1: हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी और आपने देखा होगा एसआईटी की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे। जन आस्था के साथ खिलवाड़ स्वीकार्य नहीं, सनातन आस्था के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा उसका भुक्तभोगी होगा।
0: यूपी पुलिस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र दान मामले में दर्ज पहली एफआईआर में नामजद 8 लोगों को गिरफ्तार करके उनसे पूछताछ कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल एसआईटी की सिफारिशों के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर श्री राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था। एफआईआर में अविनाश शुक्ल, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमा शंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री राम शंकर यादव उर्फ टीनू सहित अन्य अज्ञात आरोपितों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभागीय आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाली एसआईटी ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी, जिसमें मामले में कड़ी सिफारिशें की गईं। इसके बाद कल एफआईआर दर्ज की गई और आज उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर इसका सीधा प्रसारण भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज आशुराए मुहर्रम है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज के दिन प्रदेश की राजधानी लखनऊ सहित विभिन्न शहरों में शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। इसे लेकर प्रदेश भर में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की गई है और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज नशा मुक्त समाज की दिशा में हर व्यक्ति को जागरूक करके एक बेहतर कल की ओर बढ़ने का आह्वान किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री योगी ने कहा है कि नशा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र के विकास में बाधा है। ये व्यक्ति की सोच, स्वास्थ्य और भविष्य तीनों को कमजोर करता है। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये बारा। टोल कर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL Gold TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास।

0: और भरोसा, जानो फिर मानो।
1: पंचो जय जवान जय किसान। हाँ भैया देखो नारा लगल अपन बैठ के शुरू हुई।
2: हाँ भैया,
1: भैया किसान भाई लोग जौन बा खेती के साथे साथे कुछ लोग पशुपालन चाहे मुर्गी पालन चाहे बकरी पालन भी कैले बाड़ा भैया, तो इन भैया जे भी पंच भाई मुर्गी पालन कैले बा ओकरे खातिर तो जब से चूजा आ जाला तब से जौन बा काम शुरू हो
2: देख रेख करे की जरूरत है भैया।
1: भैया मुर्गी पालन में का काम जो पहले दिन से शुरू हो जाला, अगर एक दिन भी कहीं अगर ओके देख रेख में देरी भइल चाहे वजन कम हो गई चाहे अंडा कम हो गई तो भैया जौन बा नुकसान हो जाए। ए लिए जे भी पंच भाई मुर्गी पालन कैले बा उ जौन बा ओमन जौन काम बा जौन मुर्गिन के देखभाल करे बा ओमन तनिको लापरवाही नहीं बरतें। भैया पहले दिन से ही मान लें कि जौन बा अगर पहले जब चूजा आवे बा ओकरे पहले जौन बा जौन सेट बा जहाँ ओके रखे बा मुर्गी के ओकर एक बिल्कुल साफ सफाई कर लें, फर्श चाहे चादर चाहे जौन बा वो सब साफ कर दें फिनाइल से और ओके धूप में सुखा दें ताकि वहाँ तन कोनो कीटाणु न रहे। ओकरे साथ साथ भैया जौन दीवाल बा वहाँ जौन बा बुझा चूना लेके 100 ग्राम नमक डाल के या 10 लीटर पानी में वो दीवार पर लगा दें ताकि एक कीटाणु न बचा और सब कीटाणु मर जाए मर जाए। भैया ओकरे साथे भैया देखी ब्रूडिंग रिंग जौन बा 100 चूजा खातिर 5 फीट गोल घेरा बनावे चाहिए। ये बीच में भैया 200 वाट का बल्ब लगा देव चाहिए ताकि तापमान वहाँ 35 डिग्री रहे। भैया पानी के बर्तन भी जौन बा वही हिसाब से रखे पड़ा। 100 चूजा बाँ तो 4 ट्रे दाना और 4 वाटर जौन पानी रखे खातिर बर्तन भैया जरूर रखे चाहिए। ओकरे साथे साथे दवाई स्टॉक में रखे चाहिए ताकि अगर कहीं कोनो चूजा के कुछ हो गई दिक्कत भइल तो ओके जौन बा तुरंत
2: इलाज हो सके।
1: अब भैया अगर कोनो भी एक भी अगर बच्चा मर गए तो ओके एकदम लेट ना करे चाहिए, तुरंत वही दिन ओके बाहर कर दे चाहिए। कैंस के अगर ओकर इन्फेक्शन फैल गई तो जितना वहाँ जुकन आप बच्चा लिया पल्ले बाणी सबके खतरा हो सकला।
2: ये खतरा की बात बतौली है तो जे भी पंच भाई अपने मुर्गी फार्म में रखले बाणी चूजान के यानी कि उनके विकास धीरे धीरे होता तो समय समय पर उनका भी टीकाकरण भी जरूरी होला। तमाम ऐसी बीमारी होने जैसे मुर्गी के प्रभावित करने जौने में रानी खेत गम्बोरो लासोटा जैसे बीमारी होने जौने समय पर अगर टीकाकरण होता तो अपने मुर्गी फार्म के में जौन भी चूजा बाड़े उनके बचावल जा सकेला। साथ ही साथ कोनो भी ऐसा प्रभावित होता अपन मुर्गी या फिर चूजा की बीमारी देखे मिला तो उनके तुरंत मुर्गी फार्म से बाहर करें ताकि एक सीजन बाद पूरा मुर्गी फार्म प्रभावित ना होके पा। तो कहले का मतलब यही बा कि जो ये भी किसान भाई अगर मुर्गी फार्म का पालन कैले वाणी उनके समय से देख रेख करी ताकि अपन बढ़िया लाभ लिया जा सके। भैया बातचीत कैले जाए लेकिन लगल सुनल जाए भेंटवार्ता खरीफ में प्याज प्रजातियों की नर्सरी और जानकारी देते वहीं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह जी उनसे बतियात भैया विनय कुमार पंच भाई सुनी जानकारी लाभ उठाई।
3: किसान भाई आपन देश पूरे दुनिया से एक टुकड़ा काट के बनावल गेल बा। कहला का मतलब ही कि पूरी दुनिया में जौना जौना तरह का जलवायु बा साल भर मौसम का उतार चढ़ाव बा वह पूरा नमूना अपने देश में उपलब्ध बा। इहे कारण है कि भारत की विविधता में एकता का परिकल्पना कैल गेल बा, चाहे वो मनुष्य होखे पेड़ पौधे होखे आ चाहे हमारे खाद्यान्न उत्पादित करे वाली फसल। आज हमन का बात कही जाए कि खरीफ में प्याज के खेती कैला से का लाभ बा, कैसन कैसन अवस्था हो जौना में खरीफ में प्याज उगावल जा सकेला, एकरे खातिर फोन लाइन से जुड़ल है डॉक्टर वीरेंद्र सिंह। आप है उप निदेशक उद्यान औद्यानिक शोध एवं प्रशिक्षण केंद्र बस्ती। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका हमारे यह कार्यक्रम में स्वागत बा। खरीफ प्याज के खेती का मंशा काहे आप लोग करेली बार बार?
4: किसान भाइयों को नमस्कार। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि प्याज एक नकदी फसल है, अच्छा मूल्य इसका मिलता है अन्य फसलों की अपेक्षा और एक निश्चित समय में ज्यादातर पूरे देश में अभी रबी के मौसम का ही प्याज होता रहा है। तो उसके बाद जब कभी प्याज एकदम से बाहर जब निर्यात होने लगता है विदेशों में खोल दिया जाता है तो अपने देश में प्याज की मात्रा कम हो जाती है, मांग की अपेक्षा सप्लाई कम हो जाती है और परिणाम ये होता है कि अचानक मूल्य बढ़ जाते हैं। इसको देखते हुए हम लोग ये देखते हैं कि अच्छा इसमें संभावनाएं हैं कि अगर हम खरीफ में प्याज पैदा करें और खास करके उत्तर प्रदेश में तो हमारे यहाँ के किसानों को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है। अब जो खरीफ का सीजन है जो कि बरसात का सीजन है

0: इसमें पानी कभी कभी ज्यादा बरसात होने की संभावना रहती है, अगर कम होती है तो कोई दिक्कत नहीं, तब आसानी से हो सकता है जल भराव ना हो, लेकिन कभी कभी ज्यादा हो जाती है तो उस समय थोड़ा सा समस्या आने की वो रहती है चांस। तो ऐसी कंडीशन में जब हम खरीफ प्याज का चयन करने जा रहे हैं तो हमको सबसे बढ़िया चीज है कि हम खेत का चयन करें। खेत ऐसा होना चाहिए जो ढालू हो, जिसमें पानी भरने की संभावना कतई लगने की संभावना ना हो, पानी तो गिरेगा ही, बरसात रोक नहीं सकते, लेकिन पानी गिरे और घंटे आधे घंटे में खेत से बाहर हो जाए, ऐसी जल निकासी की व्यवस्था हो, दोमट हल्की बलुआर मिट्टी हो और अच्छा कार्बनिक मैटर हो, उसमें प्याज की खेती, खरीफ प्याज की खेती आसानी से की जा सकती है। अब जब हम खरीफ प्याज की बात करेंगे तो सबसे पहले करते हैं कि भाई प्रजातियां कौन सी होनी चाहिए, तो इसमें किसान भाई नोट कर लें, जो बहुत अच्छी प्रजातियां हैं खरीफ में अच्छा उत्पादन दे सकती हैं, उसमें सबसे अच्छी प्रजाति है एग्री फाउंड डार्क रेड, एक प्रजाति है एग्री फाउंड डार्क रेड। दूसरी प्रजाति है जो उसको लाइन 883 कहते हैं, लाइन 883, और चौथी प्रजाति है भीमा रेड, एक और है भीमा सुपर, इसके अलावा एक है नेफाड 53, नेफाड 53। ये चार पांच प्रजातियां हैं जिनको हम खरीफ के सीजन में इनकी अच्छी तरह से खेती कर सकते हैं। अब इसमें और क्या खास चीज खरीफ प्याज करने के लिए ध्यान रखने की बात है, सबसे बड़ी चीज है कि हम पौध तैयार करना, पौध अगर अच्छी तैयार कर ले गए किसान भाई खरीफ में, सही समय से और सुरक्षित पौध तैयार कर ले गए तो समझ लीजिए आधी सफलता मिल गई। तो आधी सफलता मिलने के लिए क्या करना है, खरीफ की जो क्यारी हम तैयार करेंगे, जो पौध तैयार करेंगे वो थोड़ी ऊंची उठी हुई करा करें करा गई, मतलब 8 से 10 सेंटीमीटर ऊंची क्यारी होनी चाहिए, बेड होनी चाहिए, चौड़ाई बीज की जो सैया है वो 1 से 1.5 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लंबाई आप चाहे जितनी कर लो आवश्यकता अनुसार, लेकिन चौड़ाई 1 से 1.5 मीटर, कारण कि उसमें आराम से बैठ करके इधर से उधर से उसमें जो भी खरपतवार निकालना है, दवा डालनी है, निराई गुड़ाई करनी है, पौधे की देखभाल करनी है, कर सकते हैं। नंबर दो कि इसमें ये भी क्यारी भी हमारी ऊंचाई पर होनी चाहिए, जहां पानी का साधन है आपका ट्यूबवेल के पास वहीं रखें ताकि आवश्यकता अनुसार पानी भी दे सकें। और दो क्यारियां, जब दो क्यारी बनाते हैं सीड बेड की, तो उसमें कम से कम 30 सेंटीमीटर का फासला बीच में जरूर रखें, ताकि पानी जो बरसे क्यारी से और नीचे बह के नाली में अंदर आ जाए और निकल के खेत से बाहर हो जाए। जब हम क्यारी का चयन कर लेंगे और उसकी तैयारी कर लेंगे तो तैयारी करने के लिए जरूरी है कि क्यारी को गुड़ाई उड़ाई करके और उसपे पॉलीथीन से ढक दें, मोटी काली पॉलीथीन से ढक देंगे तो उस क्यारी का तापमान बढ़ जाएगा, तापमान बढ़ने के कारण क्या होगा, जो मिट्टी में भूमि से होने वाले व्याधियां हैं या कीड़े मकोड़े अंडे बच्चे हैं जो लगते हैं पौधों को नुकसान करते हैं आगे चल के, वो ज्यादा तापमान होने के कारण मर जाएंगे और जो बीज सैया है वो हमारी अच्छी सुरक्षित तैयार हो जाएगी। तो जब बीज सैया अच्छी तैयार हो गई तो इसके बाद क्या करते हैं कि अब हमको बीज की बुआई करनी है, तो बीज की बुआई हमेशा ध्यान रखें किसान भाई, बीज बोने के पहले बीज शोधन आवश्यक है, क्योंकि बरसात का सीजन है तो बीज शोधन आवश्यक है। बीज शोधन किससे कर सकते हैं, उसके लिए चार पांच दवाइयां हैं, जैसे थीरम सभी किसान भाई जानते हैं, 2 ग्राम दवा 1 किलो बीज के लिए चाहिए, या मैंकोजेब कार्बंडाजिम का जो मिश्रण आता है उसको 1 ग्राम दवा 1 किलो बीज के लिए, इससे सबसे अच्छा है ट्राइकोडर्मा जो बहुत प्रचलित है किसान भाइयों में, ट्राइकोडर्मा अगर मिल जाता है सही ताजा बना हुआ तो 4 ग्राम 1 किलो बीज के लिए, इससे बीज को शोधन करने के बाद ही बुआई करनी चाहिए, और बुआई के पहले बीज को हम 12 घंटे पानी में भिगो देना चाहिए, ताकि भिगोने के बाद जमाव उसमें बहुत अच्छा आता है, जमाव अच्छा होगा तो पौध हमारी अच्छी चलेगी।
1: नर्सरी बन गई, बेहन पर गई यानी बिजाई हो गई, तो एकरे बचाव खातिर कि एकरे अंदर ज्यादा धूप पानी या बरसात में ज्यादा कीड़ा मकोड़ा होके न जाओ, तो कैसे एक सुरक्षित नर्सरी करे के चाहिए?
0: खुले मौसम में अगर आप कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर जो किसान सक्षम है तो लो टनल एक तकनीकी है, बहुत सस्ती होती है, लो टनल पाली हाउस कहलाता है, छोटा सा स्ट्रक्चर सरिया से मोड़ करके बना देते हैं, तिकोना टाइप का ऊपर गोलाकार बना दीजिए और उसके बाद उसमें एक जाली डाल दीजिए, हल्की पतली सी नेट जो मच्छरदानी का कपड़ा आता है, ताकि उसके अंदर कीड़े मकोड़े ना जा सके, और इसके बाद उसमें ज्यादा पानी ना जाए तो एक पन्नी से उसको ढक दीजिए, तो जब कभी बरसात हो तो तुरंत उसमें पन्नी आप चढ़ा दीजिए, देखभाल करते रहिए, मौसम खराब हो रहा है तो पानी अनावश्यक रूप से ज्यादा पानी नर्सरी में नहीं जाएगा, पौध सुरक्षित रहेगी।

0: इस समय तापमान बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए लगातार पन्नी से ढक के नर्सरी को ना रखें। हाँ, जाली से जरूर हमेशा ढकी हुई रखें ताकि कीड़े मकोड़े उसमें ना जाने पाए। क्यारी में बीज की बुआई आप हमेशा लाइन में करिए, और लाइन में करने के बाद इस पे सड़ी हुई, खूब सड़ी हुई गोबर की खाद, केचुए की खाद मिल जाए तो और अच्छी है, उसकी एक परत नर्सरी पे डाल देनी चाहिए ताकि उससे जो है बहुत ज्यादा धूप सीधे उसमें ना लगे, उससे ढक करके और तुरंत हजारे से हल्की सी सिंचाई कर देनी चाहिए। जब पौध निकलनी शुरू हो जाए तो उसको देखते रहना चाहिए, उसमें गलन रोग कभी कभी लगने की संभावना रहती है, अगर पानी ज्यादा लग गया तो उससे भी बचाव करके हमको फफूंदी नाशक का प्रयोग करना है। आमतौर पर 30-40 दिन में हमारी सुरक्षित पौध तैयार हो जाती है। बीज में जब 15 दिन की पौध हमारी हो जाए तो उसमें एनपीके 19:19 का एक मिश्रण आता है, उसका छिड़काव थोड़ा सा कर देना चाहिए ताकि पौध हमारी और सुरक्षित और बढ़िया होकर के चले। इसके साथ ही प्याज में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है सल्फर, क्योंकि सल्फर जो इसका कंटेंट होता है, चरपरापन होता है प्याज का, वो सल्फर की ही वजह से आता है, इसलिए सल्फर का भी इसमें नियमित रूप से प्रयोग करना चाहिए।
1: नर्सरी कब डालें और कितना दिन बाद रोपाई करे के चाहिए?
0: नर्सरी डालने का अंतिम समय चल रहा है, इसलिए जितना जल्दी हो सके खेत की तैयारी करके तुरंत डाल दे, और 30 से 40 दिन लगेगा पौध तैयार होने में।
1: डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, आप इतना अच्छा जानकारी दिली कि खरीफ के मौसम में उगावे वाली प्याज का प्रजाति कौन है और ओकर बढ़िया नर्सरी कैसे डाले के चाहिए, एकरे खातिर आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
2: हाँ पंच भाई, बड़ा निमन जानकारी मिलल कि खरीफ में प्याज प्रजातियों की नर्सरी और पर जानकारी देते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सिंह जी, इनसे बतियात भैया विनय कुमार। तो पंच भाई, डॉक्टर साहब के दिया जाए धन्यवाद, लेकिन लगल है एक लोकगीत के साथ।

0: हाँ भैया, देखो मन मन साइन भइल और गीत सुनल गइल। भैया देखी, हमन चर्चा करत रही हैं कि मुर्गी पालन के कैसे मुर्गी पालन कइल जा और ओमन कौन कौन जरूरी काम बा जौने से अपने मुर्गियन के बचा के और अधिक से अधिक लाभ उठावल जाए। भैया तो भैया देखिए, आइए बातचीत सुनल जा, मुर्गियों के लिए आहार कैसे बनाएं, ये पर भैया जानकारी देते हैं डॉक्टर एस एन लाल और उनसे बतियावत हों देवता प्रसाद पांडे। तो आए ये जानकारी लें।
1: नमस्कार किसान भाई, आप लोग खेती के साथ साथ कुछ ऐसा भी व्यवसाय अपनौले हैं जौने से कि आमदनी का सेगा तैयार होला, और विविधीकरण के यह एक मकसद भी है कि खेती के साथ साथ कुछ ऐसा काम रोजी रोजगार या व्यवसाय कई जा जौने से कि आमदनी तैयार होत रहे। मुर्गी पालन भी यही तरह के व्यवसाय है जौने के आप लोग अपनाइला और अपनौले होवें। मुर्गी पालन में आहार के का व्यवस्था होक चाही, उनके कौन कौन भोजन सामग्री है जौन मिले के चाही, आज अपने कार्यक्रम के आकर्षण है। और यह बारे में जानकारी दे खातिर अपने बीच डॉक्टर यशियन लाल जी आयल हैं। आप बस्ती में वरिष्ठ वैज्ञानिक पशुपालन कार्यरत हैं, बड़ा सहयोग बा कि आज अपने बीच श्रीवास्तव जी आयल हैं और आपके जानकारी दी हैं। सबसे पहले हम आप लोगों की तरफ से स्वागत करब और एक साथे साथे सवाल करब कि डॉक्टर साहब, मुर्गी के लिए अपने यहाँ कौन कौन ऐसा राशन बाँटे और उनका का प्रकार बा, एकरे बारे में तनि अपने मुर्गी पाली भाई लोगन के बताओ जहाँ ताकि ओकर व्यवस्था हो कह सकें।
2: मुर्गियों का आहार जब भी हम गणना करते हैं इस बात का ध्यान रखते हैं किस प्रकार की हम मुर्गी पाल रहे हैं। गांव में अक्सर देखा गया है कि हम मांस पालन के लिए मुर्गी पालते हैं जिसको हम कि ब्रॉयलर पालन कहते हैं, और दूसरी वो मुर्गियां हमारी होती हैं जो कि अंडा देती हैं जिसको हम लेयर उत्पादन कहते हैं।
1: अच्छा।
2: तो दोनों के लिए अलग अलग आहार की आवश्यकता पड़ती है। जैसे हमारे किसान भाई देखते हैं मांस वाले मुर्गे के लिए ब्रॉयलर के लिए कि एक दिन का चूजा लाते हैं जिसका वजन लगभग 41 ग्राम होता है।
1: अच्छा।
2: और 35-36 दिन होते होते वो 2 किलोग्राम तक हो जाती है,
1: माने मांस बेचे लायक हो जाना
2: वो बहुत बढ़िया हो जाता है। जब सोचिए कि 41 ग्राम का चूजा एक दिन का रहता है और 21 दिन होते होते उसका वजन 1 किलोग्राम पहुंच जाता है, तो जब इतनी तेजी से उसका वजन पहुंचता है तो निश्चित है कि हमको बढ़िया किस्म का आहार भी खिलाना चाहिए, संतुलित आहार खिलाना चाहिए जो शरीर पर ज्यादा से ज्यादा मांस को लगाए।
1: यानी कि वो राशन भी जो है वही तरीके से जो उनके बढ़ोतरी में काफी लाभकारी हो।
2: इस प्रकार से हम लोग सभी वैज्ञानिक भाषा में इसको इस रूप में समझते हैं कि जो भी हम मांस उत्पादन के लिए दाना मिश्रण बना रहे हैं उसमें प्रोटीन का प्रतिशत लगभग 23% हो।
1: कौन कौन तत्व ऐसा है जो उन्हें कि मिला के बनाए,
2: और इसी के साथ ही साथ ऊर्जा उसको 3200 किलो कैलोरी पर दिन मिले। जब 23% उसमें प्रोटीन हो,

0: सौ किलो कैलोरी एनर्जी प्रतिदिन मिले, तो उसके लिए हम लोग एक ऐसा आहार बनाते हैं जिसमें ये चीज़ें मिल जाती हैं। जैसे मांस वाले मुर्गे के लिए हम दाना मिश्रण बनाते हैं, तो मक्का लेते हैं, लगभग 100 किलोग्राम बनाना है तो 42.6 किलोग्राम। राइस पालिस भी हम इसमें डालते हैं, इसको भी मात्रा 10 किलोग्राम रखते हैं।
1: चावल के कणा जो
0: हाँ राइस पालिस होता है। अच्छा। और मूंगफली की खली, अच्छा, उसमें 15 किलो 200 ग्राम रखते हैं। सूरजमुखी की खली भी प्रोटीन का बहुत बढ़िया स्रोत है, इसकी भी मात्रा 15.2 ग्राम 200 ग्राम रखते हैं। फिश मील, मछली का चूरा जिसको बोलते हैं, ये भी प्रोटीन का बहुत बढ़िया स्रोत होता है, इसकी मात्रा 6 किलोग्राम रखते हैं। मीट मील होता है जो खून से उसके मांस से निकलता है, उसकी मात्रा 6 किलोग्राम रखते हैं। पशुजनित इसमें चर्बी भी मिलाते हैं 2.8 किलोग्राम। हड्डी का चूरा भी मिलाते हैं जिसको बोन मील कहते हैं, वो आधा किलोग्राम। लाइम स्टोन पत्थर का होता है वो, उसकी मात्रा भी 1 किलोग्राम रखते हैं। नमक इसमें बहुत कम मात्रा में
1: रखता है, तो मांस वाली मुर्गी पतन भाई।
0: नमक में मात्रा इसमें 1 क्विंटल में 200 ग्राम मिलाते हैं। और मिनरल मिक्सचर और विटामिन जिसको कहते हैं, उसकी भी मात्रा 1 क्विंटल में 100 ग्राम मिलाते हैं। इस प्रकार से ये राशन जो स्टार्ट होता है वो हमारा ब्रॉयलर राशन स्टार्ट होता है, मांस वाली के लिए। अंडा देने वाली है जिसको हम लोग लेयर कहते हैं, क्योंकि लेयर मुर्गियां वो मुर्गियां होती है जो हमारे किसान भाई लाकर पालते हैं, लगभग 5-6 महीने तक पालते हैं, उसके बाद फिर वो अंडा देना शुरू करती हैं। पूरे वर्ष भर अंडा देती हैं, लगभग 270 अंडे एक वर्ष में देती हैं। तो जो अंडा देने वाली मुर्गियां हैं उसमें प्रोटीन की मात्रा थोड़ा कम रखते हैं, लगभग 18-20% प्रोटीन रखते हैं, और ऊर्जा की मात्रा 2900 किलो कैलोरी प्रतिदिन मिलनी चाहिए। इसके लिए हम जो राशन बनाते हैं, गणना करते हैं, उसमें मक्का की मात्रा जो रखते हैं 100 किलोग्राम अगर हमको आहार बनाना है तो 35 किलोग्राम, राइस पालिस जिसको कहते हैं वो 30 किलोग्राम, मूंगफली की खली 10 किलोग्राम, सूरजमुखी की खली भी इसमें मिलाते हैं हम, लगभग 9 किलोग्राम मिलाते हैं, और गेहूं का चोकर इसमें मिलाते हैं 3.3 किलोग्राम, सरसों खली मिलाते हैं 5 किलोग्राम, और इसमें हड्डी का चूरा जो मिलाते हैं बोन मील जिसको बोलते हैं वो 1 किलो 600 ग्राम मिलाते हैं। लाइम स्टोन पत्थर की बहुत आवश्यकता पड़ती है इसमें, क्योंकि अंडा का उत्पादन इसमें होता है, उसकी मात्रा 5.5 किलोग्राम रखते हैं। नमक आधा किलोग्राम रखते हैं, और मिनरल मिक्सचर और विटामिन जो है वो लगभग इसमें हम 100 ग्राम मिलाते हैं।
1: डॉक्टर साहब निरीक्षण की आप बतौनी है पोषक तत्व के, हम समझते हैं कि जो आप मांस वाली मुर्गी के देला वह अंडा दे वाली ही मुर्गी के,
0: लेकिन मात्रा कम कर दी जाए,
1: मात्रा होकर कम कर।
0: हाँ, इसी के साथ ही साथ ये भी जानना जरूरी है, हाँ, हमारे किसान भाई चूंकि आकाशवाणी के माध्यम से कार्यक्रम को सुनते रहते हैं नियमित, कि आर्थिक दृष्टि से उनको लाभप्रद हो। अच्छा। कि उनको ये पता होना चाहिए कि कितने सप्ताह पर कितना दाना खाए और कितना वजन हो जाए।
1: हाँ, तो मांस वाली जो मुर्गी के लिए आप पोषक तत्व तैयार करो,
0: जी जी,
1: हमें मात्रा तो आप बता देनी कैसे होके तैयार,
0: हाँ, कैसे तैयार किया जाए और कैसे उसको वजन किया जाए। ये जो भी दाने मिश्रण है इसको खंडा के रूप में बनाते हैं, मोटा सा दाना बनाते हैं, और शुरू में जो स्टार्टर राशन बनाते हैं, शुरुआत वाला राशन जो होता है उसको बारीक पीस लेते हैं। जब भी चूजे आते हैं, आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि चूजों के लिए अखबार पहले बिछा देते हैं, अखबार के ऊपर मैस पतला सा दाना रहता है उसको हम बिखेर देते हैं,
1: आसानी से
0: उसको खा लें, पानी पी लें, और जैसे जैसे वो बड़े हो जाते हैं दाना की जो है बारीक नख होगा थोड़ा खंडा के रूप में करते हैं। लेकिन ये चीज़ जो हम आपको बताने जा रहे थे कि एक सप्ताह की उम्र होते होते चूजों का वजन लगभग 125 ग्राम हो जाना चाहिए, और पहले सप्ताह में वो 115 ग्राम दाना खाएंगे। अच्छा। दूसरा सप्ताह जैसे होता है तो उसमें औसत चूजे का वजन 305 ग्राम हो जाता है, और दूसरे सप्ताह में 335 ग्राम दाना खाएगी, कुल दाना मिलाकर के 450 ग्राम दो हफ्ते में खा लेगी। अच्छा। तीसरा हफ्ता जब होगा तो उसका वजन 610 ग्राम हो जाएगा एक चूजे पक्षी का। अच्छा। और तीसरे सप्ताह में 560 ग्राम दाना खाएगी, तीन सप्ताह होते होते कुल मिलाकर के 1 किलो 10 ग्राम तक दाना वो खा लेगी। चौथा सप्ताह जब होता है तो लगभग उनका औसत वजन जो है 1 किलो 40 ग्राम तक जो है पहुंच जाता है, और इस समय चौथे सप्ताह में 800 ग्राम दाना जो है वो खाएगी, कुल मिलाकर के लगभग 1 किलो 810 ग्राम दाना चार सप्ताह होते होते वो खा लेगी। पाँचवें सप्ताह में उनका वजन 1 किलो 400 ग्राम पहुंच जाएगा। अच्छा। और उस समय वो 910 ग्राम दाना जो है चौथे सप्ताह में खाएगी, कुल मिलाकर के 2 किलो 720 ग्राम दाना पाँच सप्ताह में खा लेगी। जब छठवां सप्ताह होता है ऐसे समय में औसत उनका वजन 1 किलो 800 से 2 किलोग्राम तक पहुंच जाता है, और छठवें सप्ताह में छठवें वाले सप्ताह में 1 किलो 50 ग्राम दाना खाएगी, यानी छः सप्ताह होते हुए कुल मिलाकर के टोटल दाना जो है 3 किलो 700 ग्राम खाएगी।
1: और अंडा देने वाली,
0: अंडा देने वाली मुर्गियां जो होती हैं ये लगभग, जब क्योंकि इनको हमने आपसे बताया कि शुरू में इनको स्टार्टर राशन देते हैं, जब इनके पंख वगैरह निकल आते हैं 20-25 दिन बाद इसको हम लगभग ग्रोवर राशन देते हैं, जिससे

0: की बढ़वार हो जाए और पांचवें सप्ताह होते होते ये जब अंडा 5 महीने पर अंडा देना शुरू करेंगी तब उसको हम ले राशन देते हैं। ले राशन जब भी हम देते हैं उस समय मुर्गियों का वजन लगभग 1.5 किलो तक पहुंच जाता है। ऐसे समय में प्रतिदिन प्रति मुर्गी लगभग जो है वो 150 ग्राम तक दाना खा लेती है रोज।
1: मान लें कोनो कारणवश पोषक तत्व के उनके अंदर कमी हो जाए या उनके न मिल पावत हो तो ऐसन मुर्गी चाहे वो अंडा दे वाली हो या मांस दे वाली हो कौन एक तरह के बीमारी से वो शिकार हो जाए।
0: हाँ, जैसे हमने बताया कि प्रोटीन बहुत अहम चीज़ होती है। प्रोटीन का कार्य है शरीर में अमीनो अम्ल को बनाता है, आवश्यक होता है शारीरिक विकास के लिए होता है, अंडा उत्पादन के लिए आवश्यक है, मांस उत्पादन की आवश्यकता है। प्रोटीन की संरचना से अमीनो अम्ल बनता है जिसमें 11 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। यदि प्रोटीन युक्त राशन हम नहीं देंगे चाहे मूँगफली की खली से हो, चाहे सूरजमुखी की खली से हो, चाहे फिश मील की कमी से हो, अन्य चीज़ें जो हम देते हैं उसकी कमी जब होने लगे तो हमारे किसान भाई बड़े आसानी से पहचान सकते हैं प्रोटीन की कमी हो रही है। उसमें होता क्या है कि भार में कमी हो जाएगी।
1: अच्छा।
0: बढ़वार अच्छी नहीं होगी, पंखों का ठीक से विकास नहीं हो पाएगा, भूख कम लगेगी है, हाँ, और पंख एक दूसरे का नोचते भी हैं।
1: अच्छा।
0: प्रोटीन की कमी से और चोच मार करके घायल कर देते हैं और अंडा उत्पादन तो बिल्कुल जो है गिर सा जाता है।
1: अच्छा।
0: इसके लिए प्रोटीन का स्रोत जो भी दाने में बनाया गया है वो जहाँ से भी दाना लेते हैं, स्वयं दाना बनाते हैं या बाज़ार से दाना लेते हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि जो भी बोरी वगैरह रैपर वगैरह खरीद रहे हैं उस पर ये चीज़ें निश्चित रूप से होनी चाहिए। इसी प्रकार से ऊर्जा की बात है, ऊर्जा बहुत जरूरी होता है जैसे के लिए जो कि कार्बोहाइड्रेट या वसा कहते हैं, जो कि हमारे दाने में मक्का मिलाया जाता है, गेहूं है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, चोकर है, इत्यादि जो भी हम मिलाते हैं या खाने वाला तेल है इससे उनको ऊर्जा मिलती है, इसका भी समावेश जरूरी है। यदि ऊर्जा की कमी हो जाती है तो उनके शारीरिक ताकत में कमी आ जाएगी, शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन ठीक रूप से नहीं होता और शरीर का तापमान बनाए रखने में कमी हो जाती है।
1: आप बाजार का नाम ले लिया कि बाजार से भी लोग खरीद लें, कभी कभी देखा जाला कि एक बार ले आके खरीद ले लें और कह लें कि जौन है एक रोजाना दहल जाइए इनमें से, तो का वो जौन पोषक तत्व का जौन सामान बा तत्व उ का हमेशा सुरक्षित रह सकला सही रह सकला या कि रोजाना बदले के चाहिए उनके।
0: हाँ, ये आपका समय बहुत ही बढ़िया है, हमारे किसानों की मनचाही बात आपने पूछ ली है, क्योंकि हम सभी लोग वैज्ञानिक लोग इस बात को जानते हैं कि जब भी हम दाना खरीद के लाते हैं तो उसको नमी से दूर रखना चाहिए, स्टोर ज़्यादा समय तक नहीं करना चाहिए, दाना ताज़ा होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, नमी उसमें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और दाना लाएँ तो लगभग 10-15 दिन के अंदर उसको अवश्य ही खिला दें, क्योंकि ज़्यादा समय तक अगर दाना हम स्टोर करके रखते हैं नमी शोषित कर लेती है तो उसमें अफ्लाटॉक्सिन उत्पन्न हो जाती है, जहर नाम की है, जो कि दाने के माध्यम से लीवर को डैमेज कर देती है पक्षियों के, मुर्गियों के। जब लीवर डैमेज हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तो सारी की सारी उपाचयी क्रियाएं जो बिल्कुल वो बेकार जाएगी।
2: हाँ भैया, बातचीत सुनल गई मुर्गियों के लिए आहार कैसे बनाएं, जानकारी देते डॉक्टर एस एन लाल और इनसे बतौले देवता प्रसाद पांडे।
3: हाँ भैया,
2: देखा जौन बा अब ये बातचीत के बाद अपने स्टूडियो के जौन घड़ी बा इशारा करतिया कि अपने बैठकी के समय पूरा होता तो चल जा। पंचो जय जवान जय किसान।

किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम खेती बारी। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना, जिसमें पहला नाम है सपना कुमारी, पिता का नाम श्री सुगंध वर्मा। सपना की उम्र 17 वर्ष है, कद लगभग 5 फुट, रंग गोरा। सपना ग्राम इंदरपुर पोस्ट इसारी सलेमपुर स्थित अपने घर से करीब रात के लगभग 2 बजे से लापता है। इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर सूचित करें। नंबर नोट करें, 7309276020।

इसी क्रम में अगला नाम है कुमारी काजल पासवान, पिता का नाम सनोज पासवान। काजल ग्राम शोभा छपरा, पोस्ट शोभा छपरा, थाना बैरिया, जनपद बलिया की मूल निवासी हैं। इनका हुलिया इस प्रकार है, रंगोरा, कद 5 फीट, उम्र 16 वर्ष। ये 20 अप्रैल 2025 से लापता हैं। इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर सूचित करें। नंबर नोट करें, 7408125415। इसी क्रम में अगला नाम है खुशी, पिता का नाम नंद जी। खुशी की उम्र 16 वर्ष है। खुशी करमर की रहने वाली हैं। ये 23 मई 2026 से लापता हैं। इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर सूचित करें। नंबर नोट करें, 9654237778। पूजा चौरसिया, पति का नाम संतोष चौरसिया। पूजा ग्राम परसिया चोगड़ा, पोस्ट सावन, जिला बलिया की रहने वाली हैं। पूजा की उम्र 32 वर्ष है। ये 27 मई 2026 को शाम 4 बजे से लापता हैं। इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर कृपया इस नंबर पर सूचित करें। नंबर नोट करें, 9451402997। इसी क्रम में अगला नाम है किरण, पिता का नाम राजकुमार राम। किरण की उम्र 21 वर्ष है। ये मानसिक रोगी हैं। किरण ग्राम पोस्ट किशोर चेतन सिकंदरपुर बलिया की रहने वाली हैं। ये 2 मई 2026 को सुबह 10 बजे से लापता हैं। इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना मिलने पर थाना प्रभारी सिकंदरपुर पर सूचित करें। नंबर नोट करें, 9454403008। इसी क्रम में अगला नाम है अनूप कुमार, पिता का नाम श्री रामजी गुप्ता। अनूप भृगु आश्रम प्राइमरी स्कूल के सामने बलिया के रहने वाले हैं। इनकी उम्र 43 वर्ष है। लंबाई 5 फीट 7 इंच, रंग सांवला। ये 24 अप्रैल 2026 दिन शुक्रवार की दोपहर 2:30 से लापता हैं। जिस किसी को इनके संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना प्राप्त हो कृपया इस नंबर पर सूचित करें। नंबर नोट करें, 7905693427। श्रोताओं, गुमशुदा व्यक्तियों के संबंध में सूचना समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है लोक गीतों का कार्यक्रम लोकधारा, जिसमें आज के कलाकार हैं श्री चंद्रभान व साथी।

0: है उससे तो सस्ता ही है।
1: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िए मारा। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।

0: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
1: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
2: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
3: लीजर रिसोर्ट बहराइच,
2: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
3: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
2: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
3: UPSRTC देवरिया,
2: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा।
3: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
2: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
3: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
2: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
3: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
2: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।
4: लोकगीतों के कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं चंद्रभान व साथियों को।

0: ये बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फेरिए माना, आम सरिये के मुकाबले लगभग 20% ज्यादा ताकत।
3: RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास
4: और भरोसा, जानो फिर मानो।
5: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
6: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
7: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे TV चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
7: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
6: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
7: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
6: For details, log on to www.ddindia.com।
8: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
9: लीजर रिसॉर्ट बहराइच,
8: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
9: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
8: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
9: UPSRTC देवरिया,
8: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा।
9: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
8: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
9: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
8: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
9: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
8: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।
10: लोकगीतों के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे श्री चंद्रभान और साथियों को। इसी के साथ लोकगीतों का कार्यक्रम लोकधारा अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम देश हमार।
11: हमारे जीवन में वृक्ष के इतना महत्व बा

कि वृक्ष के बिना जीवन कल्पना कइल रेगिस्तान में पानी के तलाश कइल बा। जीवनी शक्ति प्रदान कइले क जवन ऑक्सीजन हमके पेड़न से ही मिल सकेला। अगर ऑक्सीजन न होके तो सगरो मनई औरी जीव जंतु घुट घुट के मर जाए। अपने प्रकृति पर अगर आपन कमान बनावे के बा औरी जीवन शक्ति के समुचित तरीके से सुरक्षित करे के बा तो अपने धरती संपदा के रखवाली हर सूरत में करे के पड़ी। वृक्ष हमारे स्वस्थ जीवन के खातिर अत्यंत आवश्यक बाटे। बाबा आजम काल से लेके आज तक के परिवेश तक मनई जीवन और इस समय जीव जगत के साथ वृक्षन के घनिष्ठ संघर्ष के कहानी कही रहल बा। वृक्ष हमारे प्रकृति द्वारा मानव जीवन खातिर एक निम्न उपहार हवे। हमारे जीवन के तीन मूलभूत आवश्यकतन वर्तमान वस्त्र और आवास की पूर्ति वनस्पति से ही होला। पेड़ अपने पूरे वातावरण के स्वच्छ और साफ रखले का काम करेला। वृक्षन से निकले वाला शुद्ध हवा पर्यावरण प्रदूषण के बचावेला। शुद्ध वातावरण मनई के स्वस्थ रखेला और ये समय में मनई के सबसे बड़हन संपत्ति ओकर सेहत होला। पेड़ मानव समुदाय के साथे पक्षियों के खातिर भी शरणगाह होला। ये पेड़ चौवन के खातिर त वरदान हवे। कई ऐसन वृक्ष हव जेकरे फलन के उपयोग कई के जानवर अपन पेट भरल। पेड़न के पत्ता का सेवन कई के चौवा लोग अपने जीवन के आगे बढ़ावे लें। वृक्ष वर्षा करल में बहुत सहायक सिद्धि होलें। वृक्ष समूह से हमन खातिर फल फूल ईंधन तथा लकड़ियाँ और औषधि भी मिलेला। पेड़ के लकड़ी से कई प्रकार के फर्नीचर निर्माण भी कइल जाला जौने से मानव समाज के खातिर बहुत उपयोगी साबित हो रहल बा। कागज निर्माण में वृक्ष से कच्चा माल मिलेला। वृक्षन से औषधियाँ मनन के जीवन रक्षा में सहायक रहल बा। पेड़ जन्म से लेकर मरले तक के व्यवस्था में सहायक होला। कहल जाला है कि जियतो लकड़ी मोतो लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। वैज्ञानिकन के परीक्षण भी सिद्ध कई रहल बा कि सूर्य के प्रकाश में वृक्ष ढेर मात्रा में ऑक्सीजन निर्माण करेला। यह ऑक्सीजन जीव जंतु के लिए प्राण वायु हवे। ढेर पेड़ लगौले से भारी मात्रा में वर्षा होला। जौने क्षेत्र में कम पेड़ होला ऐसने क्षेत्र में वर्षा निर्धारित रहेला। सूखा से जीव का जीवन उभर हो जाला। पर्यावरण दिवस मनौले के तिथि न्यू 1972 में यूएनओ में रखल गईल और एके हर साल मनावल जाला। 5 जून 1972 के 119 देशन के स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में मनावल गईल अपने प्रकृति के प्रदूषण से बचावे के खातिर शुरुआत कइल गईल। जहां एक तरफ 2023 पर्यावरण वर्ष दिवस के थीम सोल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन भइल बा, वहीं 2024 में भूमि बहाली मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता थीम के साथ 2024 पर्यावरण के मेजबानी सऊदी अरब देश करत बा। प्रकृति के संतुलन बनौले में और अपने आस पास स्वच्छ रखले खातिर पेड़ पौधा लगावल बहुत जरूरी हव। पेड़ पौधन के माध्यम से प्रकृति सभी प्राणियों में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होला जौने से एकल भूमंडल के प्राणी लोग स्वस्थ रहेला। ज्येष्ठ और अषाढ़ महीना में पेड़ पौधा लगावल फलदायी मानल जाला। पुराणन के अनुसार पेड़ पौधा लगौले से कई यज्ञों के पुण्य मिलेला। नवग्रह शांति के खातिर पेड़ पौधा लगावल अत्यंत आवश्यक बाटे। आदिकाल से हमारे देश में पेड़ पौधन के लगौले और पूजा कैले के परंपरा रहल बा और एकरे कटान खातिर तमाम दोष बतावल गईल बा। पर्यावरण रक्षा साँचो में जीवन रक्षा ही बा। हालांकि हमनी की संस्कृति में प्रकृति या पर्यावरण की रक्षा खातिर अनगिनत नियम व प्रचलन बा। हमनी यहाँ पीपर पूजाला बर पूजाला नीम तुलसी आंवला के पूजा होला। रउआ जनते हो कब ब्रह्मा स्थान अक्सर पीपर के वृक्ष के नीचे होला। हर गांव में रउआ के एगो पीपर के पुराण वृक्ष मिल जाई जहाँ बरम बाबा के स्थान होई। बरगद के पेड़ तर बट सावित्री व्रत के पूजा होला। गांव के सुहागिन भावर देलिन निमिया के डाड़ पर त देखी मैया के झुलुवे लागेला। तुलसी के पौधा तो हर घर में रउआ के मिल जाई। आ रोज भोरे भिनसारे माई काकी आ भौजी नहा धो के जल ढारे लिन साझी के हिजा दिया बराई। तुलसी ब्याह भी होला।

0: अपने मराठी भाषा में पारिजात या प्रोजेक्ट को हिंदी में हरसिंगार और अंग्रेजी में जस्मिन भी कहल जाला। कहल जाला कि प्रेम का परिचायक यही वृक्ष के श्री कृष्ण स्वर्ग से पत्नी के व्रत पूर्ण के खातिर ले आयल रहना। ये वृक्ष के महत्ता ई बाकी अगर एके दरवाजे पर लगावल जाए तो एकर फूल घर में न गिर के बाहर या केहू के दूसरे के आंगन में गिरेला। जौने दिने हम सब समझ लेब कि वृक्ष में प्राण वायु हवे, वृक्ष नाही तो हम नाही, वही दिने से केहू के भी वृक्षारोपण के लगौले खातिर कहे के नाही पड़ी। समय समय पर जोर दिहल गइल बा पर्यावरण में बढ़त प्रदूषण के वजह से वृक्षारोपण का महत्व अब के समय में और अधिक बढ़ गइल बा। एकर मतलब ई बा कि विकास खातिर पौधन के लगावल और हरियाली फैलावल वातावरण के खातिर महत्वपूर्ण हो गइल बा। जैसन कि आप सभे जानत बाटे कि वृक्षन के अंधाधुंध कटाई से ऑक्सीजन प्रभावित होला, वृक्षन की कमी से पशुआ दुर्लभ प्रजाति की विलुप्त हो जाई। पवित्र वृक्ष के केला पीपल बरगद बेल तुलसी कदम के मांगलिक अवसर और पूजा के धार्मिक दृष्टि से भारत की पुरातन सभ्यता और संस्कृति में बहुत महत्व रहल बा। 1950 के वन महोत्सव आयोजन कार्यक्रम बड़े स्तर पर फैलावल जात बा। वृक्षन के काटे खातिर कानून बनावल गइल बा, मनई लोगन के जागरूक कइल गइल जात बा। एक वृक्ष के कटले से दो वृक्ष लगौले के प्रोत्साहन दिहल जात बा। हरियर पेड़ कटले पर कानून में सजा का प्रावधान कइल गइल बा। वृक्षारोपण के वैज्ञानिक महत्व में ये नाही परिचित बा, जरूरत ई बात का बा कि एके गति दिहल जाए। हमहन के ऋषि महर्षि या फिर हमनी के पुरखा पुरनिया कितना दूर दृष्टा रहना उ जानत रहने की प्रकृति बात ई धरती के अस्तित्व बा। यही से पर्यावरण सुरक्षा खातिर रीत रिवाज पूजा पाठ शुरू कइल गइल। इतना नहीं, पर्यावरण रक्षा के संस्कार जीवन के सामान्य मनोरंजन के संगीत में पिरोवल गइल, जौने से जनमानस के बीच वृक्षारोपण लगाव उत्साह हरदम जगह बनौले बा।
1: देसमार कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे चंद्रदीपक पाठक से वार्ता। वार्ता का विषय था पर्यावरण संरक्षण खातिर जरूरी बा वृक्षारोपण। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। आइए सुनते हैं प्रादेशिक संगीत। इसके अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे पंजाबी लोकगीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक संगीत के अंतर्गत पंजाबी लोकगीत। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से। फिल्मी कव्वालियां होंगी 7:31 पर, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे मिले जुले फिल्मों से फिल्मी कव्वालियां।

रात्रि के 8 बजे होगा हिंदी कार्यक्रम। रात्रि के 8:15 पर हम आपको सुनवाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसमें आज के कलाकार होंगे गुलाम अली। रात्रि के 10 बजे होगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित अजय चक्रवर्ती को। श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोकायतन एवं खेती किसानी मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी, प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशुरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र दान मामले में पहली बार FIR दर्ज होने के बाद कहा कि आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले में SIT की रिपोर्ट आते ही कार्यवाही शुरू हो गई है। देवरिया में 465 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 106 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सनातन आस्था के साथ जो खिलवाड़ करेगा वो भुक्तभोगी होगा।
1: जन आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। मैं 19 जून को अयोध्या के दौरे पे था। मैंने तब भी कहा था, अयोध्या हम सबकी आस्था की प्रतीक है, भारत के सनातन धर्म की आस्था की प्रतीक है। अयोध्या पर आक्षेप मत करो। और अयोध्या के बारे में जो कदपे समाचार मिल रहे थे, हमने कहा था SIT गठित की गई है। SIT की रिपोर्ट आने के साथ ही हमारी कार्रवाई भी प्रारंभ हो जाएगी। और आपने देखा होगा, SIT की रिपोर्ट आई, तुरंत कार्रवाई प्रारंभ हो गई। और मैं आश्वस्त करता हूं, जो मैंने कहा था, दूध का दूध और पानी का पानी हम करके रहेंगे।
0: मुख्यमंत्री ने देवरिया में विकास की चर्चा करते हुए कहा कि प्रदेश का नौजवान जो पहले नौकरी

0: के लिए पलायन करता था, आज वो अपनी प्रतिभा और ऊर्जा का लाभ अपने क्षेत्र को दे रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सुरक्षित माहौल के चलते निवेश आ रहा है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपियों को आज स्पेशल रिमांड मजिस्ट्रेट निवेदिता सिंह की अदालत में पेश किया गया। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। इससे पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को कल गिरफ्तार किया था। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित जांच दल एसआईटी की सिफारिश के बाद ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज कराई थी। एफआईआर में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। एसआईटी मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है, जिसके बाद कल ये मामला दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आज एस्ट्रोमेडिक्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना संचालित हो रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 12 करोड़ से अधिक लोगों को निःशुल्क स्वास्थ्य की सुविधाएं मिल रही हैं।
1: भारत आज के दिन पे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सेवा की स्कीम प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में आयुष्मान भारत की संचालित कर रहा है। आयुष्मान भारत, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो क्षेत्र जो तबके छूटे हुए थे उन लोगों को इसके साथ कवर किया है। हम आज के दिन पे लगभग 12 करोड़ से ऊपर लोगों को फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उत्तर प्रदेश के अंदर कर दे रहे हैं।
0: रुस्तमपुर रोड पर स्थित ये आधुनिक अस्पताल मरीजों को कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, ऑन्कोलॉजी और ट्रांसप्लांट जैसी जटिल बीमारियों के लिए विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव में देरी तथा प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने वाले आदेश पर नाराजगी व्यक्त करते हुए राज्य सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित है और किसी भी हाल में 5 साल खत्म होने से पहले अगले चुनाव सम्पन्न हो जाने चाहिए। ये टिप्पणी न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन ने अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई करते हुए की है। याचिका में राज्य सरकार के 25 और 26 मई 2026 को जारी उन आदेशों को चुनौती दी गई है जिसके तहत यूपी पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला देकर चुनाव टाल दिए गए और प्रधानों को प्रशासक के रूप में काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब 2,500 रुपये शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
2: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 5,000 रुपये होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत 3,500 रुपये होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत 6,000 रुपये होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 1,500 रुपये और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत 2,000 रुपये है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए 6,000 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने संयुक्त राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 500 पदों पर भर्ती के लिए 27 जुलाई तक आवेदन और परीक्षा शुल्क जमा किए जा सकेंगे, जबकि आवेदन पत्र में संशोधन और त्रुटि सुधार की अंतिम तिथि 3 अगस्त निर्धारित की गई है। आवेदन से पहले अभ्यर्थियों को वन टाइम रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश ने सोलर रूफ टॉप स्थापना में नया कीर्तिमान स्थापित

0: करते हुए देश में अग्रणी राज्य के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। जून 2026 में आयोजित प्रगति समीक्षा बैठक में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में अब तक 6 लाख से अधिक घरों में सौर ऊर्जा का लाभ दिया जा चुका है। यूपी नेडा के डायरेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि देश में कुल सोलर रूफ टॉप इंस्टॉलेशन में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 17% है और ये देश के शीर्ष राज्यों में शामिल है। मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा का जुलूस आज प्रदेश भर में अलग अलग जिलों में गमगीन माहौल में निकाला जा रहा है। जगह जगह मजलिसों का आयोजन भी किया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद में मनाया जाता है। लखनऊ में मुस्लिम समुदाय के लोग घरों में रखे ताजियों को कर्बला में ले जाकर दफन कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: सुबह से ही लोग ताजियों को जुलूस की शक्ल में कर्बला तक ले जा रहे हैं और दफन कर रहे हैं। जुलूस में लोग नौहा खानी और मातम करते हुए चल रहे हैं। लखनऊ की तालकटोरा की कर्बला में लाखों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर इमाम को पुरसा दिया। बादशाह नगर रेलवे स्टेशन के पास स्थित फूल कटोरा की कर्बला में सुन्नी समुदाय द्वारा ताजियों को जुलूस के रूप में ले जाकर दफन किया जा रहा है। यह सिलसिला देर रात तक चलेगा। प्रदेश सहित पूरे लखनऊ शहर में विभिन्न कर्बलाओं के आसपास सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। जुलूस मार्गों पर पीएसी पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान तैनात किए गए हैं। अब से कुछ देर बाद रात में 8:30 बजे लखनऊ के ऐतिहासिक शाम गरीबा मजलिस उफराम आप इमामबाड़े में होगी, जिसे मौलाना कल्बे जव्वाद संबोधित करेंगे। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: सुल्तानपुर, फर्रुखाबाद, अमरोहा, मुजफ्फरनगर, हमीरपुर सहित विभिन्न जनपदों में मुहर्रम का जुलूस अकीदत के साथ निकालकर कर्बला में ताजियों को दफन किया गया। उधर एटा के अलीगंज कस्बे में मुहर्रम के जुलूस के दौरान एक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। प्रदेश में आगामी 2 दिनों तक गर्मी का सिलसिला अभी जारी रहेगा। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि अगले 4 दिनों में मॉनसून प्रदेश के कई हिस्सों तक पहुंचेगा। इसकी शुरुआत पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया और आसपास के जिलों से होगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में 106 विकास परियोजनाओं का किया शुभारंभ। अयोध्या दान प्रकरण पर कहा, आस्था के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं। श्रीराम मंदिर के दान में हेराफेरी के मामले में गिरफ्तार सभी 8 आरोपी आज स्पेशल मजिस्ट्रेट के सामने हुए पेश, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए जेल। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर व्यक्त की नाराजगी। प्रदेश सरकार को विस्तृत हलफनामा दाखिल करने का दिया आदेश। और मुहर्रम की 10वीं तारीख यौमे आशूरा पर आज गमगीन माहौल में दफन किए गए ताजिए इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत को किया गया याद। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूँ कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है।
3: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो चुका है 7:31 और इसी के साथ अब प्रस्तुत है अंग्रेजी कार्यक्रम। आज के कार्यक्रम में आपको सुनवाने जा रहे हैं इंटरव्यू। विषय है यंग माइंड्स रीडिंग साइंस एंड
4: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी कव्वालियां।

0: अदनान सामी के गाए इस कव्वाली को आप सुन रहे थे बजरंगी भाईजान फिल्म से। कार्यक्रम की अगली कव्वाली हम आपको सुनाएंगे इस अंतराल के बाद।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियां बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
3: ये सूचना मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
4: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के यूट्यूब चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
5: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की डीवीडीज और सीडीज हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

श्रोताओं, ये कव्वाली आप सुन रहे थे माय नेम इज खान फिल्म से। लीजिए सुनिए कार्यक्रम की अगली कव्वाली।

0: फिजा फिल्म के इसी कव्वाली के साथ कव्वाली गीतों का सफर अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं, प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। इसमें आइए सुनते हैं कहानी समय की मांग। कहानीकार हैं साधना सिंह।
1: समय की मांग। जी हाँ, समय की मांग को सही समय पर समझ लेने और खुद की परिस्थितियों के अनुसार बदल लेने से जिंदगी आसान हो जाती है। आज की कहानी दो पुरानी घनिष्ठ सहेलियों की है, प्रिया और सुमन। क्या यार, इतनी भी क्या व्यस्तता है? तुम एकदम घर से बाहर ही नहीं निकलती हो, हर बार मुझे ही आना पड़ता है तुमसे मिलने। प्रिया ने बैग सोफे पर लगभग फेंकने के साथ सुमन के पीठ पर हल्का सा धौल जमाया था। आते ही शुरू हो गई हमेशा की तरह, सुमन ने हंसते हुए प्रिया को गले लगाया था। थोड़ा ठंड रख, पानी वानी पी, फिर शिकायत करती रहना, जो सुनाना हो सुना लेना, सुमन ने हंसते हुए कहा और पानी लेने किचन की तरफ चल पड़ी। तो पीछे पीछे प्रिया भी चल दी। तू चाय बना, पानी मैं खुद पी लूंगी, इस घर में मेहमान नहीं हूं मैं, प्रिया ने कहा और फ्रिज से पानी का बोतल निकालकर गिलास में पानी डालने लगी। सुमन ने मुस्कुराते हुए गैस पर चाय का पानी रखा और ट्रे में कुछ नमकीन

बिस्किट डाले, तब तक चाय भी तैयार हो गई और चाय लेकर दोनों सहेलियां बेडरूम की तरफ चल पड़ी। देखना, किसी दिन इन्हीं जिम्मेदारियों में यूं ही घुटती रह जाएगी, लाइफ एक ही बार मिलती है। प्रिया चाय का सिप लेते लेते फिर शुरू हो गई। यार, सब अपने अपने ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं भी ठीक हूँ, खुश हूँ। तू ज़्यादा सोच रही है, इतना सोचेगी तो चेहरे पे झुर्रियाँ आ जाएंगी, सुमन ने प्रिया को छेड़ते हुए कहा। चल और सुना, बच्चे और जीजाजी कैसे हैं? सब ठीक है, मस्त है, प्रिया ने यूं ही जवाब दिया। दोनों स्कूल टाइम की सहेलियां देर तक नई पुरानी बातें करती रहीं। दोनों बचपन की सहेलियां तो थी ही, शादी के बाद भी एक ही शहर में आ गईं और आज भी दोनों की दोस्ती पहले की तरह जवान थी। प्रिया का ससुराल काफ़ी संपन्न था, जबकि सुमन एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। प्रिया जब भी सुमन से मिलने आती थी, सुमन हमेशा एक अजीब सी कमतरी के एहसास से घिर जाती थी। हालांकि उसे भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी वह सोचती थी, प्रिया कितना जिंदा दिल, कितनी मस्त मौला जिंदगी जी रही है, जबकि मैं, मुझे तो पारिवारिक जिम्मेदारियों से ही फुर्सत नहीं मिलती है। प्रिया के पति का अपना बिजनेस था, नौकर चाकर, गाड़ी बंगला, क्या नहीं था उसके पास। दो बेटे थे जो बोर्डिंग में पढ़ रहे थे और सास उसके छोटे बेटे के साथ रहती थी, क्योंकि प्रिया और उनका मन कभी नहीं मिला। ससुर जी का कोरोना काल में स्वर्गवास हो गया था। ले देकर वही मियाँ बीबी संग थे, जिसमें मियाँ बिजनेस में बिजी थे और बीबी सोशल लाइफ में एक्टिव थी। इधर सुमन भी पढ़ी लिखी और समझदार गृहिणी की भूमिका में थी। पति उसके भी अच्छा कमाते थे, पर इतना कि जिसमें उनकी ज़रूरतें आराम से पूरी हो जाए। सुमन के सास ससुर भी उसके साथ ही रहते थे और बच्चे वही साझा परिवार में पढ़ बढ़ रहे थे। शहर के ही ठीक ठाक स्कूल से पढ़ाई कर रहे थे। सुमन को यूं भी अपनी ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं थी, पर प्रिया को हमेशा ऐसा लगता था कि सुमन घर में ही फंस के रह गई है। सही भी था, साझा परिवार का कॉन्सेप्ट अब कहाँ रह गया था। लोगों में न अब आपसी स्नेह और तालमेल रहा, ना ही सहन शक्ति, अब सभी को स्पेस चाहिए। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब प्रिया के दोनों बच्चे अच्छे से सेटल हो गए थे। बड़े ने दूसरे शहर में अपनी कंपनी डाल दी थी, तो छोटा बेटा US के एक बहुत बड़े मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा था। इधर सुमन का बेटा भी MBBS करके इंटर्नशिप कर रहा था और बेटी का बैंक में हाल ही में जॉब लगा था। इन सालों में सुमन के साथ ससुर गोलोकवासी हो गए थे। इन बीतते समय के साथ दोनों सहेलियों की दोस्ती पर कोई आँच नहीं आया था। दोनों आज से भी कहीं ज़्यादा पक्की सहेली बन गई थी। अचानक एक रात मोबाइल की घंटी लगातार बज रही थी। सुमन घबरा उठी, हे राम, आधी रात में किसका फ़ोन है? उसने हड़बड़ाकर फ़ोन उठाया। सुमी सुमी, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, रवि को दिल का दौरा पड़ा है, जल्दी आ जाओ सुमी, मुझे डर लग रहा है, डॉक्टर तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, प्रिया बोलते बोलते लगातार रो रही थी। एक पल को तो सुमन सुन्न रह गई, पर फिर तुरंत ही खुद को संभाला। प्रिया घबरा मत, हम अभी आ रहे हैं, सुमन ने मोबाइल डिस्कनेक्ट करने के साथ बगल में सोए अपने पति आकाश को जगाया। दोनों आनन फानन में अस्पताल की तरफ से भागे। प्रिया ने जैसे ही सुमन को देखा, लपक कर गले लग गई और फूट फूट के रोने लगी। देख सुमन, क्या हो गया है, डॉक्टर बोल रहे हैं अभी तो कुछ नहीं कह सकते हैं, मैं क्या करूं, मैं रवि के बिना जी नहीं सकती हूं। क्या अंटसंट सोच रही है, सब ठीक हो जाएगा, डॉक्टरों को क्या पता, वो तो कुछ भी कहेंगे, सुमन ने थोड़ा डपटने के लहजे में प्रिया को ढांढस बधाया। थोड़ी देर में आकाश कैंटीन से 3 चाय लेकर आए। ले, थोड़ा सा पी ले, जाने कब से कुछ खाया भी नहीं होगा, सुमन ने चाय का गिलास जबरदस्ती प्रिया को पकड़ाते हुए कहा। सुमन और उसके पति के आ जाने के बाद प्रिया को बहुत तसल्ली मिल गई थी। बच्चों की क्या खबर है, बच्चों को खबर दिया है भाई साहब का, आकाश ने पूछा। हाँ, प्रिया ने हामी में सर हिलाते हुए कहा। जीजा जी को यह अचानक क्या हो गया, तू तो हर साल अपना चेकअप और जीजा जी का कराती रहती है। थोड़ी देर बाद जब प्रिया शांत हुई तो सुमन ने पूछ लिया। पता नहीं कौन सी टेंशन है इनको।

माँ बाप से कभी जुड़ने नहीं दिया। मसीनी लाइफ जीते जीते भावनाओं भी मसीनी हो गई सबकी। प्रिया बोलते बोलते आकाश की तरफ मुड़ गई। जीजाजी अब सही कहते थे, सही सोचते थे। बच्चों को कम से कम बचपन में तो माँ बाप से जुड़ा रहने देना चाहिए शायद। बात अधूरी छोड़कर प्रिया एक बार फिर रोने लगी। सुमन ने प्रिया का हाथ अपने हाथ में लेकर सांत्वना दिया। लेकिन प्रिया, अभी कुछ हुआ है क्या? जीजा जी को अचानक इतना बड़ा हार्ट अटैक? थोड़ी रुक के सुमन ने पूछा। छोटे ने वही US में स्पेन के एक लड़के से शादी कर ली है। दोपहर में हमें बस एक सूचना भेज दी थी, प्रिया ने टूटे मन से कहा। ओह, सुमन बस इतना ही कह सकी। तुम तो जानती ही हो, बड़े ने बेंगलोर में घर ले लिया था और अब एक लड़की भी पसंद करके लिविन में रहने लगा है। क्या फायदा हुआ सुमी, सारी जवानी इन्हीं बच्चों के लिए तिल तिल कर अपना सारा सुनहरा भविष्य जला दिया। अब ये बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ये जायदाद हमारे बच्चों को बांध कर नहीं रख सके। और अब इनको इस बात का एहसास हो रहा है कि समय के साथ उन्होंने क्या खो दिया है। लेकिन अब क्या हो सकता है? यही सब बात कई दिनों से इनको खाए जा रही थी, पर इतना असर हो रहा था मुझे इसका अंदाजा नहीं था। बहुत करीब मुझे भी तो नहीं रखा इन्होंने। पेशेंट को होश आ गया है, कोई एक लोग जाकर मिल सकते हैं, प्रिया बोलती जा रही थी। इतने में नर्स ने आकर बताया। सुमन ने प्रिया के सिर पर हाथ फेर कर कहा, देखो प्रिया, जो हो गया सो हो गया। इस वक्त बिना किसी सुबह शिकायत के जीजा जी की हिम्मत बन जाओ। तुम्हें मजबूत देखकर उन्हें भी कठिन समय से निकलने के लिए संबल मिलेगा। जाओ और अब अपने पति को लेकर वापस आना। प्रिया ने हामी में सिर हिलाया। ICU में इस तरह से रवि को लेटे हुए देखकर प्रिया का दिल मुंह को आ गया। रवि प्रिया की तरफ लाचारी से देख रहे थे। प्रिया ने आगे बढ़कर रवि का हाथ अपने दोनों हाथों से थाम लिया। प्रिया की आंखों से मानो गंगा जमुना बह रहा था। सबके लिए बहुत दौड़ लिए रवि, अब मेरे लिए मेरे पास ठहर जाओ, मेरा भी तो हक है ना तुम पर, प्रिया ने टूटे दिल से कहा। उसकी ऐसी बात सुनकर रवि के भी आंखों से आंसू बहने लगा था। यही तो चाहते हैं ना कि बच्चे खूब तरक्की करें, खुश रहें, और वह खुश हैं अपनी खुशी में। हमारे लिए क्या यह संतोष की बात नहीं, प्रिया ने आगे कहा। रवि ने भी हामी में पलके झपका दी। मैम, पेशेंट को अब आराम करने दे, इन्हें ज्यादा बोलना और टेंशन लेना मना है, नर्स ने आकर प्रिया को टोका। रवि, मैं बाहर इंतजार कर रही हूँ आपका, सख्त जरूरत है मुझे आपकी, याद रखिएगा, प्रिया ने रवि का माथा चूमा और बाहर आ गई। सुमन ने बाहर आते प्रिया के चेहरे पर उमड़े विश्वास और प्रेम को पढ़ लिया था। प्रिया बार बार सुमन और आकाश को घर जाने के लिए बोल रही थी, पर दोनों ने मना कर दिया क्योंकि डॉक्टर ने रवि को भी खतरे से बाहर नहीं बताया था। साली साहिबा, आप तो खुशखबरी के साथ ही घर जाएंगे, आकाश ने प्रिया से कहा। सुबह के उजाले के साथ ही डॉक्टरों की टीम ने रवि को खतरे से बाहर बता दिया। सबने राहत की सांस ली। प्रिया, अब हम घर जा रहे हैं, फ्रेश होकर थोड़ा काम समेट कर आती हूँ और तेरा नाश्ता भी लेते आऊँगी, सुमन ने कहा। क्यों परेशान होगी, मैं ठीक हूँ, तुम लोग जाओ और आराम करो, मन न माने तो शाम तक आ जाना, वैसे भी मुझे कुछ खाने का मन नहीं, जब हुआ तो यहीं से कुछ खा लूँगी, प्रिया ने सुमन से कहा। ज़्यादा हीरोइन न बनो, आ जाऊँगी मैं, बढ़िया आई, सुमन ने प्रिया को डांटा। तभी आकाश चाय लेकर आ गए। चाय पीने के बाद सुमन ने प्रिया को गले लगाया। आती हूँ, कहकर आकाश के साथ घर के तरफ चल पड़ी। रास्ते पर सुमन और आकाश दोनों चुप अपनी अपनी सोच में डूबे हुए थे। घर पहुंचकर आकाश ने गाड़ी से उतरते हुए सुमन को आवाज़ दी, सुमी। सुमन ने आकाश की तरफ देखा। सुमी, परवरिश में भले ही अंतर हो, पर एक बात तो सीखने लायक है, समय बहुत बदल गया है और समय से ज़्यादा इंसान और उसकी भावनाएं। नई पीढ़ी से कोई अपेक्षा रखने लायक नहीं है, नहीं तो उनकी उपेक्षा ऐसे ही दिल तोड़ देगी, आकाश ने कहा। सुमन ने आकाश की तरफ देखा, वह समझ रही थी कि वह क्या कहना चाह रहे हैं। आखिर हम माँ बाप ही तो हैं कि बच्चे कामयाब हो और खुश रहें, तो उनकी खुशी में खुश होने में ही हमारी भलाई है। बच्चे अपनी ज़िंदगी में माँ बाप को उतनी अहमियत भले न दे, पर माँ बाप तो
उन्हीं के लिए जीते हैं। आकाश ने आगे कहा, समझ रही हूँ मैं आप।

0: का मंतव्य, जिंदगी को अब एक अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा हम सबको। चलिए आप फ्रेश होकर आराम कर ले, मैं जल्दी जल्दी काम खत्म करके अस्पताल जाऊंगी, प्रिया अकेली है, सुमन ने घर के भीतर जाते जाते कहा और मन ही मन सोच रही थी, पता नहीं उसके बच्चे आएंगे कब तक आएंगे, या आएंगे भी या नहीं।
1: हिंदी कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे समय की मांग, कहानीकार थी साधना सिंह। ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है।

0: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए 8700014242।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।
2: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbhartiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbhartiarchives.co.in।

0: स्वच्छ भारत सुंदर भारत स्वच्छता शब्द भर नहीं सक्रिय सचेत कर्म है।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की।
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना खेड़िये माना। हर टन में ज्यादा लंबाई, ज्यादा फायदा, कम खर्च में ज्यादा निर्माण। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: शास्त्रीय संगीत, नृत्य, साहित्य, नाट्य विधाएं, धारावाहिक, वृत्त चित्र और अन्य दुर्लभ रिकॉर्डिंग और अब आप आकाशवाणी और दूरदर्शन के खजाने की DVDs और CDs हासिल कर सकते हैं भारत में अपने संग्रह के लिए। प्रसार भारती के कार्यक्रमों का खजाना अगर है आपको पाना, तो लॉग ऑन कीजिए www.prasarbharatiarchives.co.in। याद रहे www.prasarbharatiarchives.co.in।
4: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर द्वारा अपने सभी हितधारकों यथा भविष्य निधि सदस्यों, नियोक्ताओं, पेंशनरों की समस्याओं एवं शिकायतों के निदान हेतु क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के परिक्षेत्र में आने वाले समस्त 12 जिलों में दिनांक 29 जून 2026 को प्रातः 9 बजे से निधि आपके निकट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है।
5: लीजर रिजॉर्ट बहराइच,
4: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन बलिया,
5: तुलसीपुर शुगर कंपनी लिमिटेड बलरामपुर,
4: सुयश पेपर मिल्स बस्ती,
5: UPSRTC देवरिया,
4: चिन्मय ग्रामोदय शिशु विद्या मंदिर इंटर कॉलेज गोंडा।
5: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर,
4: त्रिवेणी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड कुशीनगर,
5: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन महाराजगंज,
4: डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन संत कबीर नगर,
5: बेसिक शिक्षा विभाग श्रावस्ती,
4: नगर पालिका परिषद सिद्धार्थ नगर।
6: पूर्वांचल का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीडा,
7: BTech पॉलिटेक्निक, MBA, MCA, BBA, BCA, D-Pharma, B-Pharma और M-Pharma में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं।
6: 300 कंपनीज में प्लेसमेंट्स, स्कॉलरशिप और इजी फी इंस्टॉलमेंट की सुविधा भी।
7: विजिट KIPM गीडा गोरखपुर।
8: सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गुलाम अली को।

0: जिंदगी बहुत कीमती है,
1: उससे तो सस्ता ही है।
2: मैं आशुतोष राणा, मैंने जाना फिर ये मारा। डॉलकर ही नहीं, किनकर भी मिलता है, बच्चे भी खरीद सकते हैं। RHL गोल्ड TMT सरिया, 70 सालों का विश्वास और भरोसा। जानो फिर मानो।
3: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी।

संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार सुबह 11 बजे मन की बात।

0: का पहला इनोवेशन सेंटर KIPM गीड़ा से करें अपने सपने साकार। बीटेक पॉलिटेक्निक MBA MCA BBA BCA बी फार्मा एम फार्मा और डी फार्मा में एडमिशन्स ओपन। KIPM गीड़ा गोरखपुर।
1: सुगम संगीत कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं गुलाम अली को।

0: श्रोताओं, इसी के साथ सुगम संगीता कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आज के कलाकार थे गुलाम अली। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब से कुछ ही पलों में होगी समाचार संध्या, जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे। और US ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 रुपये है। गृहमंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
2: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
1: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
2: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया है। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए।

0: चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
1: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्ताद का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को

0: दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जांच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल

0: में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. Indian shooters finish at the top in ISSF Junior World Championship in Germany with 24 medals, including 7 gold. And in US Open Badminton, India's Ronak Chauhan stuns top seed Cho Tin Shen of Chinese Taipei to enter quarterfinals of men's singles. Kidambi Srikant and 3 women shuttlers also reach the quarters. And now the news in detail. Home Minister Amit Shah today laid a detailed roadmap to achieve the vision of a drug-free India. During a meeting organized by the Narcotics Control Bureau, the Home Minister launched the vision document on narcotics control from 2026 to 2029. Earlier, addressing the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi, the Home Minister called for a united war against drugs, saying that the drug menace threatens national security, social stability, economic interests and the future of youth and the country. He urged spiritual leaders, youth and mothers to come together on a single platform to win this war. The Home Minister stressed that better coordination and the use of technology are essential for strengthening the country's campaign against drugs and drug trafficking networks.
2: Today, our country stands at a critical juncture in its fight against narcotics. The next 3 years will determine whether drugs prevail over us or we prevail over drugs. My humble appeal to all of you is that for the future of our nation over the next 100 years, this is a battle we must win. Win with the determination and win through our collective efforts.
1: Speaking about the anti-narcotics efforts, Mr. Shah said that the Narcotics Control Bureau has developed several online portals to facilitate the timely sharing of information related to drug crimes. He urged all chief secretaries and directors general of police to upload details of drug-related cases on these portals within a fixed timeline. He said that timely sharing of information would help the government to monitor cases.

हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्मी गीतों का कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे शराबी फिल्म से। कार्यक्रम का अगला गीत होगा इस अंतराल के बाद।
1: नशे का शौक कहीं आपकी आदत तो नहीं बन गया?
2: याद रखिए, शौक, सोबत या फैशन के तौर पर अपनाया नशा आपकी आदत और स्वभाव का अंग बन जाएगा।
1: पार्टियों में नशा नहीं, खुशियाँ बांटिए।
2: नशा नहीं, जिंदगी अपनाइए।
1: आज अभी नशा छोड़ने का संकल्प दोहराइए।
2: ये सूचना मध्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
4: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
3: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
4: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
3: डायल कीजिए 8700014242।
4: नंबर एक बार फिर नोट करें 8700014242।

0: श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे चिराग फिल्म से। कार्यक्रम का अगला गीत हमने लिया है साया फिल्म का, जो होगा इस अंतराल के बाद।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए allindiaradio.gov.in।
2: What is DTH? Direct to home or direct to heart?
3: It is both. अगर बात दूरदर्शन की DTH सर्विस DD Direct Plus की हो तो इसमें मिलेंगे टीवी चैनल्स और रेडियो चैनल्स, केबल की जरूरत भी नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू होम की और डायरेक्ट टू हार्ट,
3: ये सारे चैनल्स होंगे फ्री टू एयर, यानी अब हर महीने कोई खर्चा नहीं।
2: ये हुई बात डायरेक्ट टू हार्ट की,
3: दूरदर्शन DTH सर्विस DD Direct Plus।
2: For details log on to www.ddindia.com।

0: तीसरी कसम फिल्म का ये गीत सुन रहे थे आप। इसी के साथ आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत जो हमने लिया है आनंद फिल्म से।
1: मैंने

आनंद फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का सफ़र अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत।

पंडित अजय चक्रवर्ती के गाए इसी गीत के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब समाप्त होता है। मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलो हर्ट्स तथा FM 100.1 मेगा हर्ट्स पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब होंगे समाचार जिन्हें आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन
2: वायुसेना के दो विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और

अमरीकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: position with 10 medals. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो
2: मीडियम वेव 330.03 मीटर यानी 909 किलोहर्ट्ज़ तथा एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के गोरखपुर केंद्र से बोल रहे हैं। स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11:10 हो रहे हैं। संपन्न होती है हमारी आज की ये प्रसारण सभा। कल प्रातःकालीन प्रसारण सभा के कार्यक्रमों के साथ प्रातः के 5:52 पर हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। शुभ रात्रि। जय हिंद।